0: अभी आप सुन रहे थे स्वरंजनी कार्यक्रम में आम्रपाली का गायन राग ललित। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में प्रातः के 6 बजने को हैं। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और हिंदी समाचारों के उपरांत अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर।

बेहद कुशाग्र बुद्धि, साहसी और सच्चे देशभक्त थे। मात्र 33 वर्ष की अल्पायु में ही वे कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। तत्कालीन शासन व्यवस्था और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के बिगड़ते परिवेश के कारण वे बेहद दुखी थे। एक ही देश में सांप्रदायिक भावना के कारण लोगों में मनमुटाव होने लगे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह देखकर बहुत दुखी होते थे। एक दिन वे कुछ लोगों के साथ आपस में बातचीत कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, हर देश में प्रत्येक व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में विविध भाषी और विविध धर्मों के लोग पूरे विश्व में एक अलग मिसाल प्रस्तुत करते हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, केवल विविध धर्म और विविध भाषी होने से ही देश समृद्ध नहीं बनता है। देश को समृद्ध बनाने के लिए हर व्यक्ति को जाति धर्म से परे सोचना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते कि हमारे यहाँ कई राज्यों का अलग विधान है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सबका एक विधान हो, पूरा भारत एकता के सूत्र में बंध जाए और देश की सांस्कृतिक एकता व नैतिकता का उदाहरण पूरे विश्व में दिया जाए? तीसरा व्यक्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओर देखते हुए बोला, सर, देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप जैसे ज्ञानवान और प्रखर व्यक्तित्व के स्वामी ही देश को सुदृढ़ कर सकते हैं। सभी की बातें सुनकर डॉक्टर मुखर्जी जैसे नींद से जागे। वे बोले, तुम सबका कहना सही है। भारत एक विशाल देश है और ऐसे में पूरे देश का एक परिधान हो न हो, मगर एक भाषा और एक विधान जरूर होना चाहिए। डॉक्टर मुखर्जी अक्सर देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए इस वाक्य का प्रयोग करने लगे। कुछ समय बाद तो यह उनका नारा ही बन गया और पूरे देश में फैल गया। जन जन डॉक्टर मुखर्जी के इस नारे के साथ मिलकर एक स्वर में पूरे देश को एक करने के लिए आवाजें उठाने लगा। यह देखकर डॉक्टर मुखर्जी के मन में आशा उत्पन्न हो गई कि यदि सभी व्यक्ति एक होकर आवाज उठाएं तो पूरा देश एकता के धागे में बंध जाएगा। उन्होंने आजीवन देश को एक सूत्र में बांधने के प्रयास आरंभ कर दिए। राष्ट्रभाषा के विकास और देश को सांस्कृतिक रूप से एक रखने के लिए उन्होंने हर स्वयंसेवी संस्था का सहयोग लिया और आखिरी सांस तक इन्हीं प्रयासों में जुटे रहे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस बाल कांड भाग 119।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान

वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है? लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से रामकथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेद मत और लोक मत इसके दो किनारे हैं।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारम्भः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिन्दनगरात् प्रधानमन्त्री चण्डीगढ़ं प्रति प्रस्थास्यति, यत्र अपराह्णे पादोनद्विवादने सः सप्तशताधिकचतुस्सहस्ररूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री पञ्जाबस्य जालन्धरनगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 70-4,500,000 रूप्यकाणां नैकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कतरदेशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोकसंवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतर देशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारत कतर देशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुं अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं कतर देशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं भारत कतर संबंधान सुदृढीकर्तुं तस्य दृढ़ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगिदलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः करिष्यति। अस्मिन्नुपवेशने प्रावृतसत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते, अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः सहयोगिदलानां परस्परसमन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्णप्रतिपक्षाय एकीकृतकार्ययोजनायाः विषये विचारविमर्शः भविष्यति। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातकस्तरीय चिकित्सा दन्तचिकित्सा आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11,00,000 अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाह सिलीगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि-एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारतदलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन

0: क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाखाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल के जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC Under-17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर की ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 7:10:13। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे शबनम मल्होत्रा से भजन। तबले पे संगत दी है ऋतु शर्मा ने, सितार पे हैं रईस अहमद और हारमोनियम पर साथ दिया है दामोदर लाल घोष ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, सुनते हैं भजन शबनम मल्होत्रा से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुन रहे थे शबनम मल्होत्रा से भजन। तबले पे संगत दी थी ऋतु मिश्रा ने, सितार पर थे रईस अहमद और हारमोनियम पर साथ दिया था दामोदर लाल घोष ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, गीतों भरी गुड मॉर्निंग में मैं कुसुम पवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। हर सुबह अपने साथ एक नया संदेश लेकर आती है दोस्तों, बीती बातों को पीछे छोड़कर नई उम्मीद, नए सपने और नए हौसलों के साथ आगे बढ़ने का संदेश। कहते हैं दोस्तों, सूरज हर दिन ये सिखाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक नई सुबह उसका अंत जरूर करती है। तो आइए आज की सुनहरी सुबह की शुरुआत करते हैं मधुर गीतों के साथ। कहते हैं ना, सुबह की शुरुआत अगर एक प्यारी सी मुस्कान और एक बेहतरीन गाने के साथ हो जाए तो पूरा दिन जादुई बन जाता है। कल की फिक्र को भूल जाइए, आज के इस नए दिन का प्यार से स्वागत कीजिए। आज हमारे साथ इस शो में होने वाले गीतों की बौछार, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए तराने और कुछ बहुत सारी मीठी मीठी बातें होंगी। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत और ताजगी भरे गीत को सुनकर वाकई बहुत ही मजा आ गया। ये सुन रहे थे आप लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म थी कभी कभी। आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यानी कुसुम पवार के संग। दोस्तों, आज सुबह सुबह मुझे एक बात कहीं लिखी हुई मिली। लिखा था, जिंदगी एक खूबसूरत राग है, बस इसे सही सुरों से गाना सीखना आना चाहिए। और हमारे इस शो का मकसद भी यही है दोस्तों, कि हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे सुरों को एकदम परफेक्ट बना दें और अच्छे अच्छे सुरीली गीत लेकर आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। अब वक्त हो चला है हमारे अगले गाने का, जो आपके भीतर एक नई ऊर्जा और जोश भर देगा, क्योंकि गाने बहुत ही बेहतरीन लेकर हम आते हैं आपके लिए। तो लीजिए अगला गीत आपके लिए,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, अमित कुमार, उदित नारायण, सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की सुरीली आवाज में ये प्यारा सा गीत, कभी खुशी कभी गम से। दोस्तों, हर सुबह जीवन में एक नया उत्साह होना चाहिए। हर सुबह जीवन हमें एक कोरा पन्ना देती है, उस पर क्या लिखना है यह हमारे हाथ में होता है।

इसलिए हमेशा अच्छा लिखिए ताकि आप जब पीछे पलट कर देखें तो आपको खुशी ही मिले। श्रोता, हम अक्सर कल की असफलताओं या आने वाले कल की चिंताओं में इतना उलझ जाते हैं कि आज की खूबसूरती को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। जरूरत है तो बस धैर्य की, विश्वास की और निरंतर प्रयास की। तो आज ही खुद से वादा कीजिए कि मैं आज किसी की मुस्कान बनेंगे, ये बोले कि मैं आज किसी की मुस्कान बनूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयास करेंगे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लकी अली को। फिल्म थी कहो ना प्यार है। दोस्तों, एक नई सुबह केवल समय का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि सोच का भी परिवर्तन है। अगर कल कोई काम अधूरा रह गया है, तो आज उसे पूरा करने का अवसर मिलता है हमें। अगर किसी से मनमुटाव हो गया है, अनबन हो गई है, तो आज रिश्तों में मिठास घोलने का अवसर भी मिलता है। अगर कभी खुद पर विश्वास कम हो गया था, तो आज फिर से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय होता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि उम्मीद वो रोशनी है जो सबसे अंधेरे रास्ते को भी मंजिल तक पहुंचा देती है। तो इसलिए कभी निराश नहीं होना, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत होती है।

श्रोताओं, आशा है कि आज का जो विषय लिया था हमने, एक नई सुबह नई उम्मीद, आपको पसंद आया होगा। और आज का यही संदेश है दोस्तों, बीते हुए कल से सीखिए, आज को पूरे मन से जिए और आने वाले कल के लिए आशा बनाए रखिए। इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने जीवन के हर नए सुबह का पूरे उत्साह और विश्वास के साथ स्वागत कीजिए। नमस्कार, आज का दिन आपके लिए शुभ, मंगलमय और आनंदमय हो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 8 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद

0: रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे News on AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली

0: सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
1: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कन्नडम महीने को रामायण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रामायण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रामायण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित

0: दिया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ओरमूज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, 2 नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। हरियाणा के अपने दौरे में वजीर आजम जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,000

0: 700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। साथ ही वो इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी इख्तियार करने की सम्त एक अहम कदम है। अंदरूनी मुल्क वसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये रेलगाड़ी बनाई गई है, जिससे जदीद तर्ज की रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। इस तरह भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया है जहाँ हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने इसे तकनीकी आजमाइश करने वाले कई दीगर मुल्कों पीछे छोड़ते हुए मशहूरा प्रोजेक्ट के जरिए एक नया आलमी पैमाना तय किया है। जर्मनी और चीन जैसे मुल्कों में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में आमतौर पर 2 या 3 रेल डिब्बे ही होते हैं, जबकि भारत ने 10 रेल डिब्बों वाली हाइड्रोजन रेलगाड़ी तैयार की है। इसका डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि इसमें तकरीबन 2600 मुसाफिर सफर कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर दीगर हाइड्रोजन ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज्यादा गुंजाइश वाली रेलगाड़ी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्शन निजाम नस्ब है। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर मबनी है, जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील कर देती है। जीन से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन से चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो दोपहर 1:45 बजे के आसपास 4,700 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर एक जलसे से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर पंजाब के जालंधर का दौरा करेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिरों की सहूलत में इजाफा करना और खित्ते में इकतसादी तरक्की को रफ्तार देना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम ज़ाती तौर पर जालंधर कैंट स्टेशन का इफ्तिताह करने के बाद 20 रियासतों के नए सिरे से तामीर किए गए 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। इन स्टेशनों को दुनिया के सबसे बड़े तामीर नौ प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत नए सिरे से तैयार किया गया है। वजीर आजम जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह हफ्ते में 3 दिन चलने वाली पहली बराह रास्त एसी ट्रेन होगी, जो भारत के दो अहम तरीन रूहानी और सकाफती मकामात अमृतसर और वाराणसी को मरबूत करेगी। वजीर आजम 30.9 किलोमीटर तवील 4 लेन वाले दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे समेत कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों से मिलने, नीज, रेलवेज, हिफ्जान सेहत, सकाफत, कनेक्टिविटी, तालीम और दीगर शोबों से वाबस्ता मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होने के मुंतजिर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इन सभी प्रोजेक्टों से लोगों की जिंदगी, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति पर बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। जराई ने कहा है कि अपने दौरे के दौरान वो सरहदी सिक्योरिटी, हुक्मरानी, अमनो कानून और तरक्की पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। कल जनाब शाह 18वीं बटालियन सरहदी अगली चौकी पर बीएसएफ के एहलकारों से बातचीत करेंगे। वो बीएसएफ से वाबस्ता मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। दोपहर में वो मगरबी बंगाल में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक मीटिंग की सदारत करेंगे। जराए ने मजीद कहा है कि वजीर दाखिला रियासत में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का भी जायजा लेंगे। दिल्ली हुकूमत ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स के साथ स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 5 बरस तक इख्तिरा और खुद रोजगार के लिए रकम इस्तेमाल की जाएगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पॉलिसी 11 रियासती यूनिवर्सिटियों, 13 हुकूमत के इमदाद याफ्ता कॉलेजों, आईटीआई और हुकूमत के पॉलिटेक्निक इदारों का इहाता करेगी। दिल्ली हुकूमत के स्कूलों के तलबा इन इदारों में पॉलिसी के फवायद हासिल कर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि कामयाब तलबा को माली मदद फराहम की जाएगी। रियासती

पेशन पॉलिसी निगरानी कमेटी पर मबनी एक पैनल तश्कील दिया जाएगा जो पॉलिसी के निफाज पर नजर रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर अपनी ताज़ियत का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अमीर कतर के वालिद की मीरास एक ऐसे वक्त में जबकि वो अपनी कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं, दोनों मुमालिक की रहनुमाई जारी रखेगी। उन्होंने भारत के लिए उनकी गहरी उनसियत, कतर में भारतीय बिरादरी के लिए गर्मजोशी और भारत कतर ताल्लुकात के लिए उनके अज़्म को याद किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुताल्लिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 11 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और मुतालिका प्रोग्रामों में दाखिले के लिए क्वालिफाई किया है। सभी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर दस्तियाब हैं। एनटीए ने कहा है कि नतीजों का ऐलान बरवक्त कर दिया गया है ताकि मेडिकल दाखिले और काउंसलिंग के प्रोग्राम मुतासिर ना हों। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 5,440 मराकज़ पर कराए गए दोबारा इम्तिहान में मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार बैठे थे। गुजरात के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान में कायम जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन ज़िले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके नाम बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खलील अयूब सुनसारा, शफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन करदिया बताए गए हैं। इन अफराद को पाटन ज़िले के सिद्धपुर तालुका में खडियाल गांव से पकड़ा गया। इस महीने के शुरू में जैश ए मोहम्मद के 8 मुबैना कारिंदों से पूछताछ के दौरान इन 5 मुलजिमों के नाम सामने आए थे। इन 5ों को महसियाना ज़िले में जुडिशल मैजिस्ट्रेट आरएम भाटिया के सामने पेश किया गया और 24 जुलाई तक एटीएस की तहवील में भेज दिया गया। सरकारी वकील पीआर दंतानी ने अदालत को बताया कि इनमें से एक मुलजिम ने टाइम बॉम्ब बनाने की कोशिश की थी और बम बनाने के काम आने वाला सामान और जैश ए मोहम्मद का लिटरेचर अभी बरामद नहीं किया गया है, इसीलिए हिरासत में लेकर मुलजिमों से पूछताछ करने की ज़रूरत है। गोवा हुकूमत ने कसीनों से मुतालिक जाब्तों में सख्ती करते हुए 21 बरस से कम उम्र के लोगों की कसीनों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमाए दाखिला ने इस नई पाबंदी के नफाज के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में साहिल के नज़दीक कसीनों के जहाज़ों के लिए लाइसेंस की अदायगी के सिलसिले में भी जाब्ते सख्त कर दिए गए हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत का नौजवानों के उमूर का महकमा आज से माई भारत नेशनल यूथ वॉलंटियर कन्वेंशन का इनेकाद करेगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इस माह की 18 और 19 तारीख को 2 रोज़ा चिंतन शिविर होगा। वजारत ने कहा है कि एक के बाद एक दो प्रोग्रामों का मकसद ज़मीनी सतह पर नौजवानों के राबतों को मुस्तहकम करना, इदारा जाती तालमेल को बढ़ाना और नौजवानों की क़्यादत में मुल्क की तामीर के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार एक इको निज़ाम तश्कील देना है। दोनों तकारीब में नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और नौजवानों के उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा नितिन खड़से दीगर सीनियर अहदेदारान के साथ शिरकत करेंगे। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के साथ अमन समझौता नाकाम हो जाने के तनाजुर में ईरान के खिलाफ लगातार 6ठी रात फौजी हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना है, क्योंकि ईरान से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कमर्शल बहरी जहाज़ों को खतरा लाहिक है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान में अमरीका के हालिया हमलों में सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है और इन हमलों में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं।
केरलम में मलयालम दौर के कार्किडाकम महीने को रामायण महीने के तौर पर मनाया जाता है, जिसका आगाज आज से हो रहा है। इस मौके पर अकीदतमंद रूहानी कुव्वत और जहनी सुकून के लिए रामायण की तरफ मुतवज्जे होते हैं। कार्किडाकम का आज पहला दिन है और इसके साथ ही पूरी रियासत में कई घरों और मंदिरों में

0: रामायण का पाठ रोज़ाना का मामूल बन जाता है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अरकान और आला ओहदेदारान के साथ आला सतह की मीटिंग की सदारत की और पवित्र श्री माता वैष्णो देवी जी मंदिर में चढ़ावे और अतियात वगैरह के बंदोबस्त के निज़ाम का जायज़ा लिया। इस सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत, जवाबदेही और कामकाज से मुतालिक तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की खातिर एक जामे जायज़ा पेश किया गया। मर्दों के क्रिकेट में कल रात कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में दूसरे एक रोज़ा बैनुल अक्वामी मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की क़्यादत में भारतीय टीम 44 ओवर्स में महज 233 रन ही बना पाई। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 66 रन बनाए जबकि विराट कोहली ने 65 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 99 रन स्कोर किए और वो नॉट आउट रहे, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब दोनों टीमें लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट मैदान पर इतवार के रोज़ इस सीरीज़ का आखिरी और फैसलाकुन मैच खेलेंगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार की रात को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज हरियाणा दौरे से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज हरियाणा में मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सरहदी सड़क तंजीम BRO की स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से मुतालिक खबर को भी अखबारों में नुमाया तौर पर शाये किया गया है। रोजनामा इनकलाब ने इस दौरान दिए गए उनके इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि जदीद हथियारों के बावजूद स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत बरकरार है। सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाहें फौजी मुहिमात और कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात ATS ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 8:45 और 14 सेकंड। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा, जिसमें आप सुनेंगे ध्रुपद गायन ममता त्रिपाठी से, राग है कोमल ऋषभ असावरी। पखावज पर साथ दिया है मनमोहक नायक ने, तो लीजिए सुनते हैं ममता त्रिपाठी से ध्रुपद गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आपने सुना ममता त्रिपाठी द्वारा ध्रुपद गायन राग कोमल ऋषभ आसावरी। मनमोहन नायक थे पखावज पर। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है उपवास के महत्व पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख विशाल बेरिया और स्वर कमल किशोर बड़ाइक।
1: आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के उस पक्ष की जिसने उन्हें केवल एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनाया। ये पक्ष था उपवास के महत्व पर उनके विचार। जब भी गांधी जी के उपवासों की चर्चा होती है तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या उनके उपवास केवल राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा थे। उत्तर है नहीं। गांधी जी के लिए उपवास सबसे पहले स्वयं पर विजय पाने का साधन था। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो समाज का नेतृत्व भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि उन्होंने उपवास को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया। सबसे पहले समझते हैं उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है। उपवास शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट और वास अर्थात रहना, अर्थात ईश्वर के निकट रहना। गांधी जी इस अर्थ को केवल

0: धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि नैतिक जीवन से जोड़ते थे। वे कहते थे, केवल भोजन छोड़ देना उपवास नहीं है, सच्चा उपवास तब है जब मन क्रोध से मुक्त हो, वाणी कटुता से मुक्त हो और विचार हिंसा से मुक्त हो। यानी उपवास शरीर का नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व का अनुशासन है। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बाहुबल नहीं आत्मबल है और आत्मबल का निर्माण होता है आत्म संयम से। वे कहते थे, जो अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। इसीलिए उपवास उनके लिए आत्मदंड नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम था। जब शरीर की इच्छाएं शांत होती हैं तब मन भीतर की आवाज को अधिक स्पष्ट सुन पाता है। गांधी जी इसी मौन संवाद को आत्मा की साधना मानते थे। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक बार उपवास किए लेकिन उनका उद्देश्य कभी किसी को भयभीत करना या झुकाना नहीं था। उनका प्रत्येक उपवास तीन मूल भावनाओं से जुड़ा था, पहला आत्मशुद्धि, दूसरा सामाजिक सुधार और तीसरा अहिंसक नैतिक प्रतिरोध। वे मानते थे कि समाज को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मालिकों के बीच वेतन विवाद उत्पन्न हो गया। जब संघर्ष कमजोर पड़ने लगा तब गांधी जी ने स्वयं उपवास करने का निर्णय लिया। ये उपवास किसी के विरुद्ध नहीं था, ये मजदूरों में नैतिक साहस, धैर्य और विश्वास जगाने का अद्भुत प्रयास था और यही गांधी जी की विशेषता थी। वे दूसरों से त्याग की अपेक्षा करने से पहले स्वयं त्याग करते थे। इसी प्रकार जब देश में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा तब गांधी जी ने किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया, उन्होंने स्वयं उपवास किया। उनका संदेश था, यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो स्वतंत्रता भी अधूरी है। उनके लिए उपवास समाज के अंतरात्मा को जगाने का माध्यम था। सन 1947-48 भारत विभाजन के बाद पूरा देश हिंसा के आग में दहक रहा था। ऐसे समय में गांधी जी ने दिल्ली में उपवास आरंभ किया। उनकी आयु बढ़ चुकी थी, स्वास्थ्य भी अत्यंत कमजोर था, फिर भी उन्होंने स्पष्ट कहा, जब तक हिंसा नहीं रुकेगी मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। उनके इस नैतिक संकल्प ने लोगों के हृदय को झकझोर दिया। विभिन्न धर्मों के नेताओं ने शांति बनाए रखने का वचन दिया और तब जाकर गांधी जी ने अपना उपवास समाप्त किया। यही गांधी जी की शक्ति थी, न तलवार, न सत्ता, न भय, केवल सत्य, अहिंसा और आत्मबल। लेकिन गांधी जी हर उपवास को उचित नहीं मानते थे। वे कहते थे, उपवास तभी सार्थक है जब उनका उद्देश्य निस्वार्थ हो, उसमें किसी के प्रति क्रोध ना हो, किसी पर दबाव बनाने की भावना ना हो और मन प्रेम, करुणा और सत्य से भरा पूरा हो। उनके शब्दों में, क्रोध के साथ किया गया उपवास आत्मशुद्धि नहीं आत्म पीड़ा है। गांधी जी के कुछ प्रेरक विचार। उनका मानना था, आत्म संयम ही सच्ची स्वतंत्रता का आधार है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं से होता है। अहिंसा की सबसे बड़ी शक्ति आत्मबल है। जहां प्रेम है वहीं सच्ची विजय है। गांधी जी ने उपवास को कभी धार्मिक कर्मकांड नहीं माना, उन्होंने इसे आत्मशुद्धि का मार्ग बनाया, सत्य की साधना बनाया, अहिंसा की शक्ति बनाया और समाज को जोड़ने का एक माध्यम बनाया। आज भी यदि हम महात्मा गांधी के उपवास की वास्तविक संदेश को समझ लें तो पाएंगे कि इसकी सबसे बड़ी शक्ति भोजन छोड़ने में नहीं बल्कि अहंकार, क्रोध, घृणा और स्वार्थ छोड़ने में है। यही गांधी जी का उपवास दर्शन है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन में उपवास का बहुत महत्व रहा और उन्होंने इसकी शक्ति को पहचान कर न केवल अपना जीवन सफल बनाया बल्कि दूसरों को भी इसकी उपयोगिता और महत्व से परिचित कराया।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था उपवास के महत्व पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख विशाल बेरिया।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

0: गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को इस महीने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गुजरात में आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर ऐसा ही मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at the Jind railway station. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, Prime Minister will visit Jalandhar in Punjab, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. The National Testing Agency, NTA, has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counselling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centres

जी हाँ दोस्तों, उदास सी जिंदगी में कई बार बात करने के लिए वो शख्स नहीं मिलता जिससे हम अपनी हर बात दिल खोल के कह सकें। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ऐसे रिश्ते होते हैं और वो रिश्ते इतने खास होते हैं कि बरसों तलक बीत जाए लेकिन वो रिश्ते खत्म नहीं होते, और अक्सर उन रिश्तों का नाम होता है सच्ची दोस्ती। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो भी कुछ ऐसी ही है कि ये वो रिश्ते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। पुरानी दोस्ती की बात करूँगी, और मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि कल कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। कल अचानक से मेरे पास मेरी एक दोस्त का फ़ोन आया। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, दोस्त तो फ़ोन करते ही हैं, बात तो करते ही हैं। जी हाँ बिल्कुल, दोस्त तो बात करते ही हैं।

लेकिन 10 या 12 साल के बाद अचानक से कोई बरसों पुराना बिछड़ा दोस्त जब आपसे बात करता है तो कैसा महसूस होता है, वो मैंने कल महसूस किया। और सच बताऊं, ऐसा लगा ही नहीं कि 10 से 12 साल ना हमने एक दूसरे की शक्ल देखी थी, ना हम जानते थे कि हम अपनी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी बातें ऐसे चल रही थी जैसे हम हर रोज़ हर पल एक दूसरे से बात कर रहे हों। मतलब बहुत ही अच्छी जो फीलिंग होती है ना, वो मुझे हुई। और ऐसा ही तो होता है, वो दोस्त जिनसे अब शायद रोज़ बात भले ही ना होती हो, अपनी आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी शायद वो रोज़ दिखाई ना देते हों, लेकिन जब सालों बाद उनका फ़ोन आता है तो वही महसूस होता है जो मैंने कल महसूस किया। तो यही सवाल है मेरा आप सबसे कि आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आया है क्या, या आपकी कभी अपने बिछड़े किसी बचपन के दोस्त से मुलाकात हुई है, या आज तक वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश, मैं हूँ आपकी दोस्त आरती गौड़, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेल करने के लिए ipradiodelhi@gmail.com पर जल्दी से मेल कीजिए।

0: नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश इंद्रप्रस्थ चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौर और आज हम बात कर रहे हैं आपके उस दोस्त की जिसके साथ आपने अपना बचपन गुजारा और हो सकता है वो आज भी आपका दोस्त हो या हो सकता है कि ज़िंदगी की मसरूफियत में कहीं बिछड़ गया हो। तो अगर उसे याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये मंच खुला है, आप इस पर आकर अपनी बात कह सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो संदेश आया है वो

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार का कहते हैं, आदरणीय मैडम जी आपको हार्दिक नमस्कार। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम आप कर रहे हैं, बेहतरीन नगमे सुन रहे हैं और प्रोग्राम से हम जुड़े हुए हैं, आनंद उठा रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू कि आप इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब जो सवाल मैंने पूछा है, वो सवाल का जवाब आपके सिवा कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपके दोस्तों को आपसे ज़्यादा भला कौन जानेगा।

ये हमारे पास दोस्ती से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत सा संदेश आया है किशोर नगर अमरावती के हीरामन शेंडे और सिद्धार्थ गुनाड़े का। कहते हैं, दोस्ती का शुक्रिया कुछ इस तरह अदा करूं, आप भूल भी जाएं तो मैं हर पल याद करूं। दोस्ती ने बस इतना सिखाया है मुझे कि खुद से पहले मैं आपके लिए दुआ करूं। जी हाँ, दोस्तों के लिए कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो होती हैं हम किसी से नहीं कहते, लेकिन अपने सच्चे दोस्त से जरूर।

गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का कहते हैं, जरूरी नहीं जो साथ हैं वो सब अपने हैं, कौन कब किसका और कितना है ये सिर्फ वक्त बताता है। जी आपने जो बात कही है वो बात तो सही है, लेकिन वो बात हमारे टॉपिक से मेल तो नहीं खाती, लेकिन फिर भी आपने बात बिल्कुल सही कही है। कई बार ऐसा वक्त आता है जब हम जिनसे उम्मीद लगाते हैं वो हमारा साथ नहीं देते, और वो हमारे साथ खड़े होते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच ही नहीं पाते। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे श्रोता हैं, उनके नाम भी धीरे धीरे शामिल कर दी जाऊंगी।

हमारे पास एक संदेश आया है सतीश अनेजा का चंडीगढ़ सिटी से। इन्होंने बहुत अच्छी बात दोस्ती पर कही है कि दोस्ती का रिश्ता सर्वोपरि होता है। दोस्त चाहे पुराना या नया हो, उसकी मोहब्बत का सुरूर ही अलग होता है। मेरा एक दोस्त लाहौल स्पीति में रहता था, जो कई साल पहले फ्रांस चला गया था। अभी चार दिन पहले मैं मनाली के अटल टनल के पास था, तो अचानक उसने पीछे से मेरी आंखों पे हाथ रखकर कहा, पहचानो? कौन? मैंने उसकी आवाज पहचान कर बता दिया। फिर हमने जर्सी डाली और इतनी शिद्दत से झप्पी डाली और इतनी शिद्दत से मिले कि बयां करना मुश्किल हो गया। फिर हमने एक नदी में इकट्ठे राफ्टिंग की। ये मंजर इतना अच्छा था, आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, जब पुराने दोस्त मिलते हैं और अचानक से मिल जाए तो और भी ज्यादा खुशी होती है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा लगा।

दोस्तों, दोस्ती के बीच में कभी कभी नाराजगियाँ, गलतफहमियाँ और रूठना मनाना भी होता है, लेकिन दोस्त से ज्यादा देर रूठा भी नहीं जा सकता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये संदेश हमारे पास आया है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। इसके साथ ही अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। साथ ही हमारे साथ और भी बहुत सारे श्रोता ये जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये हैं सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी, कृष्णा कॉलोनी हांसी से। इसके अलावा रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, ये जसपुर उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मकड़, ज्योति मन्नत, भारत, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरिया, जालंधर से हमारे साथ बने हुए हैं। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही मुकेश कश्यप।

शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी और मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह भी हमारे साथ बने हैं और भी बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सब के नाम भी शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए कि अपने उस दोस्त को याद तो कीजिए हमारे इस कार्यक्रम में और बताइए कि आपका वो बिछड़ा पुराना दोस्त आज भी आपके साथ है या फिर कहीं दूर खो गया है और आप उसे ढूंढ रहे हैं। हो सकता है वो भी सुन रहा हो और आप तक पहुंच जाए।

दोस्तों ये जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो है फैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। ये कहते हैं कि दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है दीदी जी। जी हाँ, जब दोस्त साथ में होते हैं तो भले ही हम खुद में अंदर से कमज़ोर फील कर रहे हों लेकिन उसके साथ होने से ही एक अलग सी मजबूती आ जाती है। ये जो हमारे पास संदेश आया है ये है ऊपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हैं वो है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु, अश्विनी चुप, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ अगले जो श्रोता हमारे साथ है वो है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, इनका संदेश ऑलरेडी लिया जा चुका है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ये हमारे पास जो अगला संदेश आया है वो है आपकी पसंद कार्यक्रम से हम भी जुड़ गए हैं और हमारे पुराने दोस्त तो हमारे आसपास ही रहते हैं, हफ्ते दो हफ्ते में तो मुलाकात होती ही रहती है, ऐसा कहना है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल का। साथ ही धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

दोस्ती वो रिश्ता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें थोड़ी नाराजगी हो सकती है, पर दोस्ती हमेशा कायम रहती है। चाहे कितनी भी पुरानी दोस्ती हो, कभी ना कभी तो याद आ ही जाती है। जी हाँ, हम नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करने की भी बातें करते हैं, लेकिन कितने दिन चल पाती हैं हमारी ये बातें, ये हमें भी पता है। मन ही मन चल रहा होता है कि या तो वो हमसे बात करे, नहीं तो हम तो चले ही जाएंगे बात करने। बस कुछ ऐसे ही होते हैं रिश्ते दोस्ती के। फिलहाल ऐसा लिखना है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका खोरवाल का भानु प्रकाशन के साथ है।

ये एक हमारे पास श्रोता है, इन्होंने अपना संदेश भेजा है और संदेश में भेजी है एक कहानी। बबलेश पवार इनका नाम है, गांधी चौक बाड़मेर से। अब ये कहानी इनकी है या इनसे किसी की जुड़ी कहानी है, फिलहाल इन्होंने बताया है कि बहुत सालों के बाद एक फोन आया हेलो बबलेश करते हुए। दूसरी तरफ से अनजान पर पहचान वाले दोस्त की आवाज लग रही थी और बोले, अजीत पत्र मित्र बोल रहा हूँ। हाथ जैसे थम गए और वो आवाज मेरे बचपन के सबसे पक्के दोस्त अजीत की थी। हम दोनों 1980 से पत्र मित्र थे। बाद में काम के सिलसिले में हम अलग हो गए थे। धीरे धीरे जगह बदले, संपर्क पूरी तरह टूट गया और आज 40 साल बाद उसकी आवाज सुनाई दी थी। और उसके बाद उसने बोला कि बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला, उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में भी पुरानी मासूमियत थी और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे 40 साल में पीछे लौट गया हूँ। पुरानी यादें आंखों के सामने तैरने लगी और पत्र पे बातें जो लंबी लंबी करते थे वो बातें वक्त की धूल में कहीं खो गई, क्योंकि हम तो अब खुद से बातें करने लगे थे। घंटों बातें की इन लोगों ने, सुख दुख बांटे, पुरानी शरारतों को याद किया, हंसते हंसते रो पड़े और उस एक फोन कॉल ने बरसों की दूरी को पल भर में मिटा दिया। और उसी वक्त इनको एहसास हुआ कि सच्चे रिश्ते वक्त के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, दोस्ती दोस्त दूर हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती को कैसे दूर करोगे, वो तो आपके दिल में बसी रहती है।

रूठना, मनाना, लड़ना, झगड़ना, फिर एक मिनट में हंस के गले लग जाना। सहेली के बिना ये हुनर कहाँ, माफ़ी मांगे बिना माफ़ कर जाना। दोस्ती का मतलब खून के रिश्ते तो खुदा बनाता है, पर दोस्ती का रिश्ता दुआ से बनता है। ये लिखना है मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा का। इन्होंने भी दोस्ती पर यह खूबसूरत सी बात कही है। दोस्तों इसके साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रुधान खुराना। और ये कहते हैं कि यही कहूँगा कि सच्ची दोस्ती जिंदाबाद। जी हाँ, सच्ची दोस्ती जिंदाबाद ही

0: होनी चाहिए, क्योंकि दोस्त के बिना ज़िंदगी अधूरी सी वैसे भी लगती है। आप हर बात जो होते हैं ना, अपने माँ बाप से भी नहीं कह सकते, अपने भाई बहन से भी नहीं कह सकते, लेकिन दोस्त वो होता है जिसके कंधे पर आप सर रख के रो भी लेते हैं, और कभी कभी आप उसके गले लगकर अपनी सारी थकान, अपना सारा दर्द भूल भी जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये आदर्श नगर मालौत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़ा हुआ है ये खूबसूरत सा गीत।
1: दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने। अरे दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने।

दो मस्ताने चल जिंदगी।

दोस्तों, ये जो संदेश हमारे पास आया है ये भी एक बहुत ही गहरा संदेश है और ये भेजने वाले हैं अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदा फारजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, छोटी बलिया करजत मुंबई से। इन्होंने लिखा है कि आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है अपने उस दोस्त का जो अब इस दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि बहन जी, आपके टॉपिक पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी के कोई ना कोई दोस्त तो ज़रूर होता है। मेरा भी एक दोस्त था और वो सच्चा था, वफ़ादार दोस्त था, और लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने आखिरी वक्त तक दोस्ती निभाई। हम दोनों का जो बचपन है वो बिहार में बीता। पढ़ाई के बाद मैं मुंबई चला आया, मगर हम दोनों का प्यार और दोस्ती कायम रही। जब भी बिहार जाता तो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा मेरे साथ रहता। आखिरी वक्त में मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी, इसका मुझे बहुत गम है और आज तक है और हमेशा रहेगा। वो 2020 में हमसे विदा हो गया। मैं आपके इस दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि इसी साल 2020 में नहीं बल्कि 2026 में अप्रैल में मैंने भी एक बहुत ही अपनी प्यारी सी दोस्त को खोया है और मेरा भी दर्द यही है कि मैं उससे आखिरी बार मिल नहीं पाई। लेकिन जब भी उसकी तस्वीर देखती हूँ, जब भी उन यादों में खोती हूँ, तो सच में एक एक पल याद आ जाता है जो शायद मैं किसी से बाँट तो नहीं सकती, लेकिन मेरे दिल में वो दर्द, वो तकलीफ, लेकिन उसके साथ बिताए हुए वो लम्हों की खुशी आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है।

दिन भी क्या दिन थे जब आप याद करते हैं अपने बचपन के उन दोस्तों को जो शायद आज भी आपके साथ होंगे, या फिर कोई एक आध दोस्त आपसे दूर हो गया होगा लेकिन दिल से दूर नहीं हुआ, लेकिन जब आप उनके साथ वो मस्ती, वो पल, वो लम्हे याद करते होंगे तो चेहरे पे स्माइल तो ज़रूर आती होगी। फिलहाल हमारे पास संदेश आया है, ये है जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। कहते हैं कि गीतों का चयन बहुत अच्छा चल रहा है भाई, आप सबकी फरमाइशें हैं, आप सब जो चाहते हैं वही चल रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इतने खूबसूरत गीतों की फरमाइश भी करते हैं और साथ में इतने प्यारे प्यारे संदेश भी लिखते हैं। अगला जो संदेश है वो है लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, और ये कहते हैं हमारा भी संदेश शामिल कीजिएगा। जी हो गया। साथ में कहते हैं, तेरे साथ हंसी तो पल में आती है, तेरे बिना हर खुशी अधूरी लगती है। कहना तो ये किसके बारे में चाहते हैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, पर मैं मान लेती हूँ ये अपने दोस्त के बारे में ही कह रहे हैं। मुंबई से अनु बढ़ जाते हैं, शमशूल खान और अनुराज बेनारा।

और भी संदेशों की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह शाहजहां बेगम, ये हमारे लिए संदेश भेज रहे हैं कि हमारा मैसेज शामिल कर लो, हमारा दोस्त नहीं है। भाई दोस्त तो सबके होते हैं, और दोस्त अगर कोई आपका नहीं है तो आप किसी के सच्चे से दोस्त बन जाइए, यकीन मानिए वो भी आपसे दोस्ती ज़रूर करेगा। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही ये कहते हैं, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। कहते हैं, दोस्ती एक ऐसा अनमोल पवित्र रिश्ता है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं। ये विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम की मजबूत नींव पर टिका होता है। सच्चा दोस्त वो है जो सुख में खुश हो और दुख में ढाल बनकर साथ खड़ा रहे। जी हाँ, ऐसे ही दोस्तों की ज़रूरत होती है। वैसे दोस्त तो अगर हम महाभारत की बात की जाए तो दोस्त तो कर्ण और दुर्योधन भी थे, और वहाँ पर उसे पता था कर्ण को कि मैं अगर दुर्योधन के साथ रहूँगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरा पतन निश्चित है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती के लिए खड़े रहे। और एक तरफ थे अर्जुन और श्री कृष्ण, जिन्होंने सारथी बनकर उन्हें वो युद्ध ही नहीं जिताया बल्कि हम सबको भी गीता का उपदेश दे दिया, हम सबको भी रिश्तों के बारे में सब कुछ समझा दिया। तो दोस्ती करनी है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे दोस्त हों जहाँ पर जीत निश्चित हो, सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि जहाँ हार निश्चित हो वहाँ भी कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ खड़े हों, और अगर वो गलत कर रहा हो तो उसको कान पकड़ के सीधे रास्ते पर ले आइए।

जी हमारे पास संदेश आया है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप का। इसके साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। कहते हैं पुरानी दोस्ती के कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय की धूल में कहीं खोते नहीं, बल्कि एक मीठी याद बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ऐसे रिश्ते केवल वक्त के साथ नहीं होते, बल्कि उनमें साझा की गई हंसी, बचपन की मासूमियत और अटूट भरोसा भी होता है जो उम्र बढ़ने के साथ और गहरा हो जाता है। और 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद स्कूल गेट टुगेदर में अपने मित्र मुकेश अरोड़ा से मिलना वास्तव में एक भावुक और सुखद अनुभव रहा इनके लिए। जी हाँ, जब अचानक से दोस्तों हमारे साथ रोज होते हैं और बहुत अच्छे से हमारा साथ देते हैं, हमें हंसाते हैं, हमें गुदगुदाते हैं, हमसे हमारी जो दिल की बातें हैं वो पूछते हैं, जानते हैं और उनका सॉल्यूशन निकाले या ना निकाले पर कम से कम

दोस्तों अब इस कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन इस गीत के साथ दोस्ताना फिल्म का ये गीत आप सबके लिए इसी दुआओं इसी शुभकामनाओं के साथ मैंने प्ले किया है कि आप सबकी दोस्ती हमेशा सलामत रहे, आपका दोस्ताना हमेशा सलामत रहे और आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और जुड़े रहें इंद्रप्रस्थ के साथ। फिलहाल अपनी दोस्त को दीजिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये उपलब्धि नवाचार, हरित परिवहन और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान

0: समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके क्रियान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 695 अंक बढ़कर 77,882 जबकि निफ्टी 178 अंक की बढ़त के साथ 24,251 पर पहुंच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासी ट्रक चालकों पर व्यापक कार्रवाई की योजना की घोषणा की है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिका की सड़कों पर अवैध रूप से काम कर रहे लोगों को हटाकर उनकी जगह नए वाणिज्यिक लाइसेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से सैन्य क्षेत्र के लोगों को लाना है। ये घोषणा पेंसिल्वेनिया रक्षा तथा नवाचार शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station in a short while from now. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m, he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, the Prime Minister will visit Jalandhar in Punjab, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. Prime Minister Modi has highlighted that today, the dream of India receiving its first hydrogen train is about to become a reality. He emphasized that the milestone reflects India's growing commitment to innovation, green mobility, and the vision of Atmanirbhar Bharat. Union Home Minister Amit Shah will arrive in West Bengal tonight on a 3-day visit. He is scheduled to land at Baghdogra Airport in Siliguri at 9 p.m. and will stay overnight at the BSF Frontier Headquarters in Kadamtala. Tomorrow, Mr. Shah will visit the BSF's 18th Battalion at Seema Chowki in Jumagach, where he will address a Prahari Sammelan, participate in a plantation drive, lay foundation stones, inaugurate several development projects, and interact with BSF personnel. Later, the Home Minister will hold a series of higher-level meetings at Uttarkanya in Siliguri. Later in the evening, he will leave for Kolkata. The National Testing Agency, NTA, has declared results of NEET UG 2026 re-examination. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. Gujarat Anti-Terrorist Squad or ATS has arrested 5 persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed outfit. The arrested persons were identified as Bilal Abid Bhai Shera,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरस, जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे गुरदास मान की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल आपने सुनी। और अब बढ़ते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ, जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है फाल्गुनी पाठक ने। और यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद आप नाचने पर मजबूर हो जाएंगे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, जिसमें आपने सुना अभी जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल, साथ थी लता मंगेशकर। और बढ़ते हैं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज द्वारा राग गुर्जरी तोड़ी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसके अंतर्गत आपने सुना पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज द्वारा राग गुर्जरी तोड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। दोपहर के 12 बजने को हैं। आपसे कुछ ही देर में हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहेम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एक क्लब स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता

में होगी। समुद्र प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हर आंगन। रिश्तों की वो डोर जो उम्र के साथ और मजबूत होती जाती है, अनुभवों की वो थाती जो हर घर को आंगन की तरह महकाती है। ऐसे ही अपने पन से भरे रिश्तों को दुलार करने का दिन है आज। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति पुरी अभिनंदन करती हूँ आपका कार्यक्रम घर आंगन में, क्योंकि आज शुक्रवार है और आज का कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर समर्पित है, हमारे उन वरिष्ठ जन को जिनकी छाँव में हम सब पले बड़े हैं। आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इंद्रप्रस्थ के हमारे श्रोता हमें 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं, और हमारा डिजिटल परिवार जो हर पल हमारे साथ जुड़ा रहता है वो हमें AIR न्यूज़ लाइव 24/7 YouTube चैनल पर सुन रहा है। तो दोस्तों, आज का सवाल हमारे वरिष्ठ जनों से है, मोबाइल के बिना जीवन कैसा था, क्या बदलाव आया है उस समय से आज तक, यानी मोबाइल की उपयोगिता बताइए। अपने जवाब हमें ईमेल कीजिए fmgold@gmail.com पर, fmgoldga@gmail.com, fmgoldga@gmail.com जो है वो घर आंगन के लिए है, और gmail.com पर आपने इसे भेजना है। हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा आपकी मेल्स का। चलिए, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है लव इन टोक्यो।

और देखिए कितनी ही जल्दी हमें एक मेल भी आ गया। हमने प्रश्न पूछा था मोबाइल की उपयोगिता के बारे में कि बुजुर्गों की जिंदगी में मोबाइल की क्या जगह है और मोबाइल के बिना पहले जीवन कैसा था। तो हमें एक मेल फटाफट से लिखा है नवीन भाटिया जी ने मोतीनगर दिल्ली से, और ये लिखते हैं कि वो टाइम भी अच्छा था, सिंपल था, और ये टाइम भी उनके लिए मोबाइल वाला अच्छा है और उनको एक्टिव रखता है। हमारी भी पल पल वो खोज खबर ले पाते हैं, तो इसलिए मोबाइल उनके लिए अच्छा है। नवीन जी, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। और देखिए क्या है कि किसी भी चीज़ के साथ ना उसकी अच्छाइयाँ जुड़ी रहती हैं, और उसे अच्छाइयों के साथ ही अडॉप्ट करना बहुत अच्छा भी रहता है। और एक ऐसा ही सुविचार हम आज अपने श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, जिंदगी में जब भी हमें अपनी ताकत पर कभी भरोसा डगमगाता हुआ महसूस हो ना, तो एक नाम याद आता है, और वो हमेशा हमें भीतर से हिम्मत देता है, और वो है हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी कहा करते थे कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उनका विश्वास था कि एक विचार लीजिए और उसी विचार को अपना जीवन बना लीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसका सपना देखिए, उसी विचार में जीवन को जिए, यही सफलता का रास्ता है। तो दोस्तों, आज इस सुविचार को आप भी अपने जीवन में उतारिए और अपने अंदर की उस सोई हुई शक्ति को जगाइए हमारे इस प्यारे से गीत के साथ। और इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, और फिल्म है अप्रैल फूल।

और देखिए समय कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा है और हमें भी हमारे श्रोताओं के मेल्स आ रहे हैं। ये मेल हमें आया है डॉक्टर रामेश्वर राव का। ये लिखते हैं कि मोबाइल फोन आने से पहले हमारी याददाश्त कहीं ज्यादा सक्रिय रहती थी। फोन नंबर, घर के पते, बसों के रूट, जन्मदिन और दुकानों के खुलने का जो समय होता था, ये सब हमें याद रहते थे। और शायद हम एक छोटी सी डायरी में लिख भी लिया करते थे। रास्ता पूछने के तरीके भी अलग अलग थे। कोई कहता था मंदिर के बाद दूसरी गली से मुड़ना है और शर्मा जी का घर वहीं से पूछ लेना। इसी बहाने से अनजान लोगों से बातचीत भी हो जाती थी, नए परिचय बनते थे, अपनेपन का एहसास भी मिलता था। आज मोबाइल हमारी हर जानकारी अपने पास रखता है, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होती, रास्ते के लिए GPS है, जन्मदिन याद दिलाने के लिए रिमाइंडर है और हर जानकारी बस एक क्लिक पर दूर है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हाँ देखिए उपयोगिता तो मोबाइल की बढ़ी ही है। और हमें एक और मेल आया है, ये हैं अनिल बेनीवाल जी, और ये हमें मेल लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि हम आपके न्यू लिसनर हैं हिसार से। और तो अनिल जी ये भी लिखिए कि आपको मोबाइल की उपयोगिता के बारे में क्या कहना है। मोबाइल के पहले का समय अच्छा था या आपका समय अच्छा है? आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे न्यू लिसनर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम घर आंगन में। हम आगे भी आपकी मेल्स यूं ही शामिल करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, वो कभी मुड़ता है, बदलता है और हर मोड़ अपने साथ एक नया संदेश लेकर आता है। कभी ये मोड़ आसमान में दिखता है तो कभी इंसानों के जमीर में। दोस्तों आज 17 जुलाई है और आज के दिन का इतिहास बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इसी एक दिन से दो बड़ी घटनाएं जुड़ी हैं, एक प्रकृति से और एक पूरी मानवता से। आज से दक्षिणायन शुरू हुआ है, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर दिशा बदलता है और दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करता है। दिन छोटे होने लगते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं और ये समय आत्मचिंतन का और संयम का माना जाता है। और ठीक इसी दिन 1998 में रोम में हस्ताक्षरित रोम संविधि की याद में दुनिया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी आज ही के दिन मनाती है। यही वो संधि थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जन्म दिया। ये अदालत नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई करती है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग शहर में है। इस दिन दुनिया भर में संगोष्ठियां, चर्चाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को यही याद दिलाया जा सके कि पीड़ितों को न्याय दिलाना और अपराधियों को जवाबदेह ठहराना पूरी मानव जाति की साझा जिम्मेदारी है। तो दोस्तों जैसे प्रकृति रुककर संतुलन बनाकर अपनी दिशा बदलती है, वैसे ही इंसानियत को भी बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखना पड़ता है और वो सही राह है या नहीं है ये भी जांचना पड़ता है। संतुलन और न्याय दोनों तभी सार्थक होते हैं जब उनके पीछे चिंतन और जवाबदेही हो, और हम जवाबदेह हैं आपको ये गीत सुनवाने के।

जी हाँ, हमें समझ में आ रहा है कि आपको हमारा सवाल बहुत पसंद आ रहा है और आप हमें मेल भी किए जा रहे हैं। तो हमें अभी एक मेल प्राप्त हुआ है चौधरीवास हिसार से, राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, प्रियांशी का, और ये लिख रहे हैं, श्रुति जी नमस्कार, मोबाइल से पहले मानव समाज।

0: से जुड़ा हुआ था। आज कोई अप्रिय घटना होती है या सड़क दुर्घटना होती है तो लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, मदद देने वाले बहुत कम होते हैं। देखिए, ये तो मोबाइल से ज़्यादा मानवता पर एक प्रश्न है, क्योंकि मोबाइल से लोग वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल से वहाँ एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते हैं, मोबाइल से और भी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो हम ले सकते हैं और उस आपातकालीन स्थिति में उन लोगों की मदद कर सकते हैं। पर हाँ, ये चॉइस है कि कोई वीडियो बनाता है और कोई पुलिस को सूचना करता है और कोई एम्बुलेंस को सूचना करता है। और एक और मेल हमको मिला है, ये उग्रसेन यादव जी का है। ये हमें लिख रहे हैं कि मोबाइल का प्रत्येक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन किसी भी वस्तु या चीज़ की अधिकता जो है वो हानिकारक होती है। फ़ोन के बिना मोबाइल वाले समय के एहसास भी अच्छे थे, और उस समय भी लोग जब फ़ोन को नहीं यूज़ किया करते थे तब भी समय अच्छा था। और हमें एक और मेल आया है सुदर्शन मुखी जी का, अनीता मुखी जी का, सिमरन मुखी जी का। ये शांति नगर सोनीपत से हमें लिख रहे हैं, नमस्कार बोल रहे हैं, नमस्कार आपको भी हमारी तरफ से। ये लिखते हैं कि हर चीज़ के प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। मोबाइल से जहाँ जीवन आसान हो गया है, लेकिन फेस टू फेस मिलना जुलना लोगों का अब संपर्क जो है वो कम हो गया है, रिश्ते नाते मोबाइल पर निर्भर और डिपेंड हो गए हैं। आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ हो, सुखद हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो बहुत अच्छा मेल लिखा है, और बात सच भी है कि मोबाइल से थोड़े अगर देखा जाए तो जो दूरियां थी रिश्तों की वो तो मोबाइल से कम हुई हैं, कि लोग जो है मोबाइल से रोज़ बात कर पाते हैं, किसी के बच्चे दूर हैं, दूर देश में भी हैं तो भी मोबाइल से वो नज़दीक रहते हैं। और देखिए, आज के दौर में जहां हर किसी के हाथ में मोबाइल है, वहीं एक ऐसा भी दौर था जब न कोई स्मार्टफोन था न इंटरनेट था, फिर भी रिश्ते उतने ही अपनेपन से जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हैं। चिट्ठियों का इंतज़ार रहता था, पड़ोसियों से मुलाकात, आपस में बातचीत उस जमाने की असली पहचान हुआ करती थी। तो क्यों ना आइए जानते हैं हमारे कुछ बुजुर्गों से कि उनकी नज़र में मोबाइल के बिना जमाना कैसा था, और क्या आज के युग में, आज के समय में मोबाइल की क्या उपयोगिता है भी या नहीं है। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: मेरा नाम रेनू मल्होत्रा है। मोबाइल आने से पहले लोगों का जीवन बहुत सरल और एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। बच्चे अपना ज्यादातर समय बाहर खेलते थे, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता था। किशोर अपने दोस्तों से आमने सामने मिलकर बैठकर बातें करते थे, पढ़ते थे, अपने शौक पूरे करते थे। वहीं बड़े लोग परिवार के साथ बैठ के समय बिताते थे, बातचीत करते थे और रिश्तों को मजबूत बनाते थे। आज मोबाइल ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके कारण आमने सामने की बातचीत, खेलकूद, परिवार के साथ बिताया जाने वाला समय कम हो गया है। इसलिए हमें तकनीक का उपयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन संतुलित तरीके से, ताकि हम अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और खुशियों को भी उतना महत्व दें।
2: मैं किशोर कुमार कौशल। मोबाइल आज के युग की आवश्यकता बन गई है। बिना मोबाइल के हमारे अधिकतर काम अधूरे रह जाएंगे। ये भी सच है कि एक समय था जब मोबाइल था ही नहीं, उस समय हम बहुत से झंझटों से बचे रहते थे। मेरा यह मानना है कि आज मोबाइल के इतने सारे उपयोग हैं कि हम बहुत सारे भुगतान मोबाइल के माध्यम से कर देते हैं। लेखक कवि लोग अपनी रचनाएं मोबाइल पर ही टाइप करके सीधे प्रकाशक को, संपादक को भेज देते हैं। बहुत से ट्रेनिंग, बहुत से प्रशिक्षण मोबाइल के माध्यम से घर बैठे, बहुत सारी ऑनलाइन गोष्ठियों से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे विद्वत जनों को हम घर बैठे सुन पाने में समर्थ होते हैं। आज के समय में मोबाइल की उपयोगिता और उसके लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, यह आवश्यक है कि हम किसी भी चीज के अति प्रयोग से अवश्य बचें, क्योंकि बहुत देर तक मोबाइल को देखना बच्चों का, बड़ों का, युवाओं का, बुजुर्गों का घंटों घंटों समय बर्बाद करना, यह बहुत सारे नुकसानों को जन्म दे सकता है। आज 21वीं सदी में जो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, तो उनमें एक मोबाइल भी ऐसी चीज है जिसके बगैर शायद आज लोगों का रहना जीना उतना संभव नहीं है जितना होना चाहिए। ग्रामीण प्रदेशों में भी लगभग अशिक्षित लोग भी अब बिना मोबाइल के

0: अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, वो बहुत सारे कार्यक्रम मोबाइल पे देखते सुनते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मोबाइल बहुत उपयोगी है, इसे नकारा नहीं जा सकता।
1: प्रवीण अरोरा का आप सबको नमस्कार। मोबाइल ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। पहले लोग एक दूसरे के सामने मिलकर बातें कर अपने समय बिताते थे, बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे, रिश्तों में अपनापन अधिक महसूस होता था, किसी से संपर्क करने के लिए पत्र लिखे जाते थे या फिर लैंडलाइन फोन का उपयोग किया जाता था, जानकारी प्राप्त करने के लिए किताबों, अखबारों और शिक्षकों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता था। जीवन अपेक्षाकृत शांत और सरल था, उस समय कुछ कठिनाइयां भी थी। दूर रहने वाले लोगों से तुरंत संपर्क करना संभव नहीं था, किसी भी जानकारी को खोजने के लिए काफी समय लगता था और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता मिलने में भी देर हो सकती थी। आज मोबाइल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके माध्यम से सेकेंड्स में दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। पढ़ाई, ऑनलाइन बैंकिंग, खरीदारी, मनोरंजन, नौकरी, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी सुविधाएं अब मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध हैं। इंटरनेट के कारण ज्ञान और जानकारी तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है, लेकिन मोबाइल के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। बच्चों में खेलकूद की आदत घट रही है, आंखों की समस्या, तनाव और मोबाइल की लत जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी है और मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। यदि हम मोबाइल का संतुलित और समझदारी से उपयोग करें तो यह हमारे जीवन को आसान, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बना सकता है।
2: मेरा नाम सुनील कुमार है। आज के दौर में मोबाइल सभी की जरूरत बन गया है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो। मोबाइल केवल संचार का साधन ही नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता का भी माध्यम बन गया है। बुजुर्ग इससे परिवार से निरंतर संपर्क में रहते हैं, बच्चे और रिश्तेदार दूर रहने पर भी कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिससे अकेलापन कम होता है। आपातकाल में सहायता भी करता है, किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दुर्घटना की स्थिति में तुरंत परिवार, पड़ोसी या एम्बुलेंस से संपर्क किया जा सकता है। दवा लेने की याद दिलाने वाले अलार्म, डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आसानी से मिल जाती है। पेंशन की जानकारी, बैंकिंग और बिलों का भुगतान घर बैठे किया जा सकता है। भजन, संगीत, समाचार, धार्मिक प्रवचन, पुस्तकें और पहेलियां मानसिक ताजगी बनाए रखने में मदद करती हैं। सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और आवश्यक सेवाओं की जानकारी मोबाइल के माध्यम से मिल जाती है। मोबाइल के माध्यम से बुजुर्ग नक्शे, टिकट बुकिंग और कैब जैसी सेवाओं से यात्रा आसान कर लेते हैं। मोबाइल का सही उपयोग सीख कर बुजुर्ग अपने कई दैनिक कार्य स्वयं करते हैं। मोबाइल बुजुर्गों का एक सच्चा वरदान है, यह उन्हें परिवार से जोड़े रखता है, सुरक्षा और सुविधा प्रदान करता है, जीवन को अधिक सरल, सक्रिय और आत्मनिर्भर बनाता है। हालांकि इसके लाभ तभी पूर्ण रूप से मिलते हैं जब इसका उपयोग संतुलित और सावधानी पूर्वक किया जाए।
3: यूं ही तुम मुझसे बात

तो श्रोताओं, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, हमने आपने सवाल पूछा था कि मोबाइल से पहले का समय कैसा था और अब मोबाइल के साथ समय कैसा है, यानी मोबाइल की उपयोगिता कैसी है आज के समय में और बुजुर्गों के लिए खासकर। और बुजुर्गों ने तो इस बारे में अपने विचार भी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सुना ही है, उन्होंने अभिव्यक्त किए। कुछ मेल हमारे पास और आई हैं, हम पढ़ना चाहेंगे। ये मेल हमारे पास आई है गौरी शंकर जी की, नांगलोई दिल्ली से। लिखते हैं, श्रुति बेटा राम राम, उम्र का तकाजा है, मोबाइल सीखने में मुझे 5 साल लग गए, फिर भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी, लेकिन अच्छाई की तरफ जाओ तो कुछ ऐसे काम हैं जो घर बैठे हो जाते हैं और इसका फ़ायदा ही हमें मिलता है। एक मेल हमें लिखा है निर्मला देवी ने चौधरीवास से, और रेखा देवी ने ये लिखती हैं कि बस स्टैंड पर जाकर बस में किसी सवारी के हाथ समाचार पहुंचते थे पहले उस जमाने में, और अब ये होता है कि व्यक्ति घर में बाद में पहुंचता है, समाचार देने वाले पहले पहुंच जाते हैं, मोबाइल के साथ समाचार मिल जाते हैं। और बेमतलब का लेकिन जो दुरुपयोग होता है, बच्चे जो मोबाइल के साथ दुरुपयोग करते हैं, वो थोड़ा सा खराब लगता है, क्योंकि वो बच्चों की सेहत और बच्चों के व्यक्तित्व पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम बात बुजुर्गों की करें तो आपने देखा होगा कि बचपन में वो किसी भी बीमारी के लिए पहले घर से जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक नुस्खों पर भरोसा किया करते थे, और आज उसी परंपरा को सरकार ने पूरी दुनिया के सामने पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है। पर्यटन मंत्रालय और आयुष मंत्रालय मिलकर देश में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि दुनिया भर के लोग भारत आकर योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी जैसी हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धतियों का लाभ उठा सकें। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं और हमारी अपनी परंपराओं और सेहत से ये जो विषय है हमारा, ये उससे सीधी तरीके से जुड़ा हुआ है। ये विषय है वेलनेस टूरिज्म, यानी स्वास्थ्य पर्यटन का। इसी दिशा में

सरकार ने हील इन इंडिया नाम से एक पहल शुरू की है और साथ ही विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की भी शुरुआत की है ताकि वे आराम से भारत आकर यहाँ की चिकित्सा पद्धतियों का लाभ ले सकें। केरल के जो ज़मीन है उसको हम आयुर्वेद की जन्मभूमि मानते हैं और वहाँ के वेलनेस सेंटर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ऋषिकेश को योग की नगरी कहा जाता है और गोवा में भी आयुर्वेदिक उपचार के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया जा सकता है। सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि इन वेलनेस केंद्रों की गुणवत्ता बनी रहे, इसीलिए नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज द्वारा इसका प्रमाणीकरण भी किया जाता है। ये वेलनेस टूरिज्म केवल एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि ये हमारी उसी थाती का सम्मान है जो हमें हमारे बड़ों से विरासत में मिली है। अगली बार जब आप किसी अपने से मिलें तो उन्हें भी इस बारे में ज़रूर बताएं कि हमारी अपनी परंपराएं अब पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुकी हैं। इस गीत का आनंद लीजिए, मोहम्मद रफी ने गाया है, फिल्म है प्यासा।

और देखिए, इस बढ़िया से गीत के बाद एक बार फिर से मेल हम पढ़ते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं। और ये मेल एक बार फिर से हमें लिखा है डॉक्टर डी राजेश्वर राव जी ने, जो शकरपुर दिल्ली से हमें लिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि मैं घर आंगन का रेगुलर लिसनर हूँ और अपने ऑफिस में भी लोगों को इन्फॉर्म करता रहता हूँ, कोर्ट में भी इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि ये प्रोग्राम ज़रूर सुनो। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि हमारे कार्यक्रम

0: को सुनना चाहिए, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। और आप लिखते हैं कि हम सभी कुछ तो मोबाइल पे कर लेते हैं आजकल, बैंकिंग है, टिकट्स हैं, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट हैं, ग्रॉसरीज यानी जो भी हम घर गृहस्थी का सामान खरीदते हैं, गवर्नमेंट आईडीज भी हम फोन में रख लेते हैं, फैमिली ग्रुप्स बना लेते हैं, ऑफिस की मीटिंग्स है, न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट है, सभी कुछ तो एक ये रेक्टेंगुलर से साइज की चीज में छुपी रहती है जिसको हम मोबाइल कहते हैं। और आप लिखते हैं कि हम बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हम जाते भी नहीं हैं, हम ऐप्स पर उनसे मुलाकात कर लेते हैं, उन ऐप्स पर हम उन जगहों को देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक और मेल हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हैं कृष्ण कुमार गुप्ता, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से ही लिख रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। वीडियो कॉल से दूरियां कम होती हैं, अब फेस टू फेस बात हो जाती है, बिल जमा करने के लिए लाइन लगाने की संस्कृति को समाप्त करने वाला अगर देखा जाए तो मोबाइल ही है। तो यानी हमें ये समझ में आ रहा है कि मोबाइल के पक्ष में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और बोले भी क्यों ना, क्योंकि जिंदगी हमेशा बदलाव का नाम है और अच्छी चीज़ों को तो अडॉप्ट करना ही चाहिए। और जिंदगी हमें अक्सर यही सिखाती है कि हर उम्र का अपना एक उत्सव होता है, बस हमें उस को पहचानना जरूरी है। हम अक्सर उसे पहचानना भूल भी जाते हैं, और बुढ़ापे को हम अक्सर एक ठहराव मान लेते हैं, मगर भारतीय परंपरा इस सोच को बड़े खूबसूरती से चुनौती देती है। यही कहानी है शाष्टीभूर्ति की, जिसे 60 साल की उम्र में दोबारा शादी की परंपरा कहा जाता है। दरअसल षष्ठीपूर्ति का अर्थ है 60 सालों की पूर्णता। इस परंपरा की जड़ें मूल रूप से दक्षिण भारत की हैं, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, जहां इस शब्द को षष्ठी अब्द पूर्ति या सदाभिषेकम के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई दंपति अपने वैवाहिक जीवन के 60 वर्ष पूरे कर लेता है तो इसे एक विशेष खगोलीय उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि हमारे पंचांग में 60 वर्षों का एक पूरा चक्र होता है जिसमें बृहस्पति ग्रह 5 बार सूर्य की परिक्रमा करता है। इसी अवसर पर परिवार वाले पूजा और हवन का आयोजन करते हैं ताकि आने वाले जीवन को सुख समृद्धि के साथ बिताया जा सके। इसी परंपरा का सबसे भावुक पहलू यह है कि दंपति एक साथ फिर से दूल्हा दुल्हन बनते हैं, साथ फेरे लेते हैं, मानो जीवन भर का साथ निभाने की उस पहली प्रतिज्ञा को दोबारा से दोहराया जा रहा हो। जो परंपरा कभी दक्षिण भारत तक सीमित थी, अब धीरे धीरे उत्तर भारत के भी कई हिस्सों में लोकप्रिय हो रही है। हाल ही में इंदौर में भी एक ऐसा भव्य आयोजन देखने को मिला जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी 61 ऐसे जोड़े शामिल हुए जिनकी शादी को पूरे 60 वर्ष हो चुके थे और उन्होंने एक बार फिर से परंपरागत रीति रिवाज के साथ फेरे लिए। तो दोस्तों, रिश्ते अब शुरुआत में ही नहीं बल्कि समय के साथ भी उतनी ही देखभाल और उत्सव के हकदार होते हैं। अगली बार जब भी आप अपने किसी घर के बुजुर्ग दंपति को ये यात्रा पूरी करते देखें तो समझिएगा कि ये सिर्फ सालगिरह नहीं है बल्कि सदियों पुरानी उस परंपरा का उत्सव है जो प्रेम और साथ की मिसाल है।
1: हम जब होंगे 60 साल के

दोस्तों, याद है वो पुरानी कहावत, बड़ों का साया धूप में भी छांव जैसा होता है। तो आज बस इतना करिएगा, अपने दादा दादी या नाना नानी के पास बैठकर कोई पुरानी कहानी सुनिएगा और उन्हें, वो शायद हो सकता है उन्होंने 100 बार सुनाई हो, फिर भी एक बार फिर से सुनिएगा जैसे पहली बार सुन रहे हों। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए श्रुतिपुरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और हाँ, मुस्कुराना मत भूलिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,900

0: Arrested persons were identified as Bilal Abid Bhai Shera, Muhammad Ayub Kariwala, Muhammad Palanpuri alias Khali Ayub Sansara, Shafia Rais Mukti, and Muhammad Hassan Kardia. The European Union has expressed serious concern over the human rights situation in Pakistan. It has warned that Pakistan's continued access to trade benefits under the Generalized Scheme of Preferences Plus or GSP Plus will depend on its compliance with international commitments under the revised GSP framework from 2027. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कार्यक्रम एक ही फिल्म में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है एक ही फिल्म और आज हम आपको लेकर चलेंगे साल सन 1975 में, जब सिनेमाघर में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने बिना किसी लाउड कॉमेडी या कहें कि फूहड़पन के बिना पूरे देश को हंसने पर मजबूर किया। जी हाँ बिल्कुल, आप समझ गए होंगे कि हम ऋषिकेश मुखर्जी की ही कुछ फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही समझा आपने, फिल्म तो ज़रूर ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में ही बनी है, लेकिन वो फिल्म कौन सी है? जी दोस्तों वो फिल्म है उनकी कालजयी फिल्म चुपके चुपके। इस फिल्म की अगर हम संगीत की बात करें तो वो संगीत भी बहुत ही गजब का था। मतलब आप कह सकते हैं ये कि फिल्म ना सिर्फ कहानी, ना सिर्फ किरदार, ना सिर्फ एक्टिंग से बल्कि संगीत से भी एकदम जादू थी। इस फिल्म का संगीत दिया महान संगीतकार SD बर्मन साहब ने और इसके गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। और सबसे बड़ी बात ये कि बर्मन साहब की आखिरी फिल्मों में से एक फिल्म थी ये। तो दोस्तों जहां आज के दौर में कॉमेडी के नाम पर होता है लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर डबल मीनिंग डायलॉग्स होते हैं, वहीं चुपके चुपके एक ऐसे ठंडी हवा के झोंके की तरह थी। ऐसी साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनर फिल्म थी जिसे कि हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं और उतनी ही शिद्दत के साथ हंस भी सकते हैं। तो लीजिए करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म चुपके चुपके से, लता जी की आवाज़ में इस चुपके चुपके गीत के साथ।

जी बिल्कुल, चुपके चुपके पुरवैया चली और धीरे धीरे हमारा कार्यक्रम भी आगे चल रहा है। तो हम बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। ये फिल्म की कहानी घूमती है डॉक्टर परिमल त्रिपाठी यानी कि हमारे प्यारे धर्मेंद्र के इर्द गिर्द, जो कि बने हैं इस फिल्म में एक बॉटनी के प्रोफेसर। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर बने हैं और उन्हें अपनी नई नवेली पत्नी सुलेखा यानी कि शर्मिला टैगोर की फूफा जी यानी कि राघवेंद्र, जो कि किरदार निभाया है ओम प्रकाश जी ने, उनकी बुद्धिमानी का भूत उतारना है। क्योंकि फूफा जी को लगता है कि उन्हें, फूफा जी नहीं सॉरी उनके जीजा जी हैं वो, उनके जीजा जी को लगता है कि उन्हें इंसानों की परख सबसे ज़्यादा है और उनकी हिंदी एकदम परफेक्ट है। बस फिर क्या था, परिमल बाबू बन जाते हैं जीजा जी के ड्राइवर प्यारे मोहन इलाहाबादी, जो कि बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ शुद्ध और क्लिष्ट हिंदी। और इस खेल में उनका साथ देते हैं उनके दोस्त सुकुमार सिन्हा यानी कि अमिताभ बच्चन, जो कि बने हैं इस फिल्म में इंग्लिश के प्रोफेसर। और वो इंग्लिश के प्रोफेसर होने के बाद बॉटनी के प्रोफेसर बनने का नाटक करते हैं और सुकुमार के प्यार में पड़ती है चुलबुली वसुधा यानी कि जया बच्चन। जी दोस्तों, फिल्म की कहानी बड़ी मज़ेदार है, लेकिन इस फिल्म में जहाँ पर प्यारे मोहन इलाहाबादी अपनी शुद्ध हिंदी से जीजा जी का सर घुमा देता है, उस फिल्म की शूटिंग जिस राघवेंद्र बाबू के आलीशान बंगले में हुई थी, आज उस बंगले का मालिक कौन है आप जानते हैं? और आज भी उस घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ क्यों लगी रहती है, हम आपको बता देते हैं। दरअसल जहाँ धर्मेंद्र यानी कि परिमल त्रिपाठी यानी कि प्यारे मोहन बागवानी करते हैं और ड्राइवर बनकर रहते हैं, दरअसल वो जगह कोई स्टूडियो या कोई सेट नहीं था, बल्कि वो मुंबई का एक आलीशान बंगला था जिसका नाम था ईश्वेश, और वो इस फिल्म के निर्माता एनसी सिप्पी का था। और मज़ेदार बात ये थी कि इस फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी उस दौरान एक नौजवान एक्टर को ये घर बड़ा पसंद आया और उसने उसी वक्त तय किया कि एक ना एक दिन वो इस घर को खरीद कर रहेगा। और वो नौजवान और कोई नहीं बल्कि वो थे अमिताभ बच्चन। जी हाँ दोस्तों, आज जिन्हें हम अमिताभ बच्चन का आइकॉनिक बंगला जलसा कहते हैं, वही जलसा, वही बंगला है ये ईश्वेश, जहाँ पर फिल्म चुपके चुपके की शूटिंग हुई है। ना कमाल का इत्तेफाक। तो लीजिए इसी इत्तेफाक के साथ अब सुनते हैं इसी फिल्म से लता जी और मुकेश की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति, और हम बात कर रहे हैं आज फिल्म चुपके चुपके के बारे में, और चुपके चुपके उसकी कुछ बातें भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिल्म चुपके चुपके में जब धर्मेंद्र और सुलेखा यानी कि शर्मिला टैगोर को इस फिल्म में साइन किया गया था, तो उसके पीछे की कहानी भी बिल्कुल अजब थी। जी हाँ, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म के लिए एक ऐसे शरारती लड़के को चाहते थे जो कि जिसकी आंखों में, जिसके फेस पे भी शैतानी दिखाई दे, और वो धर्मेंद्र साहब से बेहतर आखिर कौन हो सकता था। और शर्मिला टैगोर को लेने के पीछे भी उनका एक कारण था, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक थी शर्मिला टैगोर, क्योंकि वो उससे पहले भी ऋषिदा के साथ अनुपमा और सत्यकाम जैसी फिल्मों में काम कर चुकी थी, और धर्मेंद्र के साथ भी वो काम कर चुकी थी। तो उन दोनों की केमिस्ट्री भी ऋषिदा को मालूम था। धर्मेंद्र और शर्मिला की जो जोड़ी है, उससे पहले

0: ये हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और भरोसेमंद थी, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को तैयार किया अपनी फिल्म में प्यारे मोहन और सुलेखा बनने के लिए। तो उनके पीछे रीज़न यही था कि जहां धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा लाउड और मज़ेदार होंगे, वहीं सुलेखा के रूप में शर्मिला अपनी डिग्निटी, अपने सलीके और अपनी खूबसूरत सी मुस्कान से उस पागलपन को बखूबी बैलेंस करेंगी। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म में छोटे से किरदार निभाने वाली जया बच्चन जी के बारे में, जिन्होंने बहुत छोटा सा किरदार निभाया, लेकिन उस किरदार को हाँ करने में उन्होंने एक पल का भी वक्त नहीं लगाया। दरअसल ऋषिदा की फिल्म गुड्डी और उनका अटूट सम्मान जो है वो उस गुड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल सन 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी से फिल्म इंडस्ट्री में आई जया जी, और उसके बाद वो उनको अपने पिता के समान मानती थी, और उन्होंने जब भी किसी काम के लिए उनको बोला तो उन्होंने कभी भी उन्हें मना नहीं किया, चाहे वो कितना भी छोटा रोल हो। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने इस किरदार के लिए भी हाँ किया। और अब बात आती है इस फिल्म में अगला किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन जी के बारे में। अमिताभ बच्चन जो कि उस वक्त में, उस दौर में जंजीर, दीवार जैसी फिल्में देकर एक एंग्री यंग मैन बन चुके थे, और जो उनका स्टारडम था वो भी सातवें आसमान था। ऐसे में कोई भी सुपरस्टार आप सोचिए ना, साइड रोल क्यों करेगा या सेकंड लीड का किरदार क्यों निभाएगा? लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने जब अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए ऑफर किया कि उन्हें एक अंग्रेजी के प्रोफेसर का किरदार निभाना है जो कि बॉटनी पढ़ाने का नाटक करेगा, तो उन्होंने ये रोल बिना सुने ही हाँ कर दिया। उन्होंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी और उन्होंने इस किरदार के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि ऋषिदा के लिए अमिताभ बच्चन के दिल में भी बेहद सम्मान था। और कमाल की बात देखिए ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जो उसी वक्त उसी साल शोले फिल्म में एक्शन से गदर मचाते हुए नजर आए, और यहाँ पर वो बिना किसी ईगो के कॉमेडी की ऐसी जुगलबंदी दिखाई जो कि आज भी हम लोगों के लिए एक मिसाल की तरह है। मतलब वैसी कॉमेडी हमें आज भी देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, सुनते रहिए खूबसूरत सी फिल्म के खूबसूरत से किस्से। तो लीजिए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत।
1: चल शुरू हो जा।

0: अरे बस बस बस बस, सांप ही रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है
0: तो माँ, चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: सारे गामा वन टू थ्री फोर
1: सारे गामा मा सारे गा का सारे मा मा गा रे सा सारे गामा मा सारे गा का सारे मा मा गा रे सा मा गा रे सा मा गा रे सा मा गा रे सा।
2: जी दोस्तों, हम जुड़े हुए हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हम बात कर रहे हैं फिल्म चुपके चुपके के बारे में। अभी चुपके चुपके में आपने अमिताभ बच्चन और जया जी की जो केमिस्ट्री थी वो तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें जया जी यानी कि वसुधा अमित जी यानी कि सुकुमार से बॉटनी पढ़ते पढ़ते उनके प्यार में पड़ जाती है। दरअसल जब ये फिल्म की शूटिंग हुई थी उस वक्त उन दोनों की शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे। पर्दे पर उनकी असली केमिस्ट्री ने सुकुमार और वसुधा के जो सीन थे उनमें जो मासूमियत भरी वो आज भी हमारे दिल को छू जाती है। वैसे एक और बात मैं बता दूं आपको कि इस फिल्म की शूटिंग के वक्त जया बच्चन जी असल में प्रेग्नेंट थी और यही वजह थी कि आप देखेंगे उस फिल्म में जितने भी शॉट हैं जया जी के वो शॉर्ट क्लोजअप या फिर कहें कि उनको शॉल ओढ़े हुए या किसी टेबल या फर्नीचर के पीछे खड़ा करके शूट किया गया था ताकि उनका जो बेबी बम्प है वो दिखाई ना दे। और रिशिता ने जया जी की पूरी सहूलियत का ख्याल रखते हुए उनके सभी सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ में डिज़ाइन किया। तभी तो कहते हैं ना, उस दौर के जो निर्देशक थे और जो कलाकार थे वहाँ बड़े बड़े सितारे ये जो रोल होते थे उनकी लंबाई नहीं बल्कि वो किरदारों की गहराई और अपने निर्देशक के लिए जो उनका सम्मान होता था उसको देखकर वो कैमरे के सामने जाते थे। तो दोस्तों, अब वही सम्मान हम अपने कुछ श्रोताओं के लिए भी जाहिर कर लेते हैं क्योंकि भाई उनके भी बहुत से जो संदेश हैं वो हम तक पहुँचे हुए हैं और ये संदेश हम जो संदेश हैं वो हम ले लेते हैं। ये पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हैं, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमारे साथ जुड़े हैं, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद मिफ्रा, बेबी चाहत सादिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश इसको भेजा ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वत सानवी, हर्षदा हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश इसको भेजा चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमल अनेजा जी ने, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं सुनील पाठक, कमल और गव्या मल्होत्रा के साथ, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से जुड़े हैं राधेश्याम शर्मा और इंद्रा शर्मा, नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज और हिमांशु सुधार हमारे साथ जुड़े हैं, गोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहर के साथ, अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत जानकारी इन्होंने हम तक शेयर किए। लिखते हैं कि 1971 में आई मशहूर बंगाली फिल्म छद्म बेशी का हिंदी रीमेक है जिसे कि उपेंद्र नाथ गांगुली के लिखे उपन्यास पर बनाया गया था। बहुत खूबसूरत जानकारी और बहुत सारी जानकारी उन्होंने हम तक पहुँचाई है और बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका हमारे तक ये खूबसूरत जानकारी पहुंचाने के लिए। पिपरिया से हमारे साथ जुड़े कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, आदिति, राधे, दीपक और अंकु राघव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हैं। और ये अगले जो संदेश है इसको भेजने वाले हैं दिग्दर्शन गौर जी मेरठ से, ये हमारे साथ जुड़े हैं कविता गौर के साथ में, गिरगांव गुजरात से अजीत भावसर, प्रमिला भावसर जी का एक और खूबसूरत सा संदेश हम तक आया है, आर्यन राज, रोहित, पीयूष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, गुलाब साबिर राही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं, डोंडी लोहार बालो छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और उनके पोते मस्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप मक्कर, ज्योति, मन्नत, भारत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गुरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश शर्मा, निखिल यशस्वी हमारे साथ जुड़े हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन मुखी, शांतिनगर, सोनीपत से, नाभा जिला, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मन हमारे साथ जुड़े हैं, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा जुड़े हैं, गाँव लोहगढ़ ठाकुरावाला

से स्वर्ण सिंगल, दलजीत दर, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े नंदन कुमार सिंह, अंकित, जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार, संजय, जिला मोतिहारी बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु जी हमारे साथ जुड़े हैं पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से। ये अगला संदेश हम तक पहुंचाने वाले हैं डीबी राणा जी, नेहरू विहार, दिल्ली से। ये अगला संदेश भेजा सुरेश राठौर, मंजुला, गांधीनगर, गुजरात से, ये हमारे साथ जुड़े हैं। गांव हीरा वाली, फजल का पंजाब से, सुभाष गोदरा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़ से, विनोद खड़ से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जो अगला संदेश है इसको भेजने वाले हैं ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से एक बार फिर से हम तक पहुंचाया है स्वर्ण सिंह गिल जी ने। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी हमारे साथ जुड़े। कुछ संदेश और आ गए हैं। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं रघुनाथपुरा जिला, श्रीगंगानगर राजस्थान से, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर जी जुड़े हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमएलबी रोड ग्वालियर से जुड़े हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लाविया आरव खुराना के साथ एस के पप्पी। और मुकेश बट्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं नीलम, निहारिका, हार्दिक वंश के साथ में कनेरा मोहल्ला पटियाला से। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए हम सब जुड़े हमारे श्रोताओं के साथ। तो दोस्तों कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज के सफर में बस इतना ही। सिनेमा के कुछ अनसुन अनसुलझे अनसुनी कहानियों को लेकर फिर से आएंगे आपके पास एक और कलाकार के साथ, जिसमें होंगे आपके लिए अंजू पांडे जी। तो तब तक आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए और प्यारे मोहन के स्टाइल में कहें कि विराम लेते हैं, तो दीजिए अनुमति, नमस्कार। लेकिन जाते जाते छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से, लता जी की आवाज़ में। नमस्कार।

0: शायद किसी तकनीकी खराबी कारण संपर्क नहीं हो पा रहे। बाली जी, सानू दसो प्रधानमंत्री जी दे दौरे दे मद्देनजर की कुछ उत्थे हो रहा है, की कुछ तैयारियां ने ते की माहौल है?
1: हाँ शरद जी, जो इस वेले इतने तैयारियां बहुत सारा तुम जिस तरह पता ही है कि मुकम्मल हो गई हुई ने
0: जी,
1: और बहुत ज्यादा चहल पहल है। लोग प्रधानमंत्री नु देखने वास्ते भी उत्सुक है। जो सिक्योरिटी कंसर्न देखी है उदिया तैयारियां पुख्ता है, पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए ने। जलंधर पूरे नु ही नो डिक्लेयर कर दिता गया हुआ है, और उदे नाल ना जो नवी नुहार दिती गई है जलंधर छावनी दे रेलवे स्टेशन नु, वो वेखदे ही बनती है। इस तरह लगता है कि जिस तरह किसी एयरपोर्ट से आगे हो गए हो, हर तरह दिया सहूलत प्रोवाइड की गई ने आम जनता वास्ते। जेडे ईवन थोड़े सिटिंग एरिया है वेटिंग रूम, वो भी सारे एसी है, उसे भी सारी फैसिलिटीज ने थोड़े चार्जिंग वास्ते, मोबाइल चार्जिंग वास्ते होना नहीं भी। तो ओवरऑल जी दिख बदली गई है जलंधर छावनी स्टेशन की, बहुत ही अच्छी बदली गई है। और ये भी ख्याल रखा गया इतने की जी सा विरासत हैगी है भी नाल नाल जुड़ी रहे, और विकास जरा है वह भी नाल नाल होता रहे। यही सब कुछ है। हम थोड़ी देर बाद 3:30 के करीब प्रधानमंत्री इतने पहुंचे, जिस तरह तुम दसिया भी है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट अगरों की शुरू करने ने, रेलवे स्टेशन जोड़े है उन्होंने भी इनोग्रेशन करनी हैगी है, कुछ ट्रेन है जिड़िया फ्लैग ऑफ करनिया ने, यह सब कुछ है सर जी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश बाली जी इस जानकारी वास्ते। खबर च अगे बढ़ते हैं। सरकार ने संसद के आने वाले मानसून इजलास तो पहला इस एतवार को संसद विच राजनीतिक पार्टियां दे सभा विचले नेतावां नाल एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग दौरान सरकार संसद के दोवां सदनां दे सुचारू कामकाज नूं यकीनी बनाउण लई सारियां सियासी पार्टियां तो सहयोग मंगेगी। मानसून इजलास इस महीने की 20 तरीक तो शुरू होगा अते अगले महीने की 13 तरीक तक जारी रहेगा। सैशन दौरान कई अहम कानूनां ते चर्चा अते उन्हां दे पास होण दा प्रोग्राम है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRN ਜਲੰਧਰ। समुद्री प्रशासन बारे डायरेक्टोरेट जनरल DGMA ने निर्देश दिता है कि भारतीय समुद्री नाविका नु अगले नोटिस तक होर्मुज पणजोड़ विचो लंघण वाले जहाजा ते तैनात ना किया जाए। जहाज मालकां, जहाज प्रबंधकां ते भर्ती ते प्लेसमेंट सेवावां लई लाइसेंस प्राप्त कंपनियां नु एक नवी सलाह जारी की गई है। डायरेक्टोरेट जनरल ने खाड़ी खेत्र विच बिगड़दी सुरक्षा स्थिति अते व्यापारी जहाजा ते हाल ही विच होए हमलों के मद्देनजर यह सलाह जारी की। डायरेक्टोरेट जनरल का कहना है कि इन्होंने घटनावां ने संघर्ष प्रभावित खेत्र विच काम करने वाले नाविका ते व्यापारक जहाजों लई जोखम नूं काफी वधा दिता है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिना दौरे ते अज रात पश्चिमी बंगाल पहुंचणगे। कल श्री शाह राज विच जुमागाज सरहदी चौकी विखे सरहदी सुरक्षा बल BSF दी 18वीं बटालियन दा दौरा करेंगे, जिथे ओ एक प्रहरी सम्मेलन नूं संबोधन करेंगे, एक रुख लाउण दी मुहिम विच हिस्सा लैणगे ते कई विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन करेंगे ते नींह पत्थर रखणगे। श्री शाह दा BSF मुलाजमां नाल गल्लबात करन दा वी प्रोग्राम है। बैडमिंटन विच दो बार दी ओलंपिक तमगा जेतु PV सिंधु जापान ओपन 2026 दे सेमीफाइनल विच पहुंच गई है। सिंधु जापान दी साबका विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा दे औरतां दे सिंगल से क्वार्टर फाइनल तो हटन तो बाद अगे वधी, जिस नाल भारतीय खिडारन नूं वॉकओवर मिलिया। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: रफ्तार से चल सकती है। ये ट्रेन न सिर्फ महफूज दर है बल्कि 89 किलोमीटर के इस सेक्शन पर ये सबसे तेज रफ्तार रेलगाड़ी है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: जर्मनी और चीन जैसे मुल्कों में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में आमतौर पर 2 या 3 रेल डिब्बे होते हैं, जबकि भारत ने 10 रेल डिब्बों वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन तैयार की है। इसका डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें तकरीबन 2,600 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर दीगर हाइड्रोजन ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा गुंजाइश वाली रेलगाड़ी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 3,200 हॉर्स पावर का प्रोपल्जन निज़ाम नस्ब है। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर मबनी है, जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील कर देती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी से चलने वाली ये ट्रेन हाइड्रोजन को बिजली में बदल देती है, जिससे ये ट्रेन आगे बढ़ती है। इस अमल के ज़रिए सिर्फ पानी के बुखारात ज़िमनी पैदावार के तौर पर बनते हैं, जिसके नतीजे में ट्रेन चलने के दौरान कार्बन हरगिज़ खारिज नहीं होती। ये ट्रेन कई सतहों के हिफाजती निज़ाम से लैस है, जिसमें हाइड्रोजन लीक, गर्माई, शोलों और धुएं का पता लग जाता है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। समंदरी इंतजामिया के डायरेक्टोरेट जनरल DGMA ने बहरी जहाज़ों के मालिकान, मैनेजर्स और भर्ती करने वाली सर्विस लाइसेंस कंपनियों को हिदायत दी है कि वो उन जहाज़ों पर भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें जो मजीद अहकाम जारी होने तक आबनाए हुरमुस से सफ़र कर रहे हैं। समंदरी इंतजामिया ने खलीज के खित्ते में सिक्योरिटी की संगीन होती हुई सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय मल्लाहों की हिफाजत के लिए एहतियाती इकदाम की हिदायत दी है। डायरेक्टोरेट ने बताया कि पिछले कुछ दिन से मर्चेंट जहाज़ों पर हमलों के हालिया वाकयात की वजह से खास तौर पर तनाज़े से मुतासरा इलाके में मल्लाहों और कमर्शियल जहाज़ों को दरपेश खतरात में इजाफा हो गया है। हुकूमत पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज़ पार्लियामेंट में सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग करेगी। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत तमाम सियासी पार्टियों से तआवुन तलब करेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कामकाज के खुशउसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा और ये अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान कई अहम कवानीन को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 19 तारीख से मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रहेंगी। 20 तारीख को सदर जमहूरिया मोल्दोवा जाएंगी और अपनी हममनसब माया संधू के साथ मुलाकात करेंगी और इसके बाद वो वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के साथ बातचीत करेंगी। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 21 तारीख से शिमाली मकदूनिया का दौरा करेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का ये पहला दौरा होगा। अपने दौरे के आखिरी मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 23 तारीख से रोमानिया का दौरा करेंगी। अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान रोमानिया के सदर निकोसोर डान और रोमानिया के अबूरी वजीर आजम एली बोलोजान के साथ भी मीटिंग करेंगी। गुजरात के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। उन्हें पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के एक दहशतगर्द मॉड्यूल से मुतालिक जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इन अफराद की शिनाख्त बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कदीवाला, मोहम्मद पालनपुर, शाफिया रईस मुफ्ती और मोहम्मद हसन कारिया के तौर पर हुई है। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी बरादरी के लोगों ने बुध को बरतानिया के ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसिल खाने के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने खबरदार किया है कि तरजीहात प्लस या GSP+ की आम की गई स्कीम के तहत तजारती फायदों तक पाकिस्तान की लगातार रसाई 2027 से नजरसानी शुदा GSP फ्रेमवर्क के तहत बैन अलाक्वामी वादों पर उसके अमल दरामद पर मुनहसर होगी। बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल से जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकोहारा मैच न खेलने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में खेल शुरू होने से पहले क्वार्टर फाइनल मैच रद्द कर दिया गया था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जींद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल। इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां

0: हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है, जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
2: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय

0: के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमरीकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर की 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम, नाम है जिसका एक ही कलाकार। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आज हम बॉलीवुड के 70 और 80 के दशक की बात करेंगे। जी हाँ, और जब हम इन दशकों की बात करते हैं तो जहन में कड़क भड़क ग्लैमर्स और भारी भरकम मेकअप वाली हीरोइनों का चेहरा सामने आता है ना। लेकिन उसी दौर में एक ऐसी अभिनेत्री भी आई जिन्होंने अपनी सादगी, अपनी बड़ी बड़ी बोलती आंखों और संजीदा अदाकारी से हर हिंदुस्तानी के दिल में एक खास जगह बना ली। मैं बात कर रही हूँ आज की वो खूबसूरत सितारे की जो हम इस प्रोग्राम में लेकर आए हैं। और इस गीत को सुनने के बाद आप भी हमेशा की तरह जान ही जाएंगे और इसमें आप हमारे हम सफर हमेशा की तरह बन सकते हैं। पता है ना आपको क्या करना है? मेल के जरिए मेल भेजने के लिए मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल तो यशुदास की आवाज़ में ये गीत सुनिए जो उनके ऊपर पिक्चराइज किया गया है, और फिर बताइए कि आज हम कौन सा सितारा चुनकर लेकर आए हैं।

आपके ढेर सारे संदेश सही जवाब के साथ हम तक पहुंच रहे हैं और पहचाने भी क्यों ना आप, आखिर इतनी खूबसूरत जो अभिनेत्री हैं आज हम इस प्रोग्राम में लेकर आए हैं। जी हाँ, उस दौर की बड़ी बड़ी बोलती आंखों वाली संजीदा अदाकारी से हर दिल में अपनी जगह बनाने वाली आज की जो सितारा है, नाम है जरीना बहाव। उनकी खूबसूरत सी बातें, खूबसूरत सी यादें आज हम इस सफर में याद करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इस भीड़ में भी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा बनाया। तो अभी जो आप ये गाना सुन रहे थे, ये नया फिल्म से हमने लिया था, बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म थी ये उनकी, और उसमें भी वही सादगी जरीना बहाव की दिखाई दी जो थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जन्मी जरीना का जो बचपन था, तो बचपन से ही इनको झुकाव अभिनय की तरफ हो गया था। उन्होंने पुणे के मशहूर FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग सीखी थी। कहते हैं ना कि जब वो इंडस्ट्री में आई तो लोगों ने कहा कि वो एक पारंपरिक स्टीरियोटाइप हीरोइन जैसी नहीं दिखती, लेकिन जरीना ने भी साबित किया कि हुस्न सिर्फ तड़क भड़क का नाम नहीं बल्कि सादगी में भी एक बेमिसाल कोशिश होती है। बासु चटर्जी की फिल्म चोर, जो कि 1976 में आई थी, याद है ना आपको ये फिल्म, इसी फिल्म ने उन्हें रातों रात हर घर का चहेता बना दिया था। इसके बाद भूमिका, घरोंदा, साबुन को आने दो जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग ने ये मोहर लगा दी कि जरीना बहाव सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि अदाकारी का एक मुकम्मल हुनर है।

1979 में आई फिल्म साबुन को आने दो, भला इस फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं। रविंद्र जैन और जरीना बहाव की जोड़ी ने कई वैसे यादगार फिल्में दी, लेकिन साबुन को आने दो का जो संगीत है आज भी उतना ही मधुर लगता है जितना इसके रिलीज के समय था। अब बात करते हैं इनकी एक सुपरहिट फिल्म चित्तचोर की। जरीना बहाव ने कभी ग्लैमर की दौड़ में खुद को नहीं बदला, उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार चुने जिनसे आम दर्शक खुद को जोड़ सके, और यही वजह थी कि वे पड़ोस की लड़की वाली छवि के लिए बहुत पसंद की गई। अब सुनते हैं चित्तचोर में जो एक खूबसूरत सी एक किरदार उन्होंने निभाया था हर किसी की आंखों में, और सच में वो लगता था कि हमारे आसपास हमारे घर की ही एक लड़की है, उसी फिल्म से उन पर पिक्चराइज ये गीत।

मशहूर डायरेक्टर बासु चटर्जी की नजर पड़ी जब जरीना पर, तो उन्होंने अमोल पालेकर के अपोजिट चितचोर में गीता का रोल उनको दे दिया। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट रही। जरीना ने साबित कर दिया कि सादगी ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। इसके बाद उन्होंने घरोंदा जैसी फिल्म की जिसमें मुंबई शहर के मिडिल क्लास के सपनों और संघर्षों को पर्दे पर उतारा। तो चलिए इसी फिल्म का एक बेहद ही खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं रूना लैला की आवाज़ में।

लेकिन हमें तो प्यार जरीना जी से बिल्कुल है। और आपको हम बता दें कि जरीना जी ने सिर्फ हिंदी सिनेमा पर ही राज नहीं किया, बल्कि वो मलयालम, तेलुगु और तमिल सिनेमा का भी एक बहुत बड़ा नाम रही हैं। खासकर मलयालम फिल्मों में उन्होंने सुपरस्टार मम्मूटी और मोहनलाल के साथ कई बेहतरीन फिल्में दी। फिर आया साल 1986, जब फिल्म कलंक का टीका के सेट पर उनकी मुलाकात अभिनेता आदित्य पंचोली से हुई। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद जरीना जी ने अपने परिवार को वक्त देने के लिए फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली, लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एक कलाकार से कला को कभी अलग नहीं किया जा सकता।

आपकी ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया समता नगर कास्टी से जुड़े हुए हैं। नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। सोनसिंह गिल, दलजीत, राजदीप लोहगा, ठाकुरवाला गांव से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन जी दादा बाबू रोड गिरीड झारखंड से जुड़े हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम जी हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल। और अगला संदेश अजीत भापसर जी का है, प्रमिला भापसर जी के साथ वीरन गांव गुजरात से ढेर सारी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। फारूक अली खान जी हमारे साथ हैं, भवनपुर बसना से चंपा देवानगन। राधे श्याम जी हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस जुड़े हुए हैं। आनंद नगर आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज वेद प्रकाश सुबेदार जी हैं। और गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार जी जुड़े हुए हैं। बन बकेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सरवा आशा जी जुड़े हुए हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी यूसरा जान जी हमारे साथ हैं। सोमदत्त केरव ज्योति पटियाला पंजाब से जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश भटिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली जी का है। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार जी हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार हैं। बबलेश पवार जी ने ढेर सारी जानकारी हमसे शेयर की है, शुक्रिया आपका। और अगला जो संदेश है वो इंद्रभान सिंह जी का हमारे पास पहुँचा है। गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी अमीना जी हमारे साथ हैं। और ये संदेश जो है ये समलडी नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति पिपरिया से कमलकांत दीपा रिमझिम गुप्ता जी का है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत, परवीन शनवास, सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन ड्रिकेस्टो रोजी जी हमारे साथ हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार जी हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी हैं। मरहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी जी जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी नीता सिमरन जी शांति का सोनीपत से हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संगीजय निंगिया नमन और अपार डिंगिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और अनिल मोहन जी, उषा टिल्लू जी हमारे साथ पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी हैं और भी आपके बहुत सोन सिंह गिल जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर एक नए सितारे के साथ उपस्थित होंगे, आप कहीं मत जाइए। 3 बजे मैटिनी मेलोडीज लेकर प्रीति आपका इंतज़ार कर रही है। फिलहाल मुझे आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे और वक्त हुआ है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। मैटिनी मेलोडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बेहद सुरीले और मुस्कुराते हुए इस सफ़र में हम आज भारतीय सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जाएंगे जहां न सिर्फ रोमांस और दर्द के नगमे बने बल्कि कुछ ऐसे गुदगुदाते गीत भी बने जिन्होंने हर उदास चेहरे पर मुस्कान ला दी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, जिसमें हम लेकर आए हैं 50 से लेकर 60 के दशक के बॉलीवुड के ऐसे सदाबहार कॉमेडी गाने को, वो दौर जब महमूद, किशोर कुमार, जॉनी वॉकर, टुनटुन जैसे उस्ताद कलाकारों ने पर्दे पर अपनी कॉमेडी का जादू बिखेरा। तो आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आपकी भी नज़र में कोई ऐसा कॉमेडी गीत है जिसने आपको भी खूब गुदगुदाया हो, खूब हंसाया हो, तो ज़रूर आप हम तक पहुंचाइए उस गीत को संदेश के ज़रिए। हमें रहेगा इंतज़ार। और अभी हम करेंगे शुरुआत, जी हाँ, उस हरफन मौला कलाकार की के साथ जो कि खुद को एक पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हम उन्हें कह सकते हैं। अभिनय हो, सिंगिंग हो, या फिर हो पागलों के जैसी कॉमेडी, जी हाँ, पागलों के जैसी ही कहूँगी क्योंकि ऐसी तो कॉमेडी कोई और कर ही नहीं सकता और उसमें उनका कोई सानी नहीं। हम बात कर रहे हैं किशोरदा यानी कि किशोर कुमार जी के बारे में। आपको याद होगी सन 1958 की वो फिल्म चलती का नाम गाड़ी, जिसमें तीनों गांगुली भाई यानी कि अशोक, अनूप और किशोर कुमार थे, और उन तीनों ने मिलकर जो धमाल मचाया उसे कौन ही भूल सकता है। तो लीजिए, किशोर कुमार जी की आवाज़ में ही आज भी हम वही गीत सुनेंगे जिससे उस वक्त में सबकी रगों में एकदम से जोश दौड़ गया था। तो लीजिए, करते हैं शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

0: तो मेरा या दुई त्रां चार पांच पांच रुपया बारा आना पांच रुपया बारा आना।
1: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि इस गाने को सुनकर वाकई में आपको भी बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी और इस गीत को सुनकर एक बार के लिए तो ज़रूर आपके फेस पर स्माइल आ ही गई होगी। चलिए तो आप कदम रखते हैं हम 60 के दशक में और इस दशक में कॉमेडी का एक नया राजा उभरा जिसने कभी कभी फिल्मों के मेन हीरो से भी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी और वो हीरो था महमूद। जी हाँ दोस्तों, साल 1968 में आई थी एक फिल्म पड़ोसन और इस फिल्म का एक एक सीन एक एक गाना आप देखेंगे तो मास्टरपीस। एक तरफ थे धोती कुर्ता पहने चोटी हिलाते हुए मास्टर पिल्लई यानी कि महमूद और दूसरी तरफ थे पान चबाते लुंगी लपेटे विद्यापति यानी कि किशोर कुमार और सीधे साधे सुनील दत्त। जब इन दोनों के बीच सुरों का मुकाबला हुआ और जो गाना निकल कर आया उसने तो वाकई में हिस्ट्री बना दी। तो चलिए फिर से ताज़ा करते हैं उस क्लासिक म्यूजिकल वॉर को और सुनते हैं पड़ोसन फिल्म का ये गीत।

जी दोस्तों, तो अब महमूद और किशोदा के बाद चलिए एक बार फिर से लौटते हैं हम सबके चहेते जॉनी वॉकर साहब की तरफ। साल 1956 की बात है, फिल्म आई थी CID, और इस फिल्म में बम्बई शहर की भाग दौड़, वहाँ की जिंदगी को जिस मजाकिया अंदाज में और जिस सटीक तरीके से उन्होंने पेश किया, वो आज भी एक मिसाल है। तो लीजिए सुनते हैं रफ़ी साहब और गीता दत्त की आवाज़ में, और पर्दे पर जॉनी वॉकर का वो बेफिक्र अंदाज। लीजिए सुनते हैं सदाबहार गाना, जिसे सुनकर आज भी पैर आपके अपने आप ही थिरकने लगेंगे, ये तो मुझे पूरी उम्मीद है।

0: जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लासिकल गानों को बनाने वाले मन्ना डे साहब के बारे में। जी हाँ, जब भी हम बात करें क्लासिकल गानों की तो मन्ना डे साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन आप जानते हैं, मन्ना डे जी ने महमूद के लिए कुछ ऐसे बेहतरीन और कॉमेडी गाने गाए जो आज भी लाफिंग थेरेपी की तरह से काम करते हैं। और बात अगर हम करें सन 1965 की फिल्म भूत बंगला की, ये गाना याद कीजिए जो भी हम प्ले करने वाले हैं, जहां महमूद हॉरर कॉमेडी के बीच झूलते नज़र आते हैं। मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत आज भी पार्टी स्टार्टर के रूप में माना जाता है। तो लीजिए, सुनिए ये गीत और फिर रखिए इस गीत को सुनकर आप भी।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी।

चाहते हो? तुम लोग उदास रहना चाहते हो?

जी दोस्तों, कॉमेडी की बात हो और आईएएस जौहर के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लीजिए सुनते हैं, शागिर्द फिल्म से आईएएस जौहर पर फिल्माया गया ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश शामिल कर लेते हैं। मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ जुड़े हैं तहसील वरुड़ अमरावती से, और अगला संदेश हम तक पहुंचाने वाले हैं बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन जी, गाँव की टोरी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम तबस्सुम तरन्नुम तराना हिना सिमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसी मस्कीन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, वीना मस्कीन, आशीष चैतन्य मेघा के साथ, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना के सूर्यधान के साथ। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी अनिता सिमरन जी हमारे साथ जुड़े हैं शांति नगर सोनीपत से, और ये अगला संदेश आया हमारे पास डी बी राणा जी का, नेहरू विहार दिल्ली से, आनंद पर्वत दिल्ली से, लखपत राज, वेद प्रकाश चौहान, सूबेदार अमर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, ये थे वो संदेश जिनके ज़रिए आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, और अगला जो संदेश है उसको भेजने वाले हैं। ये संदेश हम तक पहुंचाया जित भावसर जी ने वीरगांव गुजरात से।

प्रमिला भावसार जी के साथ और लिखते हैं किशोर कुमार की असली जिंदगी से जुड़ा हुआ किस्सा शेयर करते हैं। कहते हैं कि पढ़ाई के दौरान कॉलेज की कैंटीन वाला पैसा उधार रखते थे तो वो बार बार 5 रुपये बाराना मांगता था और उसी बात पर उन्होंने ये गाना बनाया, 5 रुपया बाराना। बहुत शुक्रिया आपका जी जी खूबसूरत जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दादरी गेट भिवानी से हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। और दोस्तों ये थे वो संदेश, और अब मैं यही कहूँगी कि जो ये मुस्कुराहटों का हमारा कारवा था वो यूँ चलता रहेगा, लेकिन घड़ी की सुइयाँ आप कह रही हैं कि आपसे हमें लेनी होगी विदा, तो अब इस सफ़र को यहीं पर हम देते हैं विराम। और अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, चेहरे पर यूं ही मुस्कुराहट रखिएगा, यूं ही गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति। लेकिन जाते जाते छोड़े जाती हूँ कॉमेडी के किंग महमूद कई एक खूबसूरत सी फिल्म गुमनाम से, खूबसूरत से गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इमेजिनरी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 3:30 होने को है। वक्त हुआ है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का, तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सामईन, अभी आप हरिहरन की आवाज में ये गजल सुन रहे थे। सामईन, गजल अपने खूबसूरत और जज्बाती अंदाज बयान के लिए मशहूर है। गजल में शायर जो कहता है, सुनने वाले को मानो अपने ही दिल की आवाज़ मालूम होती है। गजल के अल्फाज ऐसे रूह में पेवस्त हो जाते हैं कि सुनने वाले की रूह तक झूम उठती है। आइए सामईन, सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गजल।

गज़लगोई शायर की नज़र से वो ताल्लुक़ कभी ओझल नहीं होते जो हुस्न व इश्क के दुनिया में पाए जाते हैं और जिनकी तह में जज्बे की कार फरमाई किसी न किसी सूरत में मौजूद रहती है। शायर के तजर्बे में जज्बा अपने आप को तख़य्युल के रंग में रंग लेता है। हमने शोलों पे भी जबी रख दी, दिल का सजदा अदा नहीं होता। आइए सामाइन सुनते हैं चंदनदास की आवाज़ में ही खूबसूरत गज़ल।

सामिन, अभी आप आशा भोसले की आवाज में ये गजल सुन रहे थे। कलाम था काबिल अजमेरी का। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आफ़शार गज़ल। इसी के साथ अपने मेज़बान फरीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने को हैं। आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र समेत कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन इसका लाभ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक

0: प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि 2 नए मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 75 पुनः विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-25 अवधि की संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की शेन युफोई से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana, marking a major step towards clean and sustainable rail transport. The Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated development projects worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects. He dedicated the 157-kilometre Delhi-Amritsar-Katra expressway, which will reduce travel time between Delhi and Katra to about 6 hours and between Delhi and Amritsar to around 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said Indian Railways has undergone a major transformation over the past 12 years and described the hydrogen train as a historic milestone that has given Jind a special place in India's history.
2: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का

थाना वेव सिटी गाजियाबाद से मिली एक और सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम प्राची पुत्री धर्मेंद्र, इनका घर महरौली में है और इनकी उम्र करीब 17 वर्ष है। कद 4 फीट 11 इंच, दाहिने आँख के पास मस्सा है। घर से ये बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना वेव सिटी गाजियाबाद से। मोदीनगर पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम दिव्या गहलोत, पुत्री चांदवीर। अंतिम बार इन्हें गिन्नी देवी कॉलेज मोदीनगर के पास देखा गया था। इनकी उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच। कॉलेज से छुट्टी के बाद ये कहीं चली गई हैं। इनके विषय में कोई और सूचना नहीं मिली है। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक आनंद प्रकाश मिश्र, मोदीनगर गाजियाबाद से। थाना लिंक रोड से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम खुशी कुमारी, पुत्री श्री पतलेश कुमार। ये 20 दिसंबर 2025 को गांव साहिबाबाद से मैं अंतिम बार देखी गई थी। इनकी उम्र 18 वर्ष है, कद 5 फीट 5 इंच है। इनके मिलने पर उचित इनाम दिया जाएगा। घर से बिना बताए कहीं चली गई। अगर कोई भी सूचना आपको इनके विषय में प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंक रोड कमिश्नरेट गाजियाबाद से। थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है अतुल त्यागी, पुत्र स्वर्गीय गजेंद्र त्यागी, उम्र 37 वर्ष, एकहरा मजबूत बदन, कद 5 फीट 10 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा। फेस 2 डागर विहार कस्बा और थाना मुरादनगर के रहने वाले हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना आपको मिलती है या अगर कोई भी आप सूचना इस संबंध में देना चाहते हैं, ऐसा अगर करते हैं तो इनके लिए 10,000 रुपये की राशि रखी गई है। संपर्क आप कर सकते हैं कृष्ण कुमार मौर्य, थाना अध्यक्ष, थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से। थाना मुरादनगर से मिली अगली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम पलक, पुत्री स्वर्गीय संजय, उम्र 21 वर्ष, एकहरा मजबूत बदन, कद 4 फीट 10 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल। ये चुंगी नंबर 3 वाल्मीकि बस्ती रावली मुरादनगर रोड के रहने वाली हैं। घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर आप कोई सूचना देना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं कृष्ण कुमार मौर्य, थाना अध्यक्ष, थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से। अगर इनके बारे में कोई सूचना आप देते हैं तो इसके लिए पुरस्कार राशि 5,000 रुपये रखी गई है। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है रूबी, ये कवि नगर की रहने वाली है। इनकी उम्र 30 वर्ष है, रंग गेहुआ, कद 4 फीट 10 इंच है। इनके विषय में कोई भी सूचना आपको मिलती है तो संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक अनिल कुमार, थाना कवि नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से। अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 4:15 होने को हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं महक।
1: और मैं हूं पारुल। आज है 17 जुलाई। मॉनसून तो आ गया है, लेकिन बारिश का तो अता पता तक नहीं। पर सूरज और बादल की लुका छुपी तो चलती ही रहती है दिन भर।
0: बिल्कुल सही कहा पारुल। और देखो ना, एक और वर्किंग वीक अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब वक्त है थोड़ा सा ब्रेक लेने का, खुद को रिलैक्स करके रिचार्ज करने का।
1: बात तो बिल्कुल सही की।

0: अपने महक।
1: अच्छा वैसे पारुल, वीकेंड का नाम सुनते ही तुम्हें क्या याद आता है?
0: मूवी, पॉपकॉर्न, ब्लैंकेट और फोन एकदम साइलेंट। हाँ
1: वाह, लगता है प्लानिंग तो पूरी है।
0: प्लानिंग तो हर फ्राइडे होती है, लेकिन फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कभी दोस्त बिजी, कभी मैं बिजी, और वीकेंड देखते देखते ही मंडे आ जाता है।
1: बस बस सनी देओल जी, कोर्ट से सीधा युववाणी आ गए क्या?
0: तो चलिए दोस्तों, ये हंसी मजाक तो जारी रहेगा। इसी एंटरटेनमेंट के सफर को और भी एक्साइटिंग बनाने के लिए हम लेकर आए हैं फ्राइडे फ्लिक्स एंड बीट्स, योर वीकेंड एंटरटेनमेंट गाइड।
1: यूं की इसका मतलब हुआ कि अगले कुछ देर बस एंटरटेनमेंट की बातें होंगी, थोड़ी हंसी, थोड़ी यादें और ढेर सारी फिल्मी वाइब्स। लेकिन उससे पहले वीकेंड का मूड सेट करते हैं एक एनर्जेटिक गाने के साथ।

आप सुन रहे हैं युववाणी, और आज की बात में हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम बचपन की कुछ यादें ताजा करने वाले हैं। याद है पारुल, जब हम छोटे थे तो टीवी का एक रिमोट तय करता था किसका राज चलेगा, और रिमोट जिसने पकड़ लिया उसी की सरकार चलती थी। पापा को न्यूज, मम्मी को सीरियल,

0: और हम बस कार्टून नेटवर्क या डिज्नी चैनल लगाने की प्लानिंग में ही रहते थे। हाँ
1: अरे पारुल, टीवी से याद आया, हमें कितने सारे गेम शोज देखे हैं अपने बचपन में। जैसे वो ताकेशी कासल्स याद है?
0: अच्छा हाँ, बचपन में मुझे लगता था मैं तो ताकेशी कैसल आराम से जीत जाऊंगी।
1: सही में कल ऑफिस की सीढ़ियों पे स्टंबल किसने किया था?
0: अरे वो गलती से मिस्टेक हो गई।
1: हाँ। अच्छा पारुल, वैसे एक बात नोटिस की है, हर जेनरेशन का एंटरटेनमेंट अलग होता है। पेरेंट्स के लिए रेडियो, हमारे लिए टीवी, और आज की जेनरेशन के लिए रील्स।
0: अरे रील्स में तो हर इंसान बिजी है रिगार्डलेस ऑफ एज, लेकिन एक चीज कॉमन है, हम सबको अच्छी स्टोरीज पसंद है, चाहे वो 3 घंटे की फिल्म हो या 30 सेकंड की रील।
1: बेशक पारुल, और आज हम बात करेंगे उन स्टोरीज की जो हमें हंसाती भी हैं, रुलाती भी हैं, और कभी कभी एक रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस के थ्रू गहरे लाइफ लेसन्स भी दे जाती हैं।
0: वैसे महक, ये बात सिर्फ मूवीज रील्स तक ही सीमित नहीं, बल्कि कार्टून मूवीज भी इससे पीछे नहीं रही हैं।
1: अरे बिल्कुल पारुल, कुंफू पांडा, इनसाइड आउट, सोल और जूटोपिया, बहुत लोग सोचते हैं कि एनिमेटेड फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए होती है, लेकिन असल में इन फिल्म्स की खूबसूरती ही यही है कि ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी देती हैं।
0: बिल्कुल महक, बच्चों के लिए ये इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को बढ़ाती हैं, और अडल्ट्स के लिए ये सेल्फ डाउट, इमोशंस, आइडेंटिटी, पर्पस और लाइफ का डिफिकल्ट फेजेस को इतने सिंपल तरीके से समझा देती हैं कि कभी-कभी एक एनिमेटेड फिल्म भी किसी मोटिवेशनल स्पीच से ज्यादा ही इम्पैक्ट डालती है।
1: सच में, जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो दोस्तों, अब वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युववाणी और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का। दोस्तों, हर हफ्ते हम मन से माइक्रोफोन तक में बात करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की जिनकी कहानी सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमें कुछ नया सोचने और सीखने की प्रेरणा भी देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं सुधा मूर्ति जी की। लेखिका, शिक्षिका, समाज सेवी, इंजीनियर और सबसे बढ़कर एक बेहद सरल और विनम्र इंसान, सुधा मूर्ति जी ने अपनी जिंदगी से यह साबित किया है कि असली सफलता सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की पहली महिला इंजीनियर बनी थी। उस दौर में जब इंजीनियरिंग को ज्यादातर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से इस सोच को बदला। लेकिन पारुल, उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पुस्तकालयों, ग्रामीण विकास और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अनेक सराहनीय काम किए हैं। और महक, अगर आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं, वाइज एंड अदरवाइज, ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज या द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, तो आपने महसूस किया होगा कि उनकी कहानियों में बड़े बड़े शब्दों से ज्यादा जिंदगी की छोटी छोटी बातों की गहराई छुपी होती है।
1: सुधा मूर्ति जी हमें सिखाती हैं कि ज्ञान तभी सच में कीमती होता है जब उसके साथ विनम्रता और दया भी हो, और शायद इसीलिए उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि इंसानियत की भी कहानी है।
0: और उनके ही विचारों से प्रेरित एक बात, नॉलेज गिव्स यू पावर बट कैरेक्टर अर्न्स यू रिस्पेक्ट, और शायद इसी में एक खूबसूरती जिंदगी का सार छुपा है।
1: इसी प्रेरणा के साथ चलिए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें जिंदगी की खूबसूरती और उम्मीद का एहसास कराता है।

0: बहुत ही बढ़िया गाना था ये। स्वागत है श्रोताओं का हमारे आज के युववाणी वीकली सेगमेंट में, जहां पारुल हमें बताएंगी अपकमिंग रिलीजेस के बारे में।
1: मार्वल फैंस के लिए एक एक्साइटिंग अपडेट है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो कि रिलीज होगी 30 जुलाई को। सबको बेसब्री से इसका इंतजार है। स्पाइडरमैन हर जनरेशन का एक फेवरेट सुपर हीरो रहा है, और देखना होगा कि इस बार पीटर पार्कर की जर्नी हमें किस नए मोड़ पर ले जाती है। वेल, सम अपकमिंग रिलीजेज आर प्रहार रिलीजिंग ऑन 7th अगस्त, बटवारा 1947 रिलीजिंग ऑन 14th अगस्त।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का।

0: जाने।
1: आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपके साथ पारुल और मेरी को होस्ट महक। दोस्तों, अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का क्विक बज, जिसमें हम जानेंगे कुछ अपडेट्स।
2: सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की जर्नी में इंडिया हैज़ बिगन इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। द फ्यूचर ऑफ ग्रीन रेल मोबिलिटी विच इज रेडी टू रोल बिटवीन जिंद एंड सोनीपत इन हरियाणा।
1: द ओडिसी, क्रिस्टोफर नोलान्स एपिक फैंटेसी एडवेंचर स्टारिंग मैट डेमन एंड टॉम हॉलैंड हैज़ बिन रिलीज्ड एंड इज स्क्रीनिंग लाइव।
2: अगर आप कल्चर के शौकीन हैं तो इटालियन कल्चर सेंटर प्रेजेंट्स वन मदर मैनी मदर टंग्स एट हैवल्स गैलरी म्यूजियम कोर्टयार्ड हुमायूं टॉम्ब म्यूजियम न्यू दिल्ली।
1: द ग्रैंड जगन्नाथ रथ यात्रा इन पुरी उड़ीसा हैज बिन स्टार्टेड वेयर मिलियंस ऑफ डिवोटीज आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली। वेल, दैट्स ऑल फॉर क्विक बस। टर्न अप द वॉल्यूम, इट्स टाइम फॉर अ सॉन्ग।

0: स्वागत है दोस्तों आपका फिर से युववाणी के कार्यक्रम में, जिसमें आज का अभी का सेगमेंट है टुडे इन हिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया ने क्या-क्या यादगार लम्हे दिए हैं।
1: बिल्कुल पारुल, और शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां बचपन की यादें आज भी जिंदा हैं, डिज्नीलैंड। जी हाँ, आज के ही दिन 17 जुलाई 1955 वॉल्ट डिज्नी ने कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड का इनॉग्रेशन किया था।
0: और सबसे इंटरेस्टिंग बात में है, ओपनिंग डे परफेक्ट नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। आज डिज्नीलैंड दुनिया के सबसे आइकॉनिक एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन में से एक है।
1: वैसे एक लेजेंड और है पारुल, और वो भी इंडियन सिनेमास के। और जब भी बात होती है ना, एक नाम हमेशा सबसे पहले याद आता है, दिलीप कुमार।
0: बिल्कुल महक, और आज के दिन उनसे जुड़ी एक खास याद भी है। जुलाई 1994 में इसी दौरान उन्हें मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान। और ये अवार्ड सिर्फ उनकी सुपरहिट फिल्मों के लिए नहीं था, दिलीप कुमार ने एक्टिंग को एक नई पहचान दी और इंस्पिरेशन बने।
1: बिल्कुल पारुल, और इसीलिए उन्हें प्यार से द ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। देवदास, मुगले आजम, नया दौर जैसी फिल्में आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। तो आज जब हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं, दिलीप कुमार जैसे लेजेंड्स को याद किए बिना वो कहानी अधूरी लगती है।
0: वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जो उच्च सदन की राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। उन्हें दर्शकों द्वारा अभिनय सम्राट के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्हें दुनिया में पहली बार पर्दे पर मेथड एक्टिंग को इजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है। और इसी लेजेंड को याद करते हुए चलिए सुनते हैं एक ऐसा गाना जो हमें हिंदी सिनेमा के उसी गोल्डन एरा की याद दिला दे।
2: गुड मॉर्निंग। अच्छा।

0: मॉर्निंग
1: छोड़ हाथ
0: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
1: अरे 1 2 3 4
0: अरे
1: बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला
0: कॉफी वाटर स्टैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टीन फटे।

0: आपको पता है पारुल, उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज भी प्राप्त है। अभिनेत्री और निर्माता देविका रानी ने उन्हें फिल्मों में काम दिया। उन्हीं के सुझाव पर उन्होंने अपना स्टेज नाम दिलीप कुमार रखा। महक, वो शारीरिक रूप से भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी 57 फिल्म्स और बेमिसाल अभिनय की विरासत के जरिए वे हर सिनेमा प्रेमी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे।
1: लागा गोरी गुजरिया से।

0: और इसी के साथ दोस्तों, आज की फ्राइडे फ्लिक्स एंड बीट्स की ये खूबसूरत महफिल यहीं तक।
1: बिल्कुल महक। और आज की बातों से एक बात तो समझ आती है, एंटरटेनमेंट सिर्फ हमें हंसना ही नहीं, सोचना भी सिखाता है। कभी हार के बाद उठना, कभी सपने देखना, और कभी सिर्फ 2 पल के लिए रुककर जिंदगी को एंजॉय करना।
0: वैसे पारुल, आज तुमने इतनी फिलोसफिकल बातें कर दी, मुझे लग रहा है तुम सीक्रेटली मोटिवेशनल स्पीकर की ट्रेनिंग तो नहीं ले रही हो।
1: अरे नहीं महक, बस फिल्मों और कहानियों का साइड इफेक्ट है। अच्छी स्टोरीज हमेशा कुछ ना कुछ सिखाई देती हैं। और इसी बात पर शाहरुख खान का वो एक डायलॉग है ना, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शायद जिंदगी भी ऐसी ही होती है, बड़ी खुशियां रोज नहीं मिलती, लेकिन रोज की छोटी छोटी खुशियां मिलकर एक बड़ी और खूबसूरत जिंदगी बनाती है।
0: और पारुल, राजेश खन्ना जी की वो बात आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती है। बाबू मशाय, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इसीलिए इस वीकेंड सिर्फ दिन मत गुजारिए, कुछ यादें बनाइए, थोड़ा हंसी मजाक करिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए, और सबसे जरूरी, खुद के लिए भी थोड़ा वक्त जरूर निकालिए।
1: क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना, तब सिर्फ हमारा मूड ही नहीं, हमारे आसपास का माहौल भी बहुत खुशनुमा हो जाता है।
0: इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, और ज़िंदगी को हर रोज़ एक नई कहानी की तरह जीते रहिए। मैं महक
1: और मैं पारुल, फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नए विषय और ढेर सारी नई बातों के साथ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम अभिम योजना के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में

0: वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती ना की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। ये परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले को देखते हुए जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू इन देशों की यात्रा पर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा और 3 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारा वपेटा में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के तहत 1,03,246 लाभार्थियों को 3,216 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को सरकार साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has launched several developmental projects around 4,700 crore rupees in Chandigarh in key areas healthcare, education and road infrastructure. In a program organized at the Punjab Engineering College, Chandigarh this afternoon, the Prime Minister dedicated to the nation advanced mother and child care center built at a cost of 505 crore rupees and advanced neurosciences center built at a cost of 440 crore rupees. He also laid foundation stone of 259-bed critical care block under PM Abhiyam scheme at PGIMER Chandigarh. Mr. Modi also dedicated Zirakpur-Kurali Greenfield Highway to the nation and laid foundation stones for the Zirakpur Bypass and the Chandigarh Airport AeroCity Greenfield Highway. He also inaugurated hostel blocks at Punjab Engineering College and Government College of Sector 46 alongside a new multipurpose auditorium at Punjab University. Addressing a gathering, Prime Minister Modi said, "With the development of Chandigarh, people's lives have been transformed, but its benefits extend beyond the city, reaching the people of Haryana, Punjab and Himachal Pradesh as well."
0: आज चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर भी कई शुभारंभ हुए हैं। आईटी सिटी से कुराली तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हुआ। मोहाली और खरड़ के लोगों

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: देखिए वीनस बहन, लोकगीतों के माध्यम से हम अलग अलग भाव को दर्शाते हैं, लेकिन अगर हमारे किसानों की मन की बात करें तो खरीफ फसलों की बुआई जैसे धान, मक्का और सोयाबीन के लिए उन्हें बारिश का इंतज़ार है। और जब गगन में बिजली चमकती है और बादल आते हैं तो हमारे किसान भाइयों के मन में भी हर्ष उल्लास हो जाता है, क्योंकि इस बार मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी है तो उन्हें भी बारिश का इंतज़ार है। तो सबसे पहले कार्यक्रम में सुनते हैं तुही राम और साथियों से ये लोकगीत।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तू ही राम और साथियों से ये लोकगीत। और बात अगर हम करें कि हमारे जो लोकगीत हैं ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदरता होती है इनमें कि हमारे जीवन के सुख दुख संघर्ष और आशाओं का जीवन भी पूरी तरह से चित्रण मिल जाता है इन गीतों के माध्यम से। चाहे बात ऋतु परिवर्तन की हो, चाहे त्योहारों की हो, चाहे विवाह की बात हो। तो सुनते हैं अगला एक लोकगीत जो कि हम लेकर आ रहे हैं, एक नई नवेली दुल्हन का जो कि नए परिवार में आती है और बहुत सारे रिश्तों को जानती है, समझती है और गहराइयों को ये कैसे अपने लोकगीत के माध्यम से बताने वाली। तो सुनते हैं ये लोकगीत।
1: और कलाकार रहेंगी रूबिया भारती।

0: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे कलाकार रूबिया भाटी से ये नई नवेली का एक लोकगीत।
1: बहुत ही सुंदर लोकगीत था। किस तरह से नई नई रस्में होती हैं और सबकी अपने अपने हिस्सेदारी होती है और बड़े ही आनंद पूर्वक इस आयोजन को किया जाता है। और अब आपको सुनवाते हैं पुष्पा गोसाई की आवाज़ में ये अगला लोकगीत।

0: साथियों, आप सुन रहे थे पुष्पा गोसाई से ये लोकगीत। और कार्यक्रम हमारा लोक रंजनी आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आप हमें सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृहकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी दिल्ली। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: इसके साथ ही आज का लोकरंजनी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को हैं, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी
3: संचित जैन।
2: मैं और संचित आपको लेकर चलेंगे खेल खबरों के उस सफर पर जहां हर खबर आपके लिए रहेगी बहुत ही ज्यादा शानदार और सुनने के लिए पूरी मनोरंजन से भरपूर। तो जिन खेल खबरों को हम आज अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे उनमें हम बात करेंगे फीफा की, साथ साथ बात करेंगे
3: इंडिया और इंग्लैंड में हुए सेकेंड ओडीआई की।
2: इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हुई खबरों से भी आपको करवाएंगे रूबरू।
3: उसके बाद हम बात करेंगे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की।
2: रेसलिंग के मैट पर भी आपको लेकर चलेंगे और बताएंगे उससे जुड़ी हुई खबरों के बारे में भी।
3: और चेस में हो रहे चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट की भी बात करेंगे।
2: जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम खेल खिलाड़ी की एक ऐसी खबर के साथ जहां अभी फिलहाल तो जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको इंतजार है कि इंडिया कब कुछ अच्छा करे और शायद क्रिकेट में वो जो रोमांच थोड़ा मिस कर रहे हैं लोग उनको वापस मिले। संचित, मैं बात कर रही हूँ दूसरे वनडे मैच की जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। ऑल दो इस सीरीज में एक एक की बराबरी हो गई है, लेकिन फिलहाल जो इंडिया का हाल है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा। भारत और इंग्लैंड के बीच कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मेजबान टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को एक एक से बराबर कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन नियमित लगातार अंतराल पर जो विकेट गिर

0: जीतते रहे, उसकी वजह से टीम ने 44 ओवर में 233 रन जो है वो सिर्फ उतना ही बना पाई। और विराट कोहली से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, तो विराट कोहली ने थोड़ी बेहतरीन पारी खेली और 65 रन जो रन है वो श्रेयस ने अपनी अर्धशतकीय पारी खेल करके इन दोनों ने जो सिचुएशन को संभाला है उससे थोड़ी सी टीम इंडिया को राहत मिली। लेकिन फिर उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम खेलने उतरी तो फिर मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड ने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि तो बहुत छोटा सा एक लक्ष्य है और इसको बहुत जल्दी हम हासिल कर लेंगे, और इंग्लैंड ने ये जो मैच है ये बेहतरीन तरीके से जीत लिया।
1: जी बिल्कुल कविता, भारत की बैटिंग में पहले लग रहा था कि भारत अच्छा बड़ा स्कोर बना पाएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार विकेट गिरते हुए इंडिया के 3 से 7 विकेट एकदम से गिर गए, वो भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। भारत ने मैच में दोबारा वापसी आने की कोशिश करी, लेकिन जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं, इंग्लैंड के जो रूट वही टिक गए और उन्होंने 99 रन बनाए और इंग्लैंड को एंड तक मैच जितवा दिया।
0: बिल्कुल, इंग्लैंड की ओर से बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही, जहां जोफ्रा आर्चर और एटकिंसन ने 3-3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी जो है उस पर अंकुश लगाया। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने भी थोड़ा अच्छा करने की कोशिश जरूर की यहां पर गेंदबाजी में, लेकिन वो इंग्लैंड को जीतने से नहीं रोक पाए। और अब 3 मैचों की जो ये वनडे सीरीज है इसका फैसला अंतिम और जो रोमांचक मुकाबला होगा उसमें होगा, जो कि 19 जुलाई को होने वाला मैच है। लेकिन इस हार के बाद किसी को तो जिम्मेदारी हार की लेनी ही पड़ती है, और कभी हार है तो कभी जीत है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: हाँ जी, लगा कि आगे वाले बॉल बराबर आ रहे थे, बैक ऑफ लेंथ बॉल थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में रुक के ऊपर आ रहा था और सेकंड इनिंग में इतना ऊपर नहीं आ रहा था, बट स्लो तो आ रहा था, तो 2 पेस विकेट थोड़ा था, बट दैट इज अगेन दैट इज ओके, वी न्यू कि विकेट कैसा खेल रहा है, तो नो पॉइंट ब्लेमिंग विकेट एट ऑल। सी लास्ट मैच में भी पार्टनरशिप हुई और आज भी आई थिंक ओवरऑल 178 for 3 जब विराट खेल रहा था तब तक पार्टनरशिप अच्छे ही हुए। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वॉशिंगटन का इंजरी और वो ऑब्वियसली आउट हो गए और उसके बाद वी लॉस्ट 2 क्विक विकेट्स। आई थिंक दैट मेड अ डिफरेंस, इफ वी वुड हैव स्कोर 270 280 इट वुड हैव बीन रियली चैलेंजिंग स्कोर।
0: तो इनका मानना तो यह है कि अगर स्कोर थोड़ा और बढ़ जाता तो शायद चैलेंजिंग होता, लेकिन जिस रन अंतराल पे टीम आउट हो गई वो कोई चेजिंग स्कोर इतना बड़ा नहीं था, तो टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आप देखते हैं कि कितना अगले मैच में टीम इंडिया बेहतर कर पाएगी। लेकिन यहां बेहतर क्या है, इसके बाद जो बेहतर खबर है वो ये है कि जो फुटबॉल का महाकुंभ है वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, और अब होने वाला है इसका बेहद ही रोमांचक मुकाबला, फाइनल मैच, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। इस पर मैं ले चलूंगी आपको अपने सहयोगी संचित के पास।

फुटबॉल का महाकुंभ, जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। ये टूर्नामेंट 11 जून को शुरू हुआ था और बहुत से शानदार मैचेस के बाद स्पेन फ्रांस को सेमीफाइनल में हराकर और अर्जेंटीना दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर अब फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। स्पेन के इतिहास में ये दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल होगा। पहला वर्ल्ड कप फाइनल 2010 में था, जब उन्होंने नेदरलैंड्स को फाइनल में हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया था। दूसरी तरफ खड़े हैं अर्जेंटीना, जो कि 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं और 3 बार फाइनल भी हारे हैं। इस बार का फाइनल अर्जेंटीना का 7वां वर्ल्ड कप फाइनल होगा। आज खेल खिलाड़ी में हम अपने श्रोताओं को फीफा वर्ल्ड कप के कुछ दिलचस्प तथ्य से रूबरू करवाएंगे।

0: फीफा वर्ल्ड कप पहली बार 1930 में खेला गया था और ये टूर्नामेंट यूरुग्वे ने जीता था। 2030 वर्ल्ड कप जो कि मोरक्को, पोर्चुगल और स्पेन में खेला जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप का 100th एनिवर्सरी एडिशन होगा।
1: To his feet here to win the ball back and dispossess the man. Now Rivaldo, oh, and Kahn spilled it. Ronaldo to make the breakthrough. His predatory instincts take over, and Brazil lead midway through this second half.
0: FIFA World Cup

पांच बार जीतकर ब्राजील वर्ल्ड कप की सबसे सक्सेसफुल टीम रही है। उनके बाद जर्मनी और इटली है जिन्होंने ये टूर्नामेंट चार बार जीता है। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ब्राजील ऐसा अकेला देश है जो हर फीफा वर्ल्ड कप में शामिल हुआ है। जर्मनी फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है। वो कुल आठ बार वर्ल्ड कप फाइनल पहुंची है, जिनमें से चार बार वह जीते भी हैं। काफी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहां 22 लोग इधर उधर बॉल के पीछे भागते हैं और 90 मिनट के अंत में जर्मनी गेम जीत जाता है।

फीफा वर्ल्ड कप 1942 और 1946 में वर्ल्ड वॉर टू के चलते नहीं खेला गया था। 1938 के बाद अगला वर्ल्ड कप सीधा 1950 में खेला गया था। 1950 के वर्ल्ड कप फाइनल में ब्राजील का मुकाबला उरुग्वे से हुआ था और इस मैच को 1,70,000 लोगों ने स्टेडियम में लाइव देखा था। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टूर्नामेंट है। 2022 का फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना का फाइनल 1.3 बिलियन यानी कि 130 करोड़ लोगों ने साथ टीवी पर देखा था। ऐसा बोला जा रहा है कि इस साल का वर्ल्ड कप फाइनल के आंकड़े इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। क्रिकेट से इसकी तुलना करें तो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ लोगों ने टीवी पर साथ देखा था।

0: तो क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। क्रिकेट के भी अपने प्रशंसक हैं और फुटबॉल के भी अपने प्रशंसक हैं, और जब बात होती है फुटबॉल वर्ल्ड कप की तो वो सभी की पहली पसंद बन जाता है। और अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे सामने होगा विजेता, कि कौन इस फुटबॉल के महाकुंभ में जीतेगा और इस खिताब को अपने हाथों में उठाएगा। खैर, खिताब अपने हाथों में उठाने के लिए, मेडल अपने गले में टांगने के लिए यहाँ पर हमारी जो भारतीय टीम है, जो कि कॉमनवेल्थ खेलों में जा चुकी है और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है इस काउंटडाउन सीरीज में, चलिए आपको सुनवाते हैं आज विशेष।
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स
0: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की काउंटडाउन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे दो ऐसे खेलों की जिसमें कुछ सेकंड की चूक से पूरी कहानी बदल जाती है। जी हाँ, आज हम जानेंगे ट्रैक साइकिलिंग और आर्टिस्टिक जिमनास्ट के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ट्रैक साइकिलिंग की रोमांचक प्रतियोगिताएं ग्लासगो इंटरनेशनल अरेना में आयोजित होंगी। यहां साइकिलिस्ट और पैरा साइकिलिस्ट अपनी विस्फोटक ताकत, सटीक तकनीक और शानदार रणनीति का प्रदर्शन करेंगे। बिना ब्रेक वाली विशेष ट्रैक साइकिलों पर खिलाड़ी 70 किलोमीटर घंटा से भी अधिक की गति हासिल करते हुए पदक के लिए मुकाबला करेंगे। 30 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ट्रैक साइकिलिंग का रोमांच अपने चरम पर होगा। विस्फोटक गति, सटीक रणनीति और पल भर में बदलने वाले मुकाबलों के बीच कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट पदक के लिए भिड़ेंगे, लेकिन भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें एक खास सवाल पर टिकी होंगी। क्या इस बार भारत ट्रैक साइकिलिंग में अपना पहला राष्ट्रमंडल पदक जीत पाएगा? ये मुकाबला केवल गति का नहीं बल्कि ताकत, तकनीक, मानसिक दृढ़ता और टीम वर्क की असली परीक्षा होगा। बिना ब्रेक वाली विशेष ट्रैक साइकिलों पर खिलाड़ी सेकंड के 100वें हिस्से तक की लड़ाई लड़ेंगे और हर चक्कर के साथ रोमांच नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। 30 जुलाई को प्रतियोगिता की शुरुआत स्प्रिंट और टीम स्प्रिंट के क्वालिफाइंग और प्रारंभिक दौर से होगी। इसी दिन पुरुष और महिला पैरा ट्रैक साइकिलिंग C13 और C45 की शुरुआत हीट्स भी आयोजित होगी। 31 जुलाई को टीम परस्यूट और पुरुषों की किरीन स्पर्धा दर्शकों का रोमांच बढ़ाएगी, जबकि महिलाओं की व्यक्तिगत स्प्रिंट और टाइम ट्रायल में पहले स्वर्ण पदकों का फैसला होगा।

1 अगस्त ट्रैक साइकिलिंग के इतिहास में खास रहेगा। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल की गई एलिमिनेशन रेस के नॉकआउट और फाइनल मुकाबले होंगे। इसके अलावा पॉइंट्स रेस और पैरा ट्रैक साइकिलिंग के कई महत्वपूर्ण पदक मुकाबले भी इसी दिन खेले जाएंगे। 2 अगस्त को स्क्रैच रेस, व्यक्तिगत परस्यूट के फाइनल और शेष पैरा ट्रैक स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक मुकाबलों के साथ ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता का समापन होगा। चलिए एक नजर डालते हैं भारत के साइकिलिंग इतिहास पर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इस बार सक्षम और पैरा खिलाड़ी दोनों शामिल हैं। ट्रैक साइकिलिंग में इस बार भारत ने 6 सदस्यीय टीम उतारी है, जो देश के लिए पहला राष्ट्रमंडल पदक जीतने के इरादे से ग्लासगो पहुंची है। भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी इस प्रकार हैं: हर्षवीर सेंखो, टीम कप्तान रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम, रोजित सिंह यांगलेम, दिनेश कुमार, जेमस सिंह और लिशा दास। असम की 16 वर्षीय लिशा दास 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चुनी गई भारत की सबसे युवा एथलीट है। पैरा ट्रैक साइकिलिंग में हिस्सा लेने वाली लिशा अपनी मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों से लाखों लोगों के लिए पहले ही प्रेरणा बन चुकी हैं। भारतीय चुनौती मुख्य रूप से स्प्रिंट, टीम स्प्रिंट और टाइम ट्रायल स्पर्धाओं में रहेगी। युवा खिलाड़ियों से सजी ये टीम अपनी गति और दमदार प्रदर्शन से इतिहास रचने का सपना लेकर ट्रैक पर उतरेंगी। वही नजरें होंगी पैडल स्ट्रोक पर भी। 4 दिनों तक चलने वाली ये प्रतियोगिता केवल पदकों की लड़ाई नहीं, बल्कि साहस, गति, अनुशासन और अद्भुत तकनीक का उत्सव होगी। हर लैप के साथ बढ़ता रोमांच और हर फिनिश लाइन पर बनता नया इतिहास दर्शकों को सीट से बांधे रखेगा। अब देखना होगा कि क्या ग्लासगो 2026 भारत के ट्रैक साइकिलिंग इतिहास में वो सुनहरा अध्याय लिख पाएगा, जिसका इंतजार वर्षों से भारत कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के बारे में। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक दुनिया के सबसे आकर्षक और चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक है। इसमें खिलाड़ियों की ताकत, लचीलापन, संतुलन, गति, तकनीक और कलात्मक प्रस्तुति की एक साथ परीक्षा होती है। हर छलांग, हर फ्लिप और हर लैंडिंग में सैकड़ों के भीतर वर्षों की मेहनत दिखाई देती है। यही वजह है कि ये खेल दर्शकों के लिए जितना रोमांचक होता है, खिलाड़ियों के लिए उतना ही कठिन और अनुशासन से भरा होता है। अब यही रोमांच कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक बार फिर आपको देखने को मिलेगा, जहां 24 से 28 जुलाई तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस बार भारत की निगाहें अपनी 8 सदस्यीय टीम पर होंगी, जिनकी कमान अनुभवी ओलंपियन प्रणति नायक संभाल रही हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में जिम्नास्ट के इतिहास के बारे में जाने तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक को पहली बार 1978 के एडमोंटन राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। इसके बाद 1990 के ऑकलैंड खेलों से ये राष्ट्रमंडल खेलों का नियमित हिस्सा बन गया। ग्लासगो 2026 इस खेल का 11वां संस्करण होगा। इस बार पुरुष और महिला वर्ग में कुल 14 पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जिम्नास्ट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कनाडा 156 पदक, ऑस्ट्रेलिया 151 पदक और इंग्लैंड 116 पदकों के साथ सबसे सफल देशों में है, लेकिन भारत भी धीरे धीरे अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। इस बार भारत की उम्मीदें प्रणति नायक के साथ हैं। भारत ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स की जिम्नास्टिक स्पर्धा में 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए हैं। 31 वर्षीय प्रणति एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में वॉल्ट स्पर्धा में 3 पदक जीत चुकी हैं। दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने 2014 में ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों से ही इस प्रतियोगिता में अपना सफर शुरू किया था और उसी शहर में एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगी। भारत की 8 सदस्यीय टीम इस प्रकार है: महिला टीम में प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले और प्रतिष्ठा सामंत शामिल हैं। वहीं पुरुषों की टीम में योगेश्वर सिंह, तपन मोहंती, तपेश्वर नाथ दास और स्वातिश केपी शामिल हैं। भारतीय जिम्नास्ट पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ग्लासगो 2026 भारत के लिए केवल एक और प्रतियोगिता नहीं, बल्कि कॉमनवेल्थ खेलों में 4th जिम्नास्टिक पदक जीतने का सुनहरा अवसर भी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी, क्या प्रणति नायक की अगुवाई में भारतीय टीम अपने शानदार प्रदर्शन से ग्लासगो में देश के लिए एक और ऐतिहासिक सफलता हासिल कर पाएगी? क्या भारतीय

0: दल पदक जीत पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप सुनते रहिए खेल खिलाड़ी कार्यक्रम।
1: This is the Commonwealth Games. This is Glasgow 2026.
0: तो 2026 ग्लासगो के लिए भारतीय खिलाड़ी हो रहे हैं तैयार और हो रहे हैं तैयार हम भी। अब बात करते हैं हम बॉक्सिंग की, क्योंकि बॉक्सिंग में भी भारतीय जो मुक्केबाज हैं वो लगातार जो अपना प्रदर्शन है उससे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। एशियन अंडर 19 और एशियन 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने विभिन्न भार वर्गों में दमदार मुक्केबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारत को एशिया की मजबूत बॉक्सिंग ताकतों में शामिल होने का संदेश दे दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि अंडर 19 महिला टीम और अंडर 23 पुरुष टीम ने स्वर्ण पदकों के साथ भारत का परचम लहराया, जबकि हर वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतकर अपनी प्रतिभा भी यहां पर साबित कर दी। बात करेंगे अंडर 19 महिला टीम के प्रदर्शन की, तो भारतीय जूनियर महिला मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण 6 रजत पदक जीत करके यहां पर एक बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें स्वर्ण पदक की विजेता लिस्ट में शामिल है 51 किलोग्राम में चंद्रिका पुजारी और 57 किलोग्राम में प्राची। वहीं अगर रजत पदक की बात करें तो रजत में 48 किलोग्राम में गुंजन, 54 किलोग्राम में जयश्री देवी, 60 किलोग्राम में चाहत, 75 किलोग्राम में अंशिका, 80 किलोग्राम में मेघा, 80 प्लस में प्राची टोकस। और अगर बात करें अंडर 19 पुरुष टीम की, तो यहां पे पुरुषों ने भी 6 पदक जीते हैं, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। रजत पदक की बात करें तो 55 किलोग्राम में आदित्य, 90 किलोग्राम में शुभम राजपूत। कांस्य पदकों की लिस्ट में शामिल है 60 किलोग्राम में सिकंदर, 65 किलोग्राम भार वर्ग में मौसम सुहाग, 75 किलोग्राम भार वर्ग में देवेंद्र चौधरी और 85 किलोग्राम भार वर्ग में सागर। चलिए अब बढ़ते हैं अंडर 23 टीम की ओर। भारत की अंडर 23 पुरुष टीम ने 2 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में 50 किलोग्राम में विश्वनाथ सुरेश, 55 किलोग्राम में गंगा, रजत पदक की लिस्ट में 65 किलोग्राम में वंशज और कांस्य पदक की लिस्ट में शामिल हुए हैं 70 किलोग्राम में हितेश, 75 किलोग्राम में नीरज, 90 प्लस किलोग्राम में ईशान कटारिया। वहीं महिला भी कहां पीछे रहने वाली थी, तो महिलाओं की टीम में अंडर 23 में भारतीय मुक्केबाजों ने 1 स्वर्ण 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर भारत के अभियान को और मजबूत बना दिया। स्वर्ण पदक जीतने वाली जो मुक्केबाज बनी वो बनी निशा, जिन्होंने 54 किलोग्राम में अपना जो स्वर्ण पदक है वो जीता। रजत पदक में 60 किलोग्राम में निकिता चंद, 65 किलोग्राम में काजल, 75 किलोग्राम भार वर्ग में मुस्कान, 80 प्लस किलोग्राम में प्रियंका। वहीं कांस्य पदक की लिस्ट में शामिल रही 51 किलोग्राम में तनु, 57 किलोग्राम में प्राची, 70 किलोग्राम में शिवानी, 80 किलोग्राम में नैना। तो इस तरह पदक तालिका में भारत ने अपना एक दमदार प्रदर्शन करके छाप छोड़ दी और चैंपियनशिप के अंत में भारत ने कुल 29 पदक जीतकर एशिया के शीर्ष टीमों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। और अगली खेल खबर के लिए चलते हैं अपने सहयोगी संचित के पास।
2: चलिए अब बात करते हैं कुश्ती की, जहां बुदापेस्ट हंगरी में 15 से 19 जुलाई तक रैंकिंग टूर्नामेंट चल रहा है। कल रात को हुए मेंस फ्रीस्टाइल 125 किलो कैटेगरी में भारत के रजत रुहाल को कांस्य पदक मिला। आज से ग्रेको रोमन इवेंट शुरू हो रहा है, जिसमें 55 किलोग्राम वर्ग में ललित हिस्सा लेंगे, 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सुमित और चेतन हिस्सा लेंगे, 63 वर्ग में भारत के सनी कुमार हिस्सा लेंगे, 67 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सहरावत हिस्सा लेंगे, 72 किलोग्राम वर्ग में अनिल का मुकाबला यूएसए के ब्रेट बैक से होगा, 82 किलोग्राम वर्ग में भारत के प्रिंस रशिया के गैज मैट से खेलेंगे, 87 किलोग्राम वर्ग में भारत के रोहित बूरा और सुनील कुमार हिस्सा लेंगे और 97 किलोग्राम वर्ग में भारत के नितेश हिस्सा लेंगे। वहीं महिलाओं की बात करें तो 50 किलोग्राम वर्ग में भारत की प्रियांशी प्रजापत अपना कांस्य पदक मुकाबला हार गई, 53 किलोग्राम वर्ग में भारत की नीशु और अंतिम हिस्सा लेंगी, 55 किलोग्राम वर्ग में भारत की हंसिका लांबा ने रजत पदक जीता, 57 किलोग्राम वर्ग में भारत के तपस्या और नेहा शर्मा हिस्सा लेंगी, 59 किलोग्राम वर्ग में भारत की नेहा हिस्सा लेंगी, 62 किलोग्राम वर्ग में भारत की मानसी और सविता का मुकाबला अभी चल रहा है, 68 किलोग्राम वर्ग में नीशु अपना मुकाबला हार गई, 72 किलोग्राम वर्ग में दीक्षा मलिक हिस्सा लेंगी और 76 किलोग्राम वर्ग में भारत की प्रिया और काजल हिस्सा लेंगी। और कविता, अभी अभी खबर आ रही है कि 62 किलोग्राम वर्ग में मानसी और सविता

0: अमृता दोनों ही अपना क्वार्टर फाइनल जीत गई हैं और सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और ये भी जानने वाली बात है कि मानसी और सविता दोनों आपस में सेमीफाइनल में खेलेंगी, जिसका मतलब ये है कि भारत का फाइनल में कोई एक ना एक खिलाड़ी तो जाएगा ही जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर रेसलिंग की तरफ से। और अब चलते हैं कविता की तरफ।
1: जी हाँ, और अब बात करेंगे हम यहाँ पर हॉकी की, क्योंकि हॉकी में भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान हो चुका है। हॉकी इंडिया ने अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे को टीम की कप्तान बनाया है और ये टूर्नामेंट 14 से 30 अगस्त 2026 के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित होगा, जिसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 16 टीमें विश्व चैंपियन बनने की होड़ में उतरेंगी। भारत को पूल डी में रखा गया है यहां पर, जहां पर उसका मुकाबला चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों से होगा। ग्रुप चरण में भारत की राह आसान नहीं होने वाली, लेकिन टीम शानदार प्रदर्शन पर नॉकआउट में जगह बनाने की कोशिश जरूर करेगी। बात करते हैं टीम में कौन कौन खिलाड़ी शामिल हुए हैं। तो गोलकीपर है सविता और बिचू देवी खारीबाम, डिफेंडर की लिस्ट में शामिल हुई है इशिका चौधरी, सुशीला चानू, लाल थन लुआंगी, ज्योति, शिल्पी डबास। मिडफील्डर में है निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोपो, सलीमा टेटे कैप्टन, नेहा, दीपिका सोरेंग। फॉरवर्ड की यदि बात करें तो फॉरवर्ड में है लाल रेम सियामी, ऋतुजा दादोसा पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग। वहीं अगर पूल डी में बात करें चुनौती किसके दिन पेश होगी संचित, तो मैं बता दूं अपने सभी लिसनर्स को कि भारत विश्व कप के ग्रुप चरण में तीन मजबूत प्रतिद्वंदियों का सामना करेगा, जिसमें 16 अगस्त को भारत का जो मुकाबला है वो चीन के साथ होगा, 18 अगस्त को भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा, 20 अगस्त को भारत की टीम भिड़ेगी इंग्लैंड के साथ। तो तीनों मुकाबले जो है ये बहुत ही अहम मुकाबले हैं, और इसके साथ साथ विश्व कप की जो भारत की उम्मीदें हैं उसमें यहां पर देखना यह होगा कि जो अनुभवी गोलकीपर सविता, कप्तान सलीमा टेटे किस तरह युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलन बिठाकर यहां पर विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन के इरादे से जो जा रहे हैं, अब क्या यहां पर ये टीम कितना आगे तक विश्व कप की चुनौती पर इतिहास बनाने में कामयाब होगी। अगली खबर के लिए संचित के पास ले चलती हूं।
0: चलिए अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां जापान ओपन 2026 में पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। 2011 में साइना नेहवाल जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थी और अब 16 साल बाद पीवी सिंधु भी जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। उनका अगला मुकाबला चाइना की वाई एफ चेन के साथ शनिवार सुबह 6:30 बजे होगा।

0: चलिए अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। तो मौजूदा चैंपियन यू मुंबा टीटी ने बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 में शानदार वापसी जारी रखते हुए गुरुवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में खेले गए महाराज डर्बी मुकाबले में पीबीजी पुणे जैगुआर्स को 9-6 से शिकस्त दी। लगातार दूसरी जीत के साथ यू मुंबा अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि ये जो दूसरा टूर्नामेंट महाराष्ट्र डर्बी की शुरुआत रोमांचक रही। पीबीजी पुणे के स्नेहित ने पहला पुरुष एकल मुकाबला जीतकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। उन्होंने पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए मनोज शाह को मात दी और इस सीजन में अपना अजेय अभियान भी बरकरार रखा। इसके बाद यू मुंबा की एना हर्सी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दिया चिताले को लगातार 3 गेम में हराकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। निर्णायक मोड़ मिश्रित युगल मुकाबले में आया जहां यू मुंबा के कप्तान मनोज शाह और एना हर्सी की जोड़ी ने स्नेहित को और पिथिका पावाड़े को सीधे गेमों में हराकर अपनी टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिला दी। इसके बाद सबकी निगाहें पुरुष एकल के मुकाबले पर थी जहां ओमर अस्सार ने पहला गेम जीतकर पुणे की उम्मीदें जगा दी, लेकिन फ्रांस के लिलियन बार्डे ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला बराबर कर दिया। निर्णायक गेम में ओमर अस्सार का शानदार अराउंड द नेट विनर बाद में बिस्लेरी शॉट ऑफ द टॉस टाई चुना गया, लेकिन गोल्डन पॉइंट पर बार्डे ने संयम बनाए रखते हुए जीत दर्ज की और यू मुंबा की लगातार दूसरी जीत जो है वो सुनिश्चित कर दी। यदि आज के मुकाबलों की बात करें तो आज जो मैच खेले जाएंगे उनमें आज अहमदाबाद पाइपर्स वर्सेस कोलकाता थंडर मैच होगा, वहीं दबंग दिल्ली भिड़ेगी गोवा चैलेंजर्स के साथ। तो अब अगली खबर के लिए मैं संचित के पास लेकर चलती हूँ।
1: चलिए अब बात करते हैं शतरंज की, जिसमें चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 16 जुलाई से 22 जुलाई तक खेला जा रहा है। 16 जुलाई

0: को राउंड वन में हुए मैचेस में फिरोजा ने प्रनेश को हरा दिया है। गुकेश और निहाल का मैच और अब्दुसा ट्रॉफ और नीमन और अर्जुन एरिगासी और एंड्रिका के सारे मैचेस ड्रॉ रहे। राउंड टू आज 17 जुलाई को खेला जा रहा है, जिसमें फिरोजा का मैच गुकेश से खेल है, अब्दुसा ट्रॉफ का अर्जुन एरिगासी से, नेमन का मैच निहाल के साथ रहेगा और एंड्रिकन का मैच प्रनेश के साथ रहेगा। राउंड्स 3 से 7 18 जुलाई से 22 जुलाई तक खेले जाएंगे। अब अगली खबर के लिए आइए चलते हैं कविता के पास।
1: जी हाँ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हमारी भी जो खेलों को पढ़ने की जो रफ्तार है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्क्वैश की, क्योंकि स्क्वैश में भी एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण सीरीज है वो चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप की, जो कि 20 जुलाई से 31 जुलाई तक कनाडा में होने वाली है। और इसके लिए जो भारतीय टीम है उसका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। भारतीय टीम में जिन स्क्वैश खिलाड़ियों को जगह मिली है उनमें शामिल हैं पूरब नाभिया, यूषा नफीस, गुरवीर सिंह, आर्यवीर दीवान, रुद्र सिंह, अनाहत सिंह, अनिका दुबे और सानवी कलंकी। तो इन सारे खिलाड़ियों के साथ हमारे जो ये खिलाड़ी हैं सभी ये तैयार हैं वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना खेल दिखाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो ये दल जा रहा है, क्योंकि खेलों का स्तर अब भारत में बहुत ज्यादा ऊंचा हो चुका है, तो इन सभी खिलाड़ियों को अभी से शुभकामनाएं देते हुए हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छा प्रदर्शन ये टीम यहाँ पर करे। और अगली खबर के लिए संचित तैयार है।
0: जी बिल्कुल कविता, आइए अब बात करते हैं ओरिएंटल कप की। एक सप्ताह तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद ओरिएंटल कप 2026 के चौथे संस्करण का शानदार समापन बुधवार को डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में लड़के और लड़कियों के फाइनल मुकाबले के साथ हुआ। दर्शकों को दो हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिले, जिनमें युवा खिलाड़ियों ने अटैकिंग फुटबॉल का प्रदर्शन किया। दिन के अंत में जीडी गोयनका स्कूल द्वारका ने लड़कों विभाग का अपना पहला ओरिएंटल कप जीता और भारतीय पब्लिक स्कूल लड़कियों विभाग में चैंपियंस बने। दोनों टीम से पहली बार ओरिएंटल कप का खिताब जीतकर टूर्नामेंट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। आइए अब अगली खबर के लिए कविता के पास।
1: तो अगली खबर के लिए अब जो समय है ना संचित, वो हमारे पास अब बचा नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम का समय जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो ही चला है। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगी अपने सभी सुनने वालों को कि आप लगातार कार्यक्रम खेल खिलाड़ी के माध्यम से खेल समाचारों की लेटेस्ट अपडेट सुनते हैं, तो हम अनुरोध करेंगे कि लगातार हम आपके लिए और अच्छी खबरें लेकर के आए। तो फिलहाल अब इस खेल कार्यक्रम में, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में, मुझे कविता शर्मा को
0: और मुझे संचित जैन को,
1: हम अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ अब आपसे लेना चाहेंगे अनुमति। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक

0: है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today laid the foundation stone and inaugurated multiple development projects in Jalandhar, Punjab, worth over 5,470 crore rupees. The projects worth over 5,470 crore rupees aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience, and accelerating economic development in the region. The Prime Minister inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Gand, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress." He said it is their endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagarik Deva Bhava is reflected in government's work.
2: साथियों, विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहाँ जालंधर से कई नई से रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा।
1: The Prime Minister flagged off India's first hydrogen powered train between Jind and Sonipat at Jind railway station in Haryana. The Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated development projects worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects including Delhi Amritsar Katra Expressway, which will reduce travel time between Delhi and Katra to about 6 hours. Speaking on the occasion, Railways Minister Ashwani Vaishnav called the launch of the country's first hydrogen powered train a historic achievement, saying it reflects India's resolve to develop indigenous hydrogen technology. The Prime Minister launched also several developmental projects.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए विनस बहन, आज एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि कहते हैं ना कि चाहे स्थानीय स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, न्याय व्यवस्था की स्थापना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अपराध के विरुद्ध सुरक्षा का भाव हर एक इंसान के मन में बना रहे। और आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हम मना रहे हैं, और आज विश्व भर में इसे मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है न्याय का समर्थन करना, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना और विश्व में शांति, सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डालने वाले अपराधियों को रोकने में मदद करने के इच्छुक सभी लोगों को एकजुट करना।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है उसका उद्देश्य यही है कि नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के पीड़ितों को समर्थन करना है, वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और कानून के शासन को बढ़ावा देना है, देशों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के साथ साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
0: बिल्कुल, तो ये दिवस हम मना रहे हैं। और अगर हम न्याय की बात करें तो महाभारत काल से ही हम देखते आए हैं कि किस तरीके से महाभारत में भी जो धर्म का साथ देने के लिए कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया था, और महाभारत काल में

0: अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों ने भेष बदल के शरण ली थी, तो उस समय जब द्रौपदी दासी बनकर रह रही थी तो सेनापति कीचक की बुरी नज़र थी उस पर। और फिर द्रौपदी ने भीम की सहायता मांगी और फिर कीचक को उसके अपराध के विरुद्ध दंड दिया गया। तो अब आपको सुनवाते हैं रागिनी ऋषिपाल खदाना की आवाज़ में, और किस्सा रहेगा कीचक वध का।
1: तेरा भूलू ना सान बहन

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किस्सा कीचक वध का और इसको सुना रहे थे, कलाकार थे हमारे ऋषि पाल खदाना।
1: अभी देखिए, तकनीक का ज़माना है और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति के साथ एआई नई खोजों अनुसंधान और अनुसंधान की जो क्रांति लाई है, उससे जो बहुत अधिक समय लगने वाला चुनौतियों पूर्ण अनसुलझी जो पहेलियाँ थी वो भी चुटकियों में सुलझ गई हैं। और अगर इसकी बात करें तो न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्र में, बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी एआई के ज़रिए अब हमारे किसान भाई जो है सटीक आंकड़े पा रहे हैं और इसकी मदद से स्मार्ट खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इससे ही जुड़ी एक हम बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है कृषि में एआई की भूमिका, और इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद ओवैस, सहायक प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। तो सुनते हैं ये बातचीत।
0: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आधार है और बहुत सारी हमारी, कह सकते हैं कि 70% से ज्यादा जो लोग हैं, हमारे जो नागरिक हैं, वो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज का जो युग है वो एआई युग बन चुका है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमता, इसका युग है, जहां एआई तकनीक हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन कृषि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी एआई क्रांति लेकर आ रहा है, और जिसकी वजह से आज हमारे किसान एआई आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और अपने समसामयिक कृषि कार्य पूरे कर रहे हैं, और जिसका लाभ ये है कि अधिक से अधिक उन्हें बेहतर फसल मिल रही है और उसका पूर्ण लाभ ले रहे हैं। तो आज किसान भाइयों, इसी विषय पर हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कि हम बात करेंगे कि कृषि में एआई का महत्व क्या है। उसके लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: धन्यवाद।
0: सर है असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। जैसा कि मैंने कहा कि एआई आधारित तकनीकें आ गई हैं हर क्षेत्र में, तो कृषि में जो है एआई का आगमन कैसे हुआ?
2: अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें कृषि के बारे में, तो कृषि में शुरू से ही मशीनीकरण की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हम उससे ज्यादा फसलों से उत्पादकता ले सकें और हमारे किसान समृद्ध हो सकें। अब उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एआई का आगमन भी कृषि में हुआ है, तो इसको हम देखते हैं कि कृषि में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस समय है। जैसे कि हम जानते हैं कि 15 से 18% हमारे यहाँ जो कृषि है वो हमारे जीडीपी में सहयोग कर रही है। उन्हीं सब चीज़ों को अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जो है वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और हम उसको धीरे धीरे भी अपना रहे हैं। इसके लिए हमने, जैसे कि हम कृषिम बुद्धिमत्ता के बारे में अगर हम कहना चाहें, किसान भाइयों को आसान भाषा में समझाएं, तो ये जो है कंप्यूटर, रोबोट या अन्य मशीन के प्रदर्शन से इसका हम ताल्लुक जोड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, मतलब एक हमारा कृत्रिम मानव है।
2: हाँ, कृत्रिम मानव
0: जो मनुष्य की तरह सोचने लगा है, उसकी तरह कार्य करने लगा है, तो ये किस तरह की मशीन है जो मानव ने ही उसका निर्माण किया है, लेकिन वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो सर, महत्व की भी हम बात कर लेते हैं, इसका क्या महत्व है?
2: इसका महत्व यह है कि पारंपरिक कृषि के साथ साथ एआई तकनीक को संतुलित रूप से अपनाने के साथ इसकी उत्पादकता, लाभप्रदता और किसान समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो एआई सिस्टम है आज का, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्रांति उत्पन्न कर रहा है। और कृषि और संबंध क्षेत्र जैसे हमारे हैं पशुपालन है और ये सब चीज़ें जो हैं, उससे हमारा 8 से 10% इससे बढ़ोतरी मिल रही है इस समय में। और इसके बाद में अगर हम देखें तो तमाम चीज़ें जो कृषि से संबंधित जो हम उपयोग कर रहे हैं आज के समय में, जिसके अंदर एक सटीक कृषि, जिसको हम प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं, जिसके अंदर हमें सही आकलन कर लेते हैं कि हमें क्या किस समय पर क्या बोना है, क्या उगाना है और किस हिसाब से हमें उसकी कटाई करनी है, एक तो इसके अंदर इसका उपयोग ये बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि रोग का पता लगाना, कीटों का पता लगाना और उसके हिसाब से उसका समाधान हमें तलाश करना होता है, ये भी एआई की तकनीकों द्वारा हम कर लेते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो फसल की निगरानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में, कि फसल के अंदर नुकसान कैसा हो रहा है, और साथ में मौसम का पूर्वानुमान के लिए भी हम

0: यही तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो एक फायदा इसका और देखने में आ रहा है कि पशु की निगरानी के लिए इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम एआई आधारित तकनीकों को पशुशाला में लगा लेते हैं, कैमरे जिसका एक रूप हो सकते हैं, ड्रोन भी इसका एक रूप हो सकता है, उससे हम पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, पशु हमारे खुले में हैं, हिंसक पशुओं से उसका उनकी हिफाजत कर सकते हैं। और उसके बाद में मृदा जो हमारी है सॉइल, उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ये कारगर साबित हो रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य के लिए एआई उपग्रह से प्राप्त जो चित्र हम लेते हैं उनसे हम मृदा जो हमारी बनावट है, कहाँ पे शैलो है, कहाँ पे उठा हुआ है, उसके हिसाब से लेवलिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है। और दूसरी बात, पोषक तत्वों का जहाँ तक सवाल है, उसकी जानकारी के लिए भी हम लोग एआई तकनीकों का इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके बाद में जो है बागवानी का क्षेत्र है हमारा, जैसे कि अब आम की फसल तैयार है, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या नॉर्थ इंडिया में, तो आम की फसल तैयार हो रही है। अब उसके अंदर हम एआई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए सही समय पर जो इस वक्त कीटों का और रोगों का निदान हम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इसके लिए जो एआई आधारित विपणन हमारी जो मार्केटिंग की एजेंसीज हैं उनसे हम अपने आप को कनेक्ट करके अपने जो प्रोड्यूस है, अपना उत्पाद है, उसको सही जगह पर सही समय पर बेच सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि एआई के द्वारा पानी,
1: सिंचाई, इरिगेशन, ये सारी चीजें
0: जो हैं हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं।
1: लेकिन सर ये सब सारी सुविधाएं हैं, तकनीकें हैं जिस पर हम लोग मिट्टी की जांच भी कर लेते हैं, पोषक तत्वों का भी पता लगा लेते हैं, पूर्वानुमान मौसम का भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चुनौतियां आती हैं।
0: हाँ, चुनौतियां,
1: तो वो किस तरह की चुनौतियां आती हैं?
0: चुनौतियां मैडम इसमें कई किस्म की हैं कि अगर हम इसको अपना लेते हैं, अपनाने के बाद की जो चुनौतियां हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जागरूकता का अभाव हमारे किसानों में है, नई चीज़ के लिए हम पारंपरिक तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते। और उसके पीछे भी बहुत सारी वजह यह है कि हमारा जो किसान है वो सीमांत फार्म किसान है या छोटा किसान है। बड़ा किसान होगा तो वो चुनौती स्वीकार करेगा, रिस्क लेने की उसके अंदर कैपेसिटी रहेगी। तो जागरूकता का अभाव है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में फार्मर के साथ हमारी ये परेशानी कि वो डिजिटल साक्षरता में पीछे है।
1: जी,
0: उसके डिजिटल साक्षरता उसके लिए बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: जी,
1: है।
0: जी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जो टेक्निक्स को अप्लाई करना है हमें
1: ट्रेनिंग की जरूरत है
0: और उसकी लागत भी थोड़ी सी ज्यादा है, तो किसान हमारा उसमें थोड़ा सा झिझकता है कि साहब महंगा पड़ेगा, मैं इसको अपनाऊं या ना अपनाऊं। उसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे हम बढ़ें तो इसकी जो है विशेषता की जरूरत है, खास आपको ट्रेनिंग, खास किस्म का आपका एक स्ट्रक्चर, और उसके लिए आपका जो है जागरूक होना बहुत अहम है।
1: तो ये खास चुनौतियां हैं जो हमारे किसान हैं वो उनका देख रहे हैं कि भाई कुछ चुनौतियां आती हैं क्योंकि पैसों की थोड़ी कमी पड़ जाती है, लेकिन जिस तरह से सर FPOs होते हैं, प्रोड्यूसर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं
0: जी,
1: तो FPOs में AI कितना कारगर हो रहा है, क्योंकि उसमें काफी हमारे जो किसान हैं वो जुड़ जाते हैं और एक दूसरों के साथ मदद करके एक ग्रुप होता है इसमें, तो उसमें क्या ये फायदेमंद है?
0: हाँ, फायदेमंद है। FPO के तहत हम अपने जो कृषि उत्पाद हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा करके और छोटे फार्मर से बड़े फार्मर से इकट्ठा करके उसको एक जगह से सेल्स आउटलेट समझ लीजिए उसको बना लेते हैं। तो AI आधारित बहुत सारे ऐप हैं जिसपे हम सटीक जानकारी ले लेते हैं कि हमारी फसल की कीमत क्या है, जिसको हम मार्केट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं कि हमें बाजार के बारे में पहले से पता चल जाता है, तो किसान को अपना जो उत्पाद है वो सही मूल्य पर बेचने में आसानी हो जाती है, और कब उसकी कितनी डिमांड होगी तभी उसी हिसाब से अपने फसल की हार्वेस्टिंग कर, खासकर ये फलों और सब्जियों के केस में ज्यादा है क्योंकि फलों का और सब्जियों का निरंतर तुलाई होती रहती है और बाजार में उसका आगमन होता रहता है,
1: तो फलों और सब्जियों में ज्यादा मतलब भूमिका निभा रहा है हमारा जो AI है। एक बार फिर से हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि उपयोग बहुत बड़ी चीज है कि हम कहाँ कहाँ AI को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कर सकते हैं, क्या ज्यादातर संभावनाएं बढ़ रही हैं AI के कृषि में?
0: जी जरूर, संभावनाएं बढ़ रही हैं। उपयोग में हम लोग देखें तो एक तो सबसे अहम इसका जो है कीटों का और रोगों का निदान कर सकते हैं। कुछ ऐप हमारे इस किस्म के हैं जिनको हम अपने सिंपल मोबाइल से भी
1: फोटो खींच के
0: हाँ उसको कर सकते हैं और आपको तुरंत ही उसका समाधान मिल जाएगा कि इसके पर कौन से कीट का आक्रमण हुआ है और कौन सा रोग इसमें लगा हुआ है।
1: तो ये ChatGPT जो है ये बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है।
0: ChatGPT भी है, इसके अलावा और भी कई ऐप हैं जिसको जो किसान इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ सरकारी एजेंसीज हैं वहाँ पे आप फोटो भेज सकते हैं अपना उसका जो आपकी समस्या ग्रस्त फसल है, तो वहाँ से तुरंत कृषि वैज्ञानिक हमारे उसका निदान करके उसका समाधान निकाले।
1: सर चुनौतियाँ आती हैं हमारे किसानों के पास, सामाजिक भी होती हैं, आर्थिक होती हैं, तो किस तरह की चुनौतियाँ हैं वो?
0: चुनौतियाँ हमारे सामने इस वक्त ये आ सकती है थोड़ी सी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मैं कृषि को रूपांतरित करने

0: या अपार संभावना तो ही, मगर मुख्य तौर पे एक चुनौती ये भी है कि छोटे किसानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां महंगी हो सकती हैं। खेतों से इकट्ठा किया हुआ डेटा का स्वामित्व किसके पास होगा? जो हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका ऑनरशिप किसके पास रहेगी, ये भी एक
1: जी
0: महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी, तकनीकी साक्षरता की कमी, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। और ऑटोमेटिक सेल्फ आउट होने के नाते पारंपरिक कृषि श्रमिकों जो थे हमारे, उनकी मांग घट जाएगी, जिससे
1: बिल्कुल
0: हमारे जो कृषि श्रमिक हैं वो हमारे थोड़े कहीं ना कहीं उनको परेशानी होगी, मजदूरी मिलने में दिक्कत
1: जी,
0: होगी।
1: आर्थिक रूप से
0: जी, इस लिहाज से ये थोड़ा सा इसके सामने चुनौती है, मगर फिर भी हमें इसे उसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए संभावना तलाश कर रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ से हमारे लिए किसानों के लिए ट्रेनिंग इस किस्म की चलाएगी, ताकि कृषि श्रमिक जो है हमारे वो कुशल तरीके से इस क्षेत्र में आके अपनी सेवाएं दे सकें और पारिश्रमिक ले सकें।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: सरकार के प्रयास तो सर मैं आपसे जानूंगी कि किस तरह से इसे बेहतर बना रहा है, लेकिन उससे पहले एक और चीज है कि इम्प्लीमेंटेशन यानी अप्लाई होने के बाद भी कई तरह की परेशानियां आती हैं। जैसे आपने बताया कि कीट रोगों का परीक्षण भी किया जा सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए,
0: जी
1: लेकिन और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कई तरह की चुनौतियां पाई जाती हैं एआई का इस्तेमाल करते हुए, वो क्या-क्या है सर?
0: इसमें अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये हमारे लिए भी थोड़ी सी दुश्वार है,
1: जी
0: इसमें परेशानी आ रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पहुंचना मुश्किल है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि डेटा की उपलब्धता, यानी कि अभी हमारे पास पूरी तरीके से डेटाबेस तैयार नहीं हुआ है। डेटाबेस अभी तैयार हो रहा है ग्राम स्तर पे, फसलों के हिसाब से वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद से फिर हमारी सब चीज़ें आसानी हो जाएंगी कि हमारे किस एरिया के अंदर कौन सी समस्या है भूमि को लेके, और किन कीटों का आगमन किस फसल पे कब होता है, ये हमारे पास समस्या बनी हुई है। तो भविष्य में बहुत जल्दी ही ये सब चीज़ें हुई, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं इसमें, कृषि विज्ञान केंद्र इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और जल्दी ही ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी, ताकि जो है हम आसानी से अपने जो AI की जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको इस्तेमाल कर सकें।
1: जी सर, अब मैं आती
0: जी
1: हूँ कि सरकार का क्या अंशदान है या योगदान है इसे और बेहतर बनाने के लिए, और जो एआई है हमारे सभी किसानों तक उसकी पहुँच आसान हो।
0: अभी हमारे यहाँ न्यू दिल्ली में 6 से 16 फरवरी के बीच में AI समिट
1: आयोजित
0: आयोजित
1: किया
0: की
1: गया
0: गई
1: था,
0: थी। जी
1: बिल्कुल
0: जी जिसमें 20 से ज़्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिया, और उसमें खास जो जोर था हमारा वो AI पर ही था,
1: बिल्कुल
0: और उसके अंदर से भी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा मतलब भूमिका निभाने के लिए जोर दिया गया है, कि इसमें कृषि को जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर में रखा गया है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था इससे सुदृढ़ बनी रहे। और इस बीच में हमारी सरकार इसके लिए बहुत प्रयासरत है, इसरो हुआ और आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग हुआ, ये सब मिलके जो है बहुत बड़े जो है काम कर रहे हैं, और इसके लिए सरकार की तरफ से अगर आप कुछ AI के टूल्स खरीदना चाहते हैं या कुछ लगाना चाहते हैं, तो अलग अलग केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी अलग अलग स्कीमें इसके लिए क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे इसका कृषक जो है फायदा उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि आज कृषि जगत में एआई कितना बड़ा योगदान दे रहा है। फसल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से रोग और कीटों की पहचान बहुत आसानी से हो रही है, और इरिगेशन, आपने कहा कि स्मार्ट
0: जी
1: सिंचाई होने लगी
0: इस
1: है
0: जी
1: एआई का इस्तेमाल करने की वजह से, और भविष्यवाणी भी सटीक हो रही है
0: जी
1: मौसम की,
0: बिल्कुल सही,
1: कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये, और
0: बिल्कुल
1: मशीनों का सही से उपयोग हो रहा है, और बाजार की जानकारी भी हमारे किसानों तक एआई के जरिए पहुंच रही है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान जागरूक होंगे
0: जरूर।
1: और प्रशिक्षण लेंगे ताकि एआई का अपनी कृषि में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। डरने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य की जगह
0: बिल्कुल
1: एआई
0: सही,
1: लेने
0: जी
1: वाला
0: जी
1: है,
0: ऐसी नहीं है,
1: क्योंकि मनुष्य ही एआई को चला
0: मनुष्य
1: रहा
0: ही
1: है,
0: AI को चला रहा है।
1: बस आपको जागरूक होकर काम करना
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल सही,
1: तो सर, आज के कार्यक्रम में आप शामिल हुए डॉक्टर मोहम्मद अवैस जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं सुषमा आप सभी से अनुमति लेना चाहती हूँ, सर आज्ञा दीजिए, नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये बहुत काम की जानकारी, विषय था कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मोहम्मद अवैस, सहायक प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और इनसे बातचीत कर रही थी सुषमा शर्मा।
2: और बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से आप मिट्टी की जांच हो, कीटों का प्रबंधन हो, मौसम की सही जानकारी हो, सही उर्वरकों का इस्तेमाल हो और बाज़ार भी किस तरीके से आप बैठे बैठे देख सकते हैं कहाँ पर क्या भाव चल रहा है। तो सही तकनीक का अगर हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं और तकनीक को अपनाने से अब झिझकना नहीं है, बढ़ के हमें तकनीकों का प्रयोग करना है, क्योंकि आप ही के लिए किसान भाइयों की आय को दुगना करने के लिए निरंतर हमारे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी AI के माध्यम से स्मार्ट खेती की ओर अग्रसर हुआ जाए और कम मेहनत में कम लागत में अच्छा मुनाफा हमारे

0: किसान भाई ले सके। और देखिए, बात अगर हम करें तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिसके ज़रिए हम जुड़कर अपने खेती को अच्छा बना सकते हैं। और ऐसी ही एक योजना है अटल भूजल योजना, इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें मुख्य रूप से इससे संबंधित कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें भूजल बहुत ही निचले स्तर पर है, उनके भूजल सुधार के लिए वहाँ पर तालाब का निर्माण किया जा रहा है, डैम का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वर्षा का जो जल है उसको जो है उसमें संरक्षित करके और आगे के जो समय में उपयोग किया जा सके, और खेती किसानी में सिंचाई की जो दिक्कत हमारे किसान भाई उठाते हैं वो उसकी दिक्कत उन्हें ना रहे।
1: बिल्कुल सही बात है। और हर एक योजना जो हमारी सरकार की तरफ से आती है, उसका निरंतर प्रयास यही होता है कि हमारे कृषि क्षेत्र में हमारे भाइयों को सुविधा मिले और उनको नई जानकारी वहाँ से प्राप्त होती रहे और इसका फ़ायदा वो किसी न किसी रूप से उठाते रहें। और पोर्टल पे जाकर, अभी तो क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है और क्योंकि अभी हमने थोड़ी ही देर पहले AI स्मार्ट कृषि क्षेत्र की बात भी की है, तो उसमें आप जाके अपनी अपनी हर बात के बारे में जान सकते हैं, पता कर सकते हैं और किस तरह से इससे जुड़ सके इस योजना से।
0: बिल्कुल। और सिंचाई की बात कर रहे हैं तो भाई ज़रूर आप ड्रिप सिंचाई या फव्वारा सिंचाई की तरफ जाएं, जिससे कि कम लागत में आप अच्छी खेती, कम उसमें पानी भी कम लगेगा और आपका जो खेती में आपका रिजल्ट होगा वो भी बेहतर होगा। और हमारे जो अगले कलाकार हैं वो भी जल संरक्षण के महत्व को बता रहे हैं अपने इस उद्देश्य के माध्यम से, और हमारे जो कलाकार हैं बूटा राम और राम कला सैनी।

तो दोस्तों, बूटा राम और राम कला के गाए हुए इस उपदेश के साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को

सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 अगस्त तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री ट्रेन की टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पे राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशीय कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इसी जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो प्रियंका बहन, हम कार्यक्रम लेके आते हैं ये वाला, और इसमें हम बात करते हैं फल सब्जी और मिलेट और साथ में स्वास्थ्य की बात। और जैसे कि मौसम बदल रहा है, कभी सर्दी है, कभी ठंडा लगता है क्योंकि बारिश हो रही है, और उसी की वजह से, बारिश की वजह से ठंडा गर्म का जो तापमान है ना, वो हमारे शरीर के जो अंदर के तापमान को भी बिगाड़ देता है। इससे खांसी जुकाम होता है, और साथ में बारिश की वजह से आसपास में मक्खी मच्छर किसी की वजह से भी कई बीमारियों का आना होता है। तो हमारी तरफ से यही आपसे कहना है कि आप अपना ख्याल रखें, और जितना भी हो सके अपने मौसम के बदलते हुए होते हुए आप अपने आप को भी बचाव बनाएं।
1: बिल्कुल। और देखिए, अगर खान पान की बात करें तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए फल और सब्जियों को अपने खान पान में शामिल कीजिए। और अगर वो फल और सब्जियाँ प्राकृतिक तरीके से उगाई गई हों तो उनका जो पोषण महत्व है बहुत अधिक बढ़ जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। और अब तो हर एक इंसान को चाहिए कि किसी तरीके से मुझे ऐसे फल और सब्जियाँ मिल जाएँ जो कि रासायनिक की बजाय प्राकृतिक तरीके से उगाए गए हों। और प्राकृतिक खेती की ओर भी हम लगातार अपने किसान भाइयों को कहते रहते हैं, अपने कार्यक्रम के जरिए बताते रहते हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना कितना ज़रूरी है, जिसमें रसायनों की बजाय जो हमारे देसी उत्पाद होते हैं जैसे गोमूत्र है, वनस्पति और प्रकृति आदान जैव अमृत और बीजा अमृत इत्यादि का प्रयोग करें, जिससे कि जो आपका उत्पाद होगा उसकी गुणवत्ता बहुत ही अधिक हो गई होगी। और इसी में इसी को बताने के लिए एक खास बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है बागवानी के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती से फायदे और नुकसान। इसकी जानकारी दे रहे हैं प्रगतिशील किसान हर्षवर्धन त्यागी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो सुनते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत।
2: भाइयों नमस्कार। कृषि में किसान मेले, कृषि महोत्सव, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और देश में समय समय पर जो भी फसलें होती हैं उनके अलग अलग महोत्सव होते हैं, चाहे उसमें आपका आम हो गया, अमरूद हो गया, उसके अलावा बहुत से हमारे मेले भी

0: इसमें पशु मेले हो गए, हमारे किसान मेले हो गए, जो कृषि संस्थान या कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य स्तरों पर भी कई तरीके के मेले एवं प्रदर्शनी लगाई जाते हैं, तो उसमें जो भी हमारे किसान हैं उनको भी जाने का मौका मिलता है, अपनी फसल, अपने बागवानी उत्पाद उसको प्रदर्शित करने का उन्हें मौका मिलता है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक आम महोत्सव का आयोजन किया गया, उसमें देश भर से जो आम उत्पादक उन्होंने भाग लिया, और इसमें हमारे भदसियाना हापुड़ के एक किसान उन्होंने भी भाग लिया, हर्षवर्धन त्यागी जी ने, और उसमें क्या कुछ हुआ, उन्होंने अपना कौन सा उत्पाद प्रदर्शित किया, उसमें जो भी उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शित किया उसको उन्हें किस तरीके से प्रोत्साहित किया गया, तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं हर्षवर्धन त्यागी जी से। त्यागी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो ये लखनऊ में जो अभी आम महोत्सव हुआ था, थोड़ा उसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे।
1: जी, बीते कई वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश भर के जो आम उत्पादक किसान हैं उनको एक अवसर दिया जाता है, एक मंच दिया जाता है, जिस पर वो अपने आम के ऊपर किए जा रहे प्रयोगों को, आम के ऊपर जो गुणवत्ता से वो उत्पादन कर रहे हैं उसका वो प्रदर्शन कर सकें। और कई वर्षों से जो है हमारे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर के सभी जो किसान हैं इस आम महोत्सव का आते हैं, प्रतिभागी बनते हैं। और हम भी पिछले कई वर्षों से आम महोत्सव में लगातार अपनी सहभागिता कर रहे हैं। 2019 से मैंने हमारे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के भदशाना गांव में आम का जैविक और प्राकृतिक रूप से उत्पादन शुरू किया था। 2019 में हमने इसकी शुरुआत की, और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हमारे फार्म के जैविक और प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए 64 आम को प्रदेश में इस आम महोत्सव में द्वितीय पुरस्कार मिला था। और इस वर्ष जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हम जैविक और प्राकृतिक रूप से आम उत्पादन कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य का जो है सम्मान दिया गया था। तो ये हमारे जनपद के सभी किसानों के लिए एक गर्व का विषय था, और पूरे प्रदेश और देश भर के जो है किसान इस आम महोत्सव में जो है सहभागिता करते हैं, और 800 से अधिक प्रजातियां जो है आम की डिस्प्ले की जाती हैं, और तरह तरह के आम हैं। हमारे क्षेत्र की मैं बात करूं तो जो ट्रेडिशनल वेराइटी हैं जिसमें के दशहरी, लंगड़ा, चौसा, गुलाब जामुन, रामकेला, इसके साथ साथ अब जो है विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आम की जो है पूसा के द्वारा और राज्य सरकारों के जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके सहयोग से आम की वेराइटियां विकसित की जा रही हैं। इनके साथ साथ अब पूसा के द्वारा कई प्रजातियां और हैं जो हमने अपने फार्म पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, उसमें जो है पूसा आम्रपाली है, पूसा अरुणिमा है, पूसा मल्लिका है, तो इस प्रकार की विभिन्न वेरायटियां हैं। उसके अलावा अचार की वेरायटियां हैं जिसमें रामकेला हमारी पुरानी वेरायटी है, देसी कई वेरायटियां हैं, प्रजातियां हैं जो पुराने समय से हमारे, क्योंकि आम जो है फलों का राजा है और भारत जो है एक अपनी पहचान बना रहा है आम उत्पादन के क्षेत्र में। पूरे विश्व भर में हमारे देश से जो है आम निर्यात भी किया जा रहा है, तो उस तरीके का एक बहुत बड़ा समागम था ये जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया, पार्टिसिपेट
0: जी
1: किया।
0: बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि आपको पुरस्कार मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, तो आपको कैसा लगा?
1: देखिए, ये तो गर्व का विषय होता है जब आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा आपको सम्मानित किया जाए, और ये गर्व का विषय इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक भ्रम जो किसानों में है कि बागवानी के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करना बड़ा मुश्किल हो पाता है, उस भ्रम को हमने दूर करते हुए 2019 से प्राकृतिक रूप से, या ये कह सकते हैं कि रसायन मुक्त तरीके से आम का उत्पादन करना शुरू किया था। उसको प्रशस्ति पत्र दिया गया उस प्रयास को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो ये अपने आप में एक गर्व का विषय था हमारे जनपद के सभी किसानों के लिए जो प्राकृतिक रूप से जो है आम उत्पादन या फल उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
0: तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आम के पौधे लगाएं और कोशिश करें कि उसमें रसायनों का ना प्रयोग करें, तो उनके लिए आपकी क्या राय है?
1: देखिए, मैं तो सभी किसान भाइयों को हम जो है समय समय पर प्रशिक्षण भी देते हैं प्राकृतिक और जैविक रूप से खेती करने का, बागवानी करने का, तो हम तो सभी जो किसान भाई हैं जो मुझे सुन रहे हैं उनको यही विनती करना चाहूंगा, अब समय आ गया है कि हम थोड़ा रसायनों से अलग हटकर सोचना शुरू करें, क्योंकि रसायन जो है वो अब हमारे जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मिट्टी है, जल है, उसका दोहन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और अब धरती में इतनी क्षमता नहीं रही कि वो केवल रसायनों के प्रयोग से जो है उत्पादन देती रहे। लागत बढ़ती जा रही है किसानों की, और साथ साथ जो गुणवत्ता है वो घटती जा रही है। विदेशों में जो हम अपने देश का सामान निर्यात कर रहे हैं तो उसको उचित मूल्य ना मिलके अब हम देखने में आ रहा है कि रिजेक्ट भी किया जाता है कई देशों के द्वारा। हम 2019 से इस प्रयास में लगे हुए हैं। लगभग 3,000 से अधिक किसानों को हमने प्रशिक्षण दिया है, हमारे जो जैविक और प्राकृतिक फार्म जो हमने सर्टिफाइड फार्म तैयार किया है, बनाया है अपने क्षेत्र में। तो हम सभी किसान भाइयों से यही अपील करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि वो धीरे धीरे रासायनिक खेती से अलग हटना शुरू करें, धीरे धीरे प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ बढ़े और अपनी गुणवत्ता को सुधारें और अपने प्राकृतिक संसाधन, अपनी धरती माँ को सुधारें, उनकी सेहत का ध्यान रखें।
0: जब आप किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं किसानों को, तो किस तरीके के सवाल पूछते हैं किसान भाई?
1: देखिए, सबसे पहला तो किसानों का सवाल यही होता है कि जब हम रासायनिक खेती को छोड़ेंगे तो क्या प्राकृतिक जैविक खेती से उनका उत्पादन उतना आ पाएगा। तो मैं इसमें किसानों को एक सलाह ये देता हूँ कि आप पूरी तरह से रासायनिक खेती को एकदम से ना छोड़ें, क्योंकि धरती माँ में अब उतनी क्षमता नहीं बची कि आप एकदम से जब रसायन छोड़ेंगे तो वो उतनी उत्पादन आपको दे सके। आपको धीरे धीरे रसायन को कम करना है और प्राकृतिक विकल्पों को धीरे धीरे अपनी खेती में जोड़ना है। सबसे पहले तो हमें जो है गौ माता के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग बढ़ाना चाहिए अपनी खेती में। उसके साथ साथ हम साल दर साल जो है रसायनों को धीरे धीरे घटाएं। पहले साल हम 10% रसायन को घटाएं और प्राकृतिक जो विकल्प है, गोबर का खाद है, गोमूत्र है, जीवामृत है, इस तरह के विकल्पों को धीरे धीरे खेती की तरफ जोड़ें। तो उससे क्या है कि उत्पादन इतना मात्रा में नहीं घटेगा जितनी मात्रा में घटकर किसान को नुकसान हो, क्योंकि रसायन को घटाएगा तो उसकी जो लागत है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी और जो उसका उत्पाद है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, क्योंकि धरती में जीवांश कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन जो धरती से उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है, जब वो बढ़ना शुरू होगा तो उनके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी और उसके गुणवत्ता के साथ साथ उसकी जो बाजार में जो कीमत है वो भी उसको अधिक मिलना शुरू हो जाती है। तो हम किसानों को पहला जो उनका सवाल होता है कि उत्पादन घटेगा, तो हम कहते हैं कि आपको रसायनों को छोड़ना है पर एक तरीके से छोड़ना है जिसमें आपको कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता लेनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिक है जो हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें रसायनों को कम करना है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग करना है जिसमें हमें संतुलित मात्रा में शुरुआत में जो है रसायन का प्रयोग करना है, कीटनाशकों का प्रयोग करना है और प्राकृतिक विकल्पों को साथ में जोड़ना है। तो जब धीरे धीरे आप इस काम को करेंगे तो आपके जो है प्रोडक्शन घटेगा नहीं, उसके साथ साथ आपका जो उत्पादन की जो उसकी गुणवत्ता है वो बढ़ेगी और आप धीरे धीरे देखेंगे कि 3-4 साल 5 साल में आप अपनी सारी रसायन की जो खपत है उसको कम कर लेंगे, अपनी लागत खत्म कर देंगे रासायनिक, और प्राकृतिक विकल्पों पर जब आप धीरे धीरे आ जाएंगे तो आपका जो उत्पादन होगा वो भी गुणवत्ता का होगा, संसाधन भी आपके जो है बचेंगे, जल आपका दूषित होने से बचेगा, धरती माँ का स्वास्थ्य ठीक होगा और जो बाजार में जो अच्छे उत्पादों के ग्राहक हैं, जो प्राकृतिक और जैविक उत्पाद चाहते हैं, वो आपसे जुड़ेंगे। फिर
0: बिल्कुल लोग स्वस्थ रहने के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अच्छी चीज मिलनी चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल।
0: लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि अगर हम प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं और वो प्राकृतिक खेती तुरंत नहीं शुरू होती है, धीरे धीरे होती है, उसमें आपके उर्वरक से लेकर के निकाय गुड़ाई वहां तक पहुंचती है, लेकिन आम एक ऐसी फसल है जिसमें जब तैयार होती है और बाजार में आती है, हम बाजार में खरीदने जाते हैं, ग्राहक पूछते हैं कि भाई ये डाल का आम है या पाल का है, ये क्या है?
1: देखिए, डाल का आम वो आम होता है जो पेड़ पर पकता है और अपने आप गिरता है। उसकी जो शेल्फ लाइफ कह सकते हैं, उसकी जो बाजार तक पहुंचने की या हमारे घर तक पहुंचने की जो उसकी जो अवधि है वो बहुत थोड़ी होती है। तो डाल का आम जो है वो उपलब्ध होना इतना आसान नहीं है, उसके लिए तो आपको किसान के साथ जुड़ना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा और वहां बाग में बैठकर उसका स्वाद लेना पड़ेगा। उसके दूसरे तरफ से हम बात करें तो हम प्राकृतिक रूप से, पाल का अर्थ होता है रासायनिक तरीके से आम को पकाना। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक जो है इस दिशा में काम कर रहे हैं, ICR ने बहुत अच्छा काम किया, तो कुछ ऐसे विकल्प भी हैं कि आम को बिना रसायनों के भी कैसे पकाया जा सके।
0: यही चीज कहना चाह रहा हूं कि आम को जब पकाया जाता है उस समय भी किसान को या हमारे फल उत्पादक हैं उनको उन विधियों को अपनाना चाहिए जिसमें उसमें वो कार्बाइड का प्रयोग ना करें।
1: बिल्कुल आपने सही बोला, कार्बाइड के साथ साथ और भी कई सारे ऐसे केमिकल के विकल्प आजकल बाजार में उपलब्ध हो गए हैं जिनसे रासायनिक रूप से लोग आम पका रहे हैं, लेकिन हम जो प्रयास करते हैं वो ये करते हैं कि एक उचित गुणवत्ता का आम जो है हमारे उपभोक्ता तक पहुंचे। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक विकल्प हैं जिससे हम अपने आम को पकाते हैं और अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो अब जो है धीरे धीरे कृषि विज्ञान जो है विकसित हो रहा है कि वो प्राकृतिक विकल्प से कैसे आम को पकाया जाए, इस पर भी काम कर रहा है। जहां तक आपने डाल और पाल की बात करी, तो अब जो है बाजार में ग्राहक भी इस बारे में जागरूक है और ये पाल को जो है वो नेचुरल तरीके से पका हुआ आम मानते हैं, जो कि बिल्कुल निश्चित तौर पर होता है क्योंकि पेड़ पर स्वयं पकता है। पर उसके अलावा भी हम डाल के आम के अलावा जो आम को तोड़कर हार्वेस्ट कर पकाते हैं, ऐसे बहुत विकल्प हैं जिससे हम आम को जो है बिना रसायन के पका सकते हैं।
0: तो जिस तरीके से अगर हमारे किसान भाई बागवानी प्राकृतिक तरीके से करें तो उसमें फायदे होने की भी संभावना है?
1: मैं निश्चित तौर बताना चाहूंगा, मेरा जो है खुद का स्वयं का अनुभव है 7 वर्षों का। शुरुआत में आपको थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन किसान जो है वो एक ऐसी बिरादरी से आता है जो कि जुझारू है, जो कि
0: मेहनत करना तो जानता है।
1: बिल्कुल, मेहनत भी करना जानता है और सबसे बड़ा रिस्क लेने वाला अगर कोई व्यवसाय है तो वो एक खेती का व्यवसाय है। आप अपनी फसल को, अपनी कमाई को खुले आसमान के नीचे छोड़कर घर पे सोते हैं, वो उस जोखिम को उठाना जानता है। तो शुरुआत में थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़ा सा मेहनत बढ़ती है।

0: एक ही किसान की, क्योंकि वो सालों से रासायनिक खेती कर रहा है। लाभ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला लाभ यही होता है कि रासायनिक खेती की जो आज के समय की लागत है वो इतनी बढ़ गई है कि उसकी वजह से किसान जो है साल दर साल जो है बेचारा कर्जदार होता जा रहा है। तो वो रासायनिक खेती को जब छोड़ के प्राकृतिक खेती की तरफ आता है तो उसकी लागत घटती है, ये पहला लाभ होता है। दूसरा लाभ ये होता है जब वो प्राकृतिक रूप से जैविक रूप से अपने उत्पादन को करता है तो उसके उत्पाद का जो डिमांड है, उसके उत्पाद की जो गुणवत्ता है, उसको बाजार में अधिक मूल्य भी मिलता है। साथ में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक फायदा किसान के लिए होता है, जो हमारे संसाधन है जिसके ऊपर किसान खेती करता है,
1: जी
0: जिसमें हमारी भूमि है, हमारा जल है, इसका दोहन बचता है। लंबे समय तक जो है ये संसाधन हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम जो है इनको सुरक्षित कर देकर जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा छुपा हुआ लाभ है जो किसान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता, पर इसका समय दर समय जब उसका समय बीतता जाएगा उसको उसका लाभ दिखाई देता है।
1: और कोई भी फसल जब चाहे खेत में पैदा हो चाहे बागों में पैदा हो, उसको बाजार तक तो किसान ले ही जाता है, खुद भी प्रयोग करता है, तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।
0: बिल्कुल
1: और जब भी कोई कार्य किसान करता है या कोई भी करता है तो जिस तरीके से उसके लाभ होते हैं, उस कार्य को करने में चुनौतियां भी होती हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: प्राकृतिक जो बागवानी अगर किसान करना चाहे, उसके लिए क्या चुनौती का सामना करना पड़ेगा?
0: देखिए जी, पहली चुनौती मैं बताऊं कि जो हमारा किसान है वो सालों से रासायनिक खेती कर रहा है, तो प्राकृतिक खेती की जो जानकारी है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से अगर किसान को हो तो ही प्राकृतिक खेती में एक किसान कामयाब हो पाता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे माध्यम से जानकारी किसान तक पहुंचती है, कई बार वो किसान के पास पहुंचने वाली जानकारी जो होती है वो सही नहीं होती
1: अधूरी होती
0: जी,
1: है।
0: अधूरी भी होती है और गलत भी होती है, और वो गलत काम कर रहा होता है उसको प्राकृतिक खेती मान के करके नुकसान उठा रहा होता है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसान को प्राकृतिक और जैविक रूप से खेती करने का सही तरीका पता हो, उसके लिए किसानों को जो है कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। मैं हमारे सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा कि अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर इसका प्रशिक्षण लें, 1 या 2 दिन का समय जब भी उन्हें मिले वो जाएं, अपनी जो भी फसल वो बोना चाहते हैं, चाहे वो बागवानी कर रहे हैं तो बागवानी से जुड़ी जो भी फसल वो कर रहे हैं, उसके जो समय है बुआई का या कटाई का, जो भी समय उसका, जो फसल जो उनको जानकारी लेनी है, उस समय से पहले कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़े, उनसे उसकी तकनीकी जानकारी प्राप्त करें और फिर उसको साइंटिफिक तरीके से करना शुरू करें। सबसे बड़ी चुनौती ही ये है प्राकृतिक खेती की आज के समय में, बागवानी के क्षेत्र में भी, कि जागरूकता तो है लेकिन सही जानकारी का अभाव है किसान तक, तो वो जानकारी पहुंचे, ये पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि किसानों को संगठित होकर खेती करनी होगी। अब वो समय नहीं है जब हम अकेले अकेले अपनी खेती
1: जी
0: करें,
1: जी
0: अगर हम संगठित होकर खेती करते हैं उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारे पास अधिक मात्रा में उत्पादन होता है जिसको हम फिर बाजार में एक अच्छे मूल्य पर बेच सकते हैं। अगर कोई किसान सीमित रूप से अकेला खेती कर रहा है और अकेला अपने उत्पाद को लेकर मंडी जाता है या किसी भी जगह पर जाता है बेचने के लिए, तो उसका शोषण होता है। वहीं अगर हमने देखने में यह आया है कि भारत सरकार के और राज्य सरकारों के प्रयासों से किसानों को संगठित कर FPOs बनाए जा रहे हैं, उसका एक निश्चित लाभ ये मिलता है किसानों को कि वो संगठित होकर बड़े स्तर पर खेती करते हैं और इकट्ठा गुणवत्ता का उत्पाद लेकर जब वो मंडी भी जाते हैं या किसी भी एग्रीगेटर से या किसी कंपनी के साथ बातचीत करते हैं अपने उत्पाद को लेकर, तो उनके उचित मूल्य में मिलता है। साथ में उस उत्पादन को करने के बाद अपने उत्पाद की ग्रेडिंग सॉर्टिंग करना, उसको एक अच्छा रूप देना, ये भी तभी संभव है जब किसान संगठित होकर करे। तो प्राकृतिक खेती के विकल्प पे जब किसान आना चाहे तो अपना खुद का अनुभव ये कहता है कि उनको संगठित होना चाहिए और 10-15-20 किसान एक जैसी फसल करने वाले इकट्ठे हों, एक जैसी खेती की पद्धति को अपनाएं, प्रशिक्षण लें, उसके बाद उत्पादन करके उसकी उचित ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर अपने उत्पाद को जो है बाजार तक पहुंचाए।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज के दिन जो किसान अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग फसलें उगा रहे हैं, तो उससे फायदा नहीं है। आप मिलके संगठित होके एक डिसीजन लेके कि हमें ये फसल उगानी है, अच्छे तरीके से उगानी है, एक साथ उगानी है और उसको बाजार तक ले जाना है उसकी अच्छी गुणवत्ता के साथ, तो उससे आपको मूल्य भी अच्छा मिलेगा और आपको लागत भी कम आएगी। हर्षवर्धन त्यागी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पे इस जानकारी का हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भाई अभी आप सुन रहे थे ये जानकारी और विषय था बागवानी के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती से फायदे और चुनौतियाँ। जानकारी हमें दे रहे थे प्रगतिशील किसान हर्षवर्धन त्यागी और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल, और बहुत ही काम की जानकारी दी उन्होंने कि किस तरह से किसान भाई हमारे जैविक खेती या प्राकृतिक खेती से कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कैसे मिल सकता है उनको, और सही प्रशिक्षण भी लेना ज़रूरी है, तकनीकी जानकारी का भी होना उनको बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में ये कहीं से भी डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, आप कहीं से भी इसके बारे में सही जानकारी ले सकते हैं, जो आपके सवाल हैं सब आपको वहाँ पे जवाब मिल सकते हैं।
3: बिल्कुल, बहुत ही विस्तृत जानकारी दी हमारे किसान भाइयों ने। और देख विनस बहन, आम की बात है, आम तो फलों का राजा है और

स्वाद भी इतना अच्छा होता है, और अगर प्राकृतिक तरीके से उगाया गया हो तो देश हो चाहे विदेश हो भरपूर इसकी मांग है। और हमारे किसान भाई अगर प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होंगे तो जैसा कि भाई ने बताया कि FPO बना के अपने उत्पाद को अगर वो बेचते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि अच्छी चीज़ की कीमत हमेशा बाज़ार में बनी रहती है। और देखिए, आम के साथ साथ जामुन भी एक ऐसा फल है कि अभी उपलब्ध भी बहुत है बाज़ार में, और इसमें गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पाचन को बेहतर बनाता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी और आयरन होता है भरपूर मात्रा में, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ के मरीज़ों या हृदय रोग में भी ये बड़ा ही शानदार आपके लिए परिणाम लेकर आता है। तो जामुन का सेवन भी आप इस मौसम में ज़रूर कीजिए। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं मंजू शर्मा की आवाज़ में ये रागनी।

0: भाई अभी आप सुन रहे थे कलाकार मंजू शर्मा से ये रागिनी।
1: और वही याद दिला दें आपको कि कल है शनिवार और शनिवार को हमारा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम हेलोग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जिसमें हमारे श्रोता फ़ोन के माध्यम से अपने पसंद के लोकगीतों को सुनते हैं और अपनी फरमाइशों को फ़ोन के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। तो आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलोग्राम संसार कल 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा और हमें आपकी जो फो उसके दौरान आपको हम विस्तार से बताएंगे कि आप कार्यक्रम में किस तरह से जुड़ सकते हैं, कब रिकॉर्डिंग होती है और इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं 6:30 पर। तो सुनना ना भूलिएगा कल हेलोग्राम संसार कार्यक्रम। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और आइए अब आनंद लेते हैं गजल और कवालियों का।

कार्यक्रम अब आइए आनंद लेते हैं एक कव्वाली का, जैसे हमने चुना है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। आवाज लता मंगेशकर और साथियों की है।

0: इसी के साथ गज़ल और कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रादेशिक समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू और भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में सम्पन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय लगभग 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है।

0: मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शकूरपुर से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र राजधानी के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान में दिल्ली में 415 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर संचालित हैं, जो नागरिकों को उनके घरों के निकट गुणवत्तापूर्ण और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों में नागरिकों को सामान्य ओपीडी, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित टीकाकरण, गैर संचारी रोगों की निःशुल्क जाँच, आवश्यक दवाइयाँ, स्वास्थ्य परामर्श और लगभग 80 प्रकार की निःशुल्क जाँच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना भी है।
3: आज ये इतनी बड़ी आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपकी मेहनत की ही देन है, जो हाँ जिसका फायदा इस क्षेत्र की जनता उठाए। हर तरह के टेस्टिंग की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है।
2: श्रीमती गुप्ता ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही 1100 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर स्थापित करने के अपने लक्ष्य को भी पूरा करेगी। उन्होंने नागरिकों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, संतुलित जीवन शैली अपनाने और योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का भी आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में 14 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में नेताजी सुभाष प्लेस क्षेत्र में 5 सड़कों और एक नाले का पुनर्निर्माण शामिल है। 6,25,00,000 रुपए की लागत से विकसित 8 प्रमुख सड़कों लॉरेंस रोड, महर्षि परशुराम मार्ग, परवाना रोड, जी और एच शकुरपुर रोड, एकलव्य मार्ग, तिरुवल्लू वरमार्ग और वीर हेमू समेत अन्य मार्गों का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिनगर विधानसभा वर्षों तक बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझती रही, लेकिन अब इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष तेज बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत प्रभावी किसानों को 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस निर्णय के अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न जिलों और उपखंडों में फैले लगभग 400 हेक्टेयर से अधिक प्रभावित किसानों तक सीधे अनुग्रह राशि पहुंचेगी। यह राशि अगले महीने से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा है योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो उस भूमि के पंजीकृत मालिक हैं और जिनकी फसल पिछले वर्ष अगस्त और सितंबर की तेज बारिश और जलभराव के कारण खराब हुई थी। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज छतरपुर स्थित डेरा मंडी रोड का दौरा कर क्षेत्र में जलभराव, सीवर और सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद श्री सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग डेरा मंडी रोड से डेरा भाटी रोड होते हुए बांध रोड तक नया प्रीकास्ट आरसीसी ड्रेन बनाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में वर्षा जल निकासी की व्यवस्था विकसित करना और भविष्य में जलभराव की समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि जखीरा में बन रहे प्रतिदिन 56 लाख लीटर जल क्षमता वाले भूमिगत जलाशय के निर्माण कार्य में तेजी से प्रगति हो रही है। जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सज्जन सिंह यादव ने आज निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की। परियोजना के पूरा होने के बाद नेहरू नगर, आनंद पर्वत और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति में सुधार होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली रिज के पीबीजी ग्राउंड में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया। ये पौधारोपण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित अभियान एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित है। श्री सिरसा ने लोगों से पेड़ों को बचाने की अपील की।
4: आज दिल्ली पुलिस द्वारा एक बड़ी प्लांटेशन ड्राइव यहां पर चलाई गई। दिल्ली के हर कोने में पेड़ लगे, इसके लिए दिल्ली सरकार माननीय रेखा

0: गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में काम कर रही है। देश के गृह मंत्री जी ने पहला पेड़ लगाकर इस मुहिम की शुरुआत की और अब लाखों पेड़ दिल्ली के अंदर लगाए जा रहे हैं। सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को साथ मिलकर पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ हमारा टारगेट है। सभी डिपार्टमेंट एमसीडी पीडब्ल्यूडी डीडीए सब लोग मिलकर इस काम मुहिम को कर रहे हैं।
1: न्यू अशोकनगर नमो भारत स्टेशन पे एक उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को नागरिकों के लिए परिचालित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने बताया कि इस चार्जिंग स्टेशन में 14 डीसी चार्जिंग प्वाइंट प्रदान किए गए हैं। उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन का पता लगाने के साथ साथ चार्जिंग सुविधा का सुगम उपयोग कर सकते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। आदेश में दिल्ली के वर्तमान पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को अनुराग कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद आगे की तैनाती के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही के नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। दमन और राष्ट्रीय राजधानी के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भारत का प्रतिबिंब है, जहां देश के प्रत्येक राज्य के लोग निवास करते हैं। श्रीमती गुप्ता ने आज फेथ पर्यटन सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में केवल देश के विभिन्न राज्यों के लोग ही नहीं रहते, बल्कि उनकी परंपराएं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी जीवंत रूप से संरक्षित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को विश्व स्तरीय पर्यटन हब बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
2: दिल्ली अपने आप में एक शानदार डेस्टिनेशन है। इस विचार पे भी बहुत काम करने की जरूरत थी, हमने इस पे काम करना शुरू। दिल्ली एक तरीके से मिनी इंडिया है, भारत का वो छोटा स्वरूप जहां हर राज्य के लोग रहते, और केवल राज्य के लोग नहीं रहते, उनसे जुड़ी हुई सारी परंपराएं, वो उनका बहुत ही सुंदर कल्चर यहाँ रहता है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तमिलनाडु दिवस भारत की सांस्कृतिक विविधता, गौरवशाली परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का उत्सव है। तमिलनाडु दिवस के उपलक्ष्य में आज राजधानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली अपने आप में एक शानदार डेस्टिनेशन।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास में राज्य के योगदान की सराहना की। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली और तमिलनाडु के बीच आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में आयोजित होने वाले पोंगल, भरतनाट्यम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक सशक्त बना रहे हैं। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि तमिल उत्सवों, पर्वों और कर्नाटक संगीत जैसे सांस्कृतिक आयोजनों से नई पीढ़ी गौरवशाली तमिल संस्कृति से जुड़ रही है। कार्यक्रम में कलाकारों ने भरतनाट्यम, कराकट्टम, कावड़ी अट्टम और कारगम लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। सौम्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया है। चार दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। भारत और विदेश से प्रदर्शकों, खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। यह भारत के वस्त्र क्षेत्र में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। इसमें 138 देशों के 1600 से अधिक प्रदर्शकों, 6000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय

0: खरीदारों सहित 11,000 से अधिक खरीदारों ने भाग लिया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी रही और आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू और भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में सम्पन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि बेहद ही मीठे गीत से, जिसे हमने चुना है फिल्म दम लगा के हईशा से। आवाज़ मोनाली ठाकुर की है, तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, संगीत में वो जादू होता है जो हमारी सारी पीड़ाओं को दूर कर देता है, एक सुखद से एहसास का हमें रूबरू करवाता है, और बस एक अच्छी शुरुआत हो जाती है। तो ऐसी ही अच्छी शुरुआत करती रहिए और संगीत सुनते रहिए। अगला गीत फिल्म टशन से है, आवाज़ सुखविंदर सिंह की।

श्रोताओं, दिल का हार जाना तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम जीवन से हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे गोल्डन वर्ड्स होते हैं जो अपने आप से कहें तो शायद वो जो निराशा है वो पॉजिटिविटी में बदल जाए। आप ये कहें कि हर परिस्थिति में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि आज अगर रात है तो कल सुबह जरूर आएगी। हर इसी बात के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा मीठा सा गीत अलका याग्निक के स्वर में।

वाकई कभी किसी के साथ होने से जो गम है वो फिसल जाते हैं, सिर्फ उसका साथ ही बहुत होता है। और कहते हैं ऐसे लोगों के करीब रहें जो हमेशा इंस्पायर करते हैं और जो हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे जादुई वाक्य बोल देते हों जिसे सुनकर आपको लगता हो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ।

श्रोताओं, कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं और बस हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करेंगे, अब ये प्रॉब्लम आ गई, क्या कर सकते हैं, कैसे निकलेंगे, और दुखी हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम प्रॉब्लम की बजाय प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचें, तो एक तो दिमाग में अपने आप पॉजिटिव बातें आने शुरू हो जाती हैं कि हाँ, बच जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बस ऐसा ही सोचिए, क्योंकि जीवन में पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए सुनवा देते हैं आपको एक और मीठा सा प्यारा सा गाना, फिल्म जब वी मेट से।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कई बार हम परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम कंपैरिजन करने लगते हैं, हर एक से अपनी तुलना करने लगते हैं। लेकिन तुलना करने वाला व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, यानी कि आप जिससे अपनी तुलना कर रहे हैं उसकी परिस्थिति क्या है, हो सकता है

वो आपसे बेहतर उसकी परिस्थितियां हों, तो हमेशा किसी से कंपैरिजन करना आपको निराश कर सकता है। करना है तो पॉजिटिव वे में कंपैरिजन करिए, ये कहिए कि इसने ये किया है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। बस ये जोश, ये ऊर्जा अपने भीतर बनाए रखिए, और संगीत तो है ही आपके भीतर पॉजिटिविटी डालने के लिए। सुनते हैं अगला गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में। फिल्म का नाम है सोल्जर।

श्रोताओं, कई बार ही हमारे जीवन में जब बदलाव आते हैं ना, तो हम थोड़े परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इससे कैसे निकलेंगे, या ये जो नया बदलाव है इसमें हम कैसे जिएंगे, अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर बदलावों को आप स्वीकार लेंगे और उसे पॉजिटिव वे में लेंगे, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये गीत आप सुन रहे थे। और श्रोताओं, जाते जाते बस हम यही कहेंगे कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए, हंसकर उसका सामना करो, हिम्मत दिखाओ, हार मत मानो, और बस जो भी परिस्थितियां हैं उनका सामना करो और सुनते रहो आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल।

0: फिल्म जो जीता वही सिकंदर का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ जतिन की थी। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब

0: लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
0: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
0: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: These state visits. ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
4: इन ओवर 3 decades.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही

0: हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान

0: बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh, flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says Centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress. He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.
2: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा

जुनूबी लुधियाना ग्रीन फील्ड बाईपास की तरक्की का संगे बुनियाद रखने जैसे कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज पार्लियामेंट की सभी सियासी जमातों के ऐवान के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत सभी सियासी जमातों से तआवुन चाहेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज खुश असलूबी से चलाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून इजलास के दौरान कई अहम बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस दौरान आज नई दिल्ली में वुजरा के ग्रुप की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी वुजरा अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजू रंजन सिंह, किंजरापू राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू मौजूद थे। मीटिंग के दौरान लीडरों ने आइंदा पार्लियामानी इजलास की हिकमत अमली तरतीब दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 19 से 25 तारीख तक मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि ये सरकारी दौरे जमहूरिया मोल्दोवा, जमहूरिया शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सुदूर की दावत पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है क्योंकि किसी भी भारतीय सदर जमहूरिया के जरिए जमहूरिया मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के अव्वलीन बाहमी दौरे होंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया का दौरा 3 से ज्यादा दहाइयों में किसी भारतीय सदर जमहूरिया का पहला सरकारी दौरा होगा। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि रोमानिया का आखिरी दौरा साल 1994 में हुआ था। जनाब जॉर्ज ने उजागर किया कि ये दौरा वस्ती और मशरकी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती हुई मसरूफियात की अक्कासी करता है। नीज खित्ते के ममालिक के साथ शराकतदारी को मुस्तहकम करने के भारत के अहद का इयादा करता है। जनाब जॉर्ज ने कहा कि यह दौरा यूरोप के साथ भारत के वसी तर ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के साथ इसकी जामे शराकतदारी को भी उजागर करता है। सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस के इशारिये 2026 में भारत की रियासतों और मरकज के जिल इंतजाम इलाकों के दरमियान गुजरात सबसे बेहतर कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा भी आला कारकर्दगी करने वाले के तौर पर उभरे हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया जिसमें उन रियासतों को उजागर किया गया है जो सरमायाकारी को रागिब करने में बेहतरीन मकाम पर आए हैं। ये साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद की जानिब भारत के सफर को उजागर करता है। इशारे में तमाम 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 8 इलाकों का 8 सुतूनों का इस्तेमाल करते हुए तजिया किया गया जिनमें बुनियादी ढांचा, कारोबारी माहौल, वसाइल, सरकारी पॉलिसी, जाब्ता जाति सहलकारी, इदारा जाति माहौल, मालियाती बेहतरी और माहौलियाती लचक शामिल हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू के साथ 1,03,246 मुस्तफदीन को 3,216 करोड़ रुपये मालियत के कर्जे तकसीम किए। ये कर्जे आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में मुनक़िद क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तकसीम किए गए। जिन शोबों के लिए ये इमदाद फराहम की गई है उनमें ज़राअत, MSMEs और हाउसिंग, तालीम, गाड़ियाँ और शमसी तवानाई के शोबे शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने आज कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में भारत जापान के दरमियान बातचीत इत्मीनान बख्श तरीके से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये पोस्ट एक फर्द के राय की अक्कासी करती है और ये हकीकत से मुख्तलिफ है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जापान E20 ट्रेन सीरीज मुहैया कराएगा लेकिन ये साल 2030 के अवाइल में ही होगा क्योंकि ट्रेन अभी तैयारी के मरहले में है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में हुई पेशरफ्त को उजागर करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि तामीराती काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और साल 2027 में पहला सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फरीकैन ने एक भारतीय हाई स्पीड ट्रेन से ऑपरेशन शुरू करने से इत्तेफाक किया है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का सफर मुनज्जम रजाकाराना खिदमत की ताकत और अपनी जात से पहले खिदमत के पायदार जज्बे की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने बात नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की तसनीफ करदा किताब RSS एट 100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस के इजरा के मौके पर कही। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि RSS ने खिदमत, इत्तेहाद
और कौमी शऊर के

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10 बजने को है। आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए बद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं। कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं कलाकार श्वेता सुष्मिता झा की आवाज में मिथाली गीत।

कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार श्वेता सुष्मिता झा की आवाज में मिथाली गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का अंतर्प्रेस चैनल है, मिडे वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता त्रिपाठी का राग मेघ में त्रिबत गायन। पखावज पर संगत कर रहे हैं मनोमोहक नायक।

0: ध्रुपद गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व

0: सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रिया का और मेरी प्यारी सहेली विजेता का स्नेह भरा नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की।
1: बिल्कुल, और आज हमारे पास बहुत सारे संदेश भी हैं हमारे श्रोताओं के और बातें भी हैं, क्योंकि मैं और प्रिया दोनों एक साथ हैं। तो भाई, आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे एक प्यारे से गीत के साथ। तो सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये वाला गाना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडीवेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, GRM 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 11:10 हुए हैं।

0: कहते हैं ना दोस्तों, प्यार में सिर्फ दो दिल नहीं मिलते बल्कि दो परिवार का खूबसूरत संगम होता है। जहाँ अपनापन, सम्मान, विश्वास साथ हो, वहीं रिश्ता उम्र भर खुशियों का बन जाता है।
1: बिल्कुल। और ये जो गाने हैं ना प्रिया, ये वाकई ऐसे होते हैं जहाँ सारे रिश्तों को प्रॉपर सम्मान दिया जाता है। और इस गाने की फरमाइश हमारे पास आई है नंदिनी चतुर्वेदी, शौर्य चतुर्वेदी की, कृष्णानगर से। और साथ ही साथ उन्होंने एक प्यारा सा संदेश लिखा है कि शौर्य चतुर्वेदी अपने ससुर, यानी कि उन्होंने नाम भी लिखा है महेंद्र चतुर्वेदी के लिए, ये गाने को डेडिकेट किया है। तो भाई बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही धमाकेदार गाने से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और साथ ही साथ हमारे और भी श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और संदेश आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का, और ये लिख रहे हैं, नमस्कार प्रिया और विजेता बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो भाई अभिनंदन तो हम अपने श्रोताओं का भी करते हैं, और प्यारे प्यारे गीतों के माध्यम से अपने श्रोताओं का मनोरंजन भी करते हैं। तो अब अगला गाना सुन लेते हैं।

0: कहते हैं ना दोस्तों, मोहब्बत का पहला एहसास बड़ा अनोखा सा होता है। नींद तो आती है मगर दिल चाहता है थोड़ी सी और बातें कर ले, और ख्यालों में बस यूं ही प्यार भरा सिलसिला चलता रहे।
1: बिल्कुल, लेकिन कहीं कहीं नींद उड़ भी जाती है प्रिया,
0: हाँ
1: जैसे हमारे श्रोताओं की नींद उड़ी हुई है अपने संदेशों को सुनने के लिए। तो भाई पढ़ देते हैं हम संदेश। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पर्ल और विलिस डिकोस्टा का संदेश आया है। और अगला संदेश हमारे पास आया है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। साथ ही कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना रानी, सदफ आरजू जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद, और कापासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार की फैमिली।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: दोस्तों, मोहब्बत का रंग बड़ा प्यारा होता है। हर मौसम में इसका एक अपना नज़ारा होता है। जब कोई दिल ना करीब दिल के करीब होता है ना, तो हर दिन ऐसा लगता है कि त्योहार सा लगने लग जाता है।
1: बिल्कुल, जब प्यार होता है तो दिल अपने काबू में रहता कहाँ है प्रिया? फिर तो दिल भागता है, दौड़ता है, और हमारे श्रोताओं के संदेश भी हमारे पास ऐसे ही बरसते हैं, क्योंकि हमारे श्रोताओं को प्यार है इस फिल्म संगीत से, जो ये गाने सुनते हैं। तो ये संदेश है किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल का, और ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ शास्त्री नगर बीड शहर से, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक का भी संदेश है, और लिख रहे हैं, मैडम जी खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं के लिए भी खुशियां और सेहत मांगते हैं भगवान से। अगला संदेश इंदौर मध्य प्रदेश से है नारायण खर्चे, ललित खर्चे, गणेश कार्तिक, परी खर्चे का, और ये सभी श्रोताओं ने इस गीत की फरमाइश की थी। तो चलिए बढ़ देते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

0: हर नई सुबह एक नई मुस्कान लाए, हर शाम प्यार का पैगाम लाए, उम्र भर यूं ही एक साथ बना रहे और हमारा प्यार दोस्तों कभी कम ना हो।
1: बिल्कुल, प्यार कम नहीं होना चाहिए कभी भी किसी का, और ये तो बढ़ने वाली चीज़ है, ये जितनी बढ़े उतनी ही अच्छी है। जैसे हमारे श्रोताओं के संदेश लगातार बढ़ रहे हैं, दुर्गेश नागनेपुर, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश, सूरज कुमार ढाक से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे ये श्रोता हैं, साथ ही हमारे श्रोता हैं मजनू का टिल्ला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। अगले संदेश के साथ हैं इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक और परी। तो चलिए, आप सभी की फरमाइश यहाँ पूरी हुई और अब अगला गीत सुनते हैं।

0: हर धड़कन की महफिल तुम ही हो। पूछे कोई मेरे दिल से, पूछे कोई मेरे दिल से, तो उसका एक ही जवाब है कि सिर्फ तुम ही
1: तुम ही
0: हो।
1: हो, बिल्कुल। और देखिए कि बड़े प्यारा सा संदेश प्रिया तुम्हारे लिए आया है इस कार्यक्रम में। और ये लिखते हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीन बानो, अलीजा अनायाब और लड्डू। और इनका संदेश मैं लिखा है कि आवा

0: आवाज की दुनिया के सितारे, शब्दों के जादूगर और दिलों को जोड़ने वाली हमारे प्रिय रेडियो प्रस्तुतकर्ता का हार्दिक अभिनंदन है। तो बिल्कुल देखिए, ये बहुत ही प्यारे से शब्द हैं जो कि रेडियो की जुड़ी हुई आवाज होती हैं।
1: इतनी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलावर जी।
0: और अगला संदेश हमारे पास आया चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा का। और ये संदेश है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह का, गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से। तो चलिए अब कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ बढ़ देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: बातों बातों में दिल का हाल कह दिया, बिना इजहार के ही प्यार का एहसास दे दिया। कुछ रिश्ते ऐसे ही बन जाते हैं जहाँ हर बात में अपनापन लग जाता है, जैसे कि आपके साथ।
1: बिल्कुल। तो चलिए, अगला संदेश हमारे पास आया है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, और ये लिखते हैं कि इंद्रप्रस्थ के प्रोग्राम हम दिल से सुनते हैं और प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो भाई, आपका शुक्रिया कि आप कार्यक्रम को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा रहे हैं। और अगला संदेश हमारे पास है सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामणि शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने का, राहुल नगर अमरावती से। और ये संदेश है गांव फ्रासी हिसार से राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी का। सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: और इसी प्यारे से गाने के साथ लेते हैं आपसे विदा।
1: मैं आपकी दोस्त प्रिया और मेरे साथ थी मेरी सहेली
0: विजेता। तो छोड़े जाते हैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

0: इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया वापसी विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। बारह बजने को है इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जोड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने कल नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना का पहला चरण 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तथा वेब आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी में औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त की थी, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो उर्दू और पर्शियन भाषाओं के बहुत बड़े टीचर थे। असद अपनी शायरी के चलते असद भोपाली के नाम से मशहूर हो गए, और 28 साल की उम्र में जब ये गीतकार बनने के लिए मुंबई आए तो इन्हें पहचान बनाने के लिए अन्य कलाकारों और गीतकारों की तरह एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। आइए सुनते हैं इनकी इनके लिखे लिखे हुए ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो। मीना मीना।

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे गीतकार असत भोपाली पर। श्रोताओं, असत भोपाली जब मुंबई संघर्ष करने के लिए आए तो उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने सबसे पहले 1949 में आई फिल्म दुनिया के लिए दो गीत लिखे थे, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी और सुरैया की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था इन्हें। लेकिन जो इन्हें प्रसिद्धि मिली वो मिली B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना की गीतों से। और उस समय असद ने अपने उस समय के सबसे प्रमुख संगीत निर्देशकों जैसे कि श्याम सुंदर, खयाम, धनीराम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी और हेमंत मुखर्जी के साथ काम किया था। और ये गीतकार के तौर पर इनकी जो पहचान है उस समय बनने लग गई थी। ऐसा ही एक गीत आइए सुनते हैं, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में इनके लिखा हुआ है ये गीत।

श्रोताओं, असद भोपाली ने अपने पूरे जीवन काल में 100 से ज़्यादा फिल्मों में 400 से भी ज़्यादा गीत लिखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो पूरे हकदार थे। अन्य गीतकारों के आगे इनका नाम जैसे एक दबासा ही रह गया था, लेकिन इनके मुंबई पहुंचने और गीतकार बनने की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। असल में स्कूल कॉलेज के टाइम से ही ये मिर्ज़ा गालिब से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं की तरह ही मुशायरों में जाना और मुशायरे करना और गीत लिखना इन्हें बहुत पसंद था। इनकी जो शायरी और साहित्य था, इनका लिखा हुआ जो गीत थे वो अक्सर लोग बहुत पसंद किया करते थे और 21 साल की उम्र से में ही ये मुशायरों में जाने और शेरो सुखन से लोगों का दिल जीतने लगे। जब असद शायरियाँ पढ़ते तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी, क्योंकि जो इनकी शायरी थी वो बहुत ही प्रभावशाली हुआ करती थी, जिससे इन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली। और जब इन तालियों के बीच समय बीतने लगा तो इन्हें महसूस हुआ कि अब इन्हें आगे कुछ अच्छा करना चाहिए, तो ये और जब ये 28 साल के हुए तो इन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया और तब इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया और इस तरह एक फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक बेहतरीन गीतकार मिला। आइए सुनते हैं इनका लिखा हुआ ये एक और बेहतरीन गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, असद भोपाली ने अपने जीवन काल में एक से बढ़कर एक गीत लिखे थे। हालांकि इनके जो ज़्यादातर गीत थे वो नोटिस नहीं किए गए या मशहूर नहीं हो पाए थे, लेकिन कुछ फिल्मों के इनके गीत बहुत हिट साबित हुए थे जो आज भी हमारे दिल को बहुत सुकून पहुंचाते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, असद भोपाली के बारे में ये कहा जाता है कि वो लगातार 40 सालों तक फिल्मों में गीत लिखते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने खुद ये माना कि ज़िंदगी ने उनके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार गीत लिखते चले गए और एक से बढ़कर एक बेहतरीन नगमे हमें देते चले गए। ऐसा ही एक बेहतरीन नगमा आइए हम आपको सुनवाते हैं उनका लिखा हुआ।

श्रोताओं, असद भोपाली वैसे तो एक बेहतरीन गीतकार थे, लेकिन उन्होंने जो भी गीत लिखे थे, शायद उन्हें पहचान ना मिल पाने की शायद एक वजह ये भी थी कि उन्होंने जिन जिन फिल्मों के लिए गीत लिखे थे, उनमें से अधिकतर फिल्में हिट नहीं रही थी और उनके गीतों को वो पहचान नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने उनके बहुत से लिखे हुए बहुत से गीत आज भी दिल को बहुत लुभाते हैं, दिल को सुकून पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक गीत आइए सुनते हैं फिल्म पारसमणि से।

श्रोताओं, आज़ाद भोपाली ने अपने जीवन में दो शादियां की थी और दोनों ही पत्नियों से उनके 8 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटे और 6 बेटियां थे। उन्होंने जो पहली शादी की थी वो आयशा नाम की लड़की से की थी, और उनसे और जो उनकी उनकी दूसरी पत्नी थी उनसे उन्हें एक बेटा पैदा हुआ था। उनका एक बेटा असद भोपाली का एक बेटा फिल्म इंडस्ट्री में गीतकार है, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सी फिल्मों जैसे भिंडी बाजार और मुंबई मिरर जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे। आइए सुनते हैं इनका लिखा हुआ ये एक और गीत।

बताऊं, अपने जीवन के अंतिम दिनों में असद भोपाली काफी बीमार रहने लगे थे। इन्हें इनके जीवन के अंतिम दिनों में ये लकवे से ग्रसित हो गए थे, और लकवे से ग्रसित होते हुए भी इन्होंने एक ऐसी हिट फिल्म के गीत लिखे जिसके गीत बहुत मशहूर हुए थे, और वो फिल्म भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और उस फिल्म ने एक नए अभिनेता को लोगों के बीच में रातों रात लोकप्रिय कर दिया था, और वो अभिनेता थे हम सब के प्यारे सलमान खान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया की। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, और इस फिल्म के जो गीत थे उन गीतों ने बहुत धूम मचा दी थी। हर तरफ इस फिल्म के गीत बहुत लोकप्रिय हो गए थे, और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, लेकिन वो जो कि इनके परिवार ने ग्रहण किया था इनकी मृत्यु के बाद। आइए सुनवाते हैं इस फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

चौथा असद भोपाली की मृत्यु 9 जून 1990 को हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो अंतिम गीते जिस फिल्म के लिए इन्होंने लिखा था वो फिल्म थी रणभूमि। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1991 को, लेकिन हालांकि हमारे पास इस फिल्म के गीत अभी नहीं है, लेकिन उसी दौरान इन्होंने एक और फिल्म के लिए गीत लिखे थे जिसका नाम था पुलिस पब्लिक। हम आपको सुनवाते हैं गीत, ये गीत उसी फिल्म से, और इनके मरने के बाद सन 1995

1994 में भोपाल में उर्दू अकादमी की तरफ से इनकी कविताओं की एक बुक प्रका एक किताब प्रकाशित हुई थी, जिसमें जिसका नाम था रोशनी, धूप और चांदनी। हालांकि अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी कविताओं और अपने गीतों के जरिए ये हमारे बीच हमेशा मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम के अंत में सुरों का सफ़रनामा, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म पुलिस पब्लिक से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा

0: हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 269 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G, डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं को कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। डॉक्टर मांडविया कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मेरा युवा भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के स्वर्ण सुवर्ण रेलवे स्टेशन के पास स्कूल वैन और यात्री ट्रेन के टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme.

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना केएल सहगल साहब की आवाज़ में फिल्म भक्त सूरदास से। आइए सुनते हैं अगला गीत कानन देवी की आवाज़ में फिल्म हॉस्पिटल से।

0: अगला गीत श्रोताओं ये सुनते हैं फिल्म बावरे नैन से मुकेश और गीता रॉय की आवाज में। ये तस्वीर तो मेरी है।
1: नहीं, ये उसकी है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है। और इससे मैं कहती हूँ

इसी के साथ श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म तुमसा नहीं देखा से मोहम्मद रफ़ी की मधुर आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार

0: कर रही है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य के 70 किलोग्राम एमडीएमए ड्रग्स की कथित तस्करी से संबंधित जांच के सिलसिले में चलाया गया। ईडी ने बताया कि ये जांच इंदौर अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं, साथ ही आरोपियों की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से संबंधित विवरण भी प्राप्त हुए हैं। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण फॉरेंसिक जाँच के लिए जब्त किए गए हैं। चीन के दक्षिणी पश्चिमी शहर चोंगजिंग में कल हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 34 लोग लापता हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार बचाव दलों ने मलबे से 10 लोगों को जीवित निकाला जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया कि ये भूस्खलन सुबह चोंगजिंग के पेंगशुई काउंटी में हुआ। चट्टानों और मिट्टी का विशाल मलबा पहाड़ी से नीचे गिरा और 10 से अधिक रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। घटनास्थल पर 800 से अधिक बचाव कर्मी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier.

नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब

उस घर को बस राम बचाए।

0: ही खड़ी
1: पिताजी,
0: ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू टेल मी व्हाट टू डू,
2: आई डोंट नो।
0: यू टेल मी व्हाट टू डू,
1: मैं क्या बोलूं जी।
0: यू टेल मी व्हाट टू डू,
2: आई डोंट नो।

0: तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। आप करो इंसाफ करो
1: नहीं जी,
0: मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
2: आई डोंट नो,
0: यू मैं क्या बोलू जी,
1: यू टेल मी
2: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी
1: मैं क्या बोलू जी।
0: ओ बाप
2: दादाजी,
0: और मेरी बात तो बेटी,
1: ओ बाप
0: पिताजी मेरी बात तो सुनिए,
1: मेरी बात तो सुनिए,
0: बेटी मेरी बात तो सुनिए, पिताजी मेरी बात तो सुनिए।
2: इस तरह भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गा कर ये फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला कल अदालत में होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका

0: विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्तोनिया की राजधानी टालिन में एस्तोनियाई विदेश मंत्री मार्केस साहकना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में भारत एस्तोनिया सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier." Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant railway station. He also inaugurated national highway projects including a 4-lane greenfield Delhi-Amritsar-Katra expressway and laid the foundation stone for the development of 6-lane greenfield Sadan-Ludhiana bypass. Earlier, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind railway station in Haryana yesterday. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation of worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. In Chandigarh, the Prime Minister launched projects around 4,700 crore rupees in key areas including healthcare, education and road infrastructure. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the parliament this Sunday ahead of the upcoming monsoon session of the parliament. During the meeting,

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत लीजिए सुनिए जी उमा द्वारा बजाया वायलन।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी जी उमा की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 2 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए

अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन के बारे में जानेंगे। पांच बजकर बीस मिनट का वक्त होगा देशभक्ति गीत का।

5:30 पर आप आनंद ले सकते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी का। इसके अंतर्गत आज आप नवल किशोर मलिक द्वारा राग रामकली गायन सुनेंगे। 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 6:05।

0: सुबह के 5 बजने को है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। यह अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभवा की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को भी रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमाकाच में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं में 53 किलोमीटर से अधिक लंबी पुणे शिरूर 6 लेन सड़क, करीब 30 किलोमीटर लंबी हटपसर येवत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और 24 किलोमीटर से अधिक लंबी तालेगांव चाकन शिकरापुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय की बचत होगी और यातायात जाम से छुटकारा मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ

अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। बैठक में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नोकिया की दीर्घकालिक भूमिका का भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने एस मुनवारी बेगम को उपाध्यक्ष और गिलेन ई सूजा टिकलो को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य मंत्रिमंडल ने नागरिकों को बेहतर, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नवाचारी पहलों को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एक

एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग।

दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखंद। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमर दर्द की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। युवावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक कमर के दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आज हम एक आसन करेंगे, उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाए रखें और शरीर को शिथिल करें, यानी रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींचकर आगे की ओर लेकर जाएं और माथा यानी फोरहेड आपके आसन पर टिकाए रखें। अब हाथों को धीरे धीरे वक्षस्थल यानी चेस्ट रीजन के पास लेकर आएं और ध्यान रहे कि आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई, यानी आसमान की ओर उठी हुई हों। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों को समांतर रखें और इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। इस अभ्यास को भुजंग आसन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और मकरासन की स्थिति में कुछ क्षण विश्राम करें। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप यह आसन करें तब पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कमर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव पैदा ना हो। भुजंग आसन का अभ्यास एक सेशन में कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। यदि आपको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है और पेट की कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो यह आसन अवॉइड करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और कुछ हद तक तनाव को भी दूर भगाता है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत स्वररंजनी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नवल किशोर मलिक द्वारा गाया राग राम कली।